FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 अगस्त सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय 5:57 हो रहे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे

0: को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे मानव, यदि तू अपने कर्म पर ध्यान देगा तो वो परमपिता परमात्मा सहर्ष ही तुझे स्वीकार करेगा। इस संसार में कर्म करना ही परम कर्तव्य है, इसीलिए तू आलस्य को त्याग और उस परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए अपने कर्म को सर्वप्रथम कर।

0: मातृभूमि के इसी वंदन के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यही होता है संपन्न। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने जिन कलाकारों को सुना वो थे जगजीत सिंह, चंद्रू आत्मा, हरिओम शरण, नंदिनी शरण और पंडित प्रदीप। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन बिंदु के अंतर्गत आज का विचार परनिंदा। आलेख केजी माहेश्वरी का है, वाचन कर रहे हैं यतीन्द्र चतुर्वेदी।
1: मानव का एक स्वभाव है, वो दूसरों की बुराई करने व सुनने में बहुत ही रुचि लेता है। वह नहीं समझता कि जो ही हम किसी की निंदा करते हैं नरक का द्वार हमारे लिए अपने आप ही खुल जाता है। भले ही आज का मानव विशेष तौर से अपने को शिक्षित कहने वाला मानव, स्वर्ग व नरक में विश्वास न करने वाला मानव है, पर रहीम के शब्दों में रहीमन जिव्वा बाबरी कह गई सरग पताल, आप तो कहीं भीतर गई जूती खात कपाल। बहुत से लोग तो ये भी कहते हुए मिल जाएंगे कि निंदा करने से तुरंत ही लाभ प्राप्त होता है। ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि क्षणिक लाभ के लिए हम अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इस निंदा का मूल्य न चुकाना पड़े। इसी भ्रम में एक व्यक्ति ने अमेरिकी पत्र में जेम्स शील्ड नामक व्यक्ति की खिल्ली उड़ाई। बड़ी चटपटी भाषा में वो पत्र छापा गया। इस पत्र को पढ़कर

0: कर शील्ड आग बबूला हो गए और पत्र लेखक के गुमनाम होते हुए भी वो उसके घर तक पहुंच गए। बस फिर क्या था, दोनों में बहस हुई और तलवार से द्वंद युद्ध का फैसला हुआ। नियत तिथि को दोनों एकत्रित हुए पर उनमें से एक व्यक्ति जिसने पत्र छपवाया था द्वंद युद्ध जानता तक न था। खैर कुछ लोगों ने बीच बचाव करके फैसला किया तब वह व्यक्ति बच सका। कौन था वह व्यक्ति जानते हैं? वह अमेरिका के शिखर तक पहुंचने वाले एक राष्ट्रपति थे। इस निंदा के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के लिए यही सलाह है कि वो निंदा से बचें। निंदा करने वाले व्यक्ति के पास आगे पीछे बहुत से लोग एकत्रित हो जाते हैं, उसे उकसाते भी हैं और वह यह नहीं समझ पाता कि उससे कितना बड़ा पाप हो रहा है। निंदा करने वाला तो दोषी है ही, पर निंदा सुनकर अपना आपा खोना और भी बेवकूफी है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, उस निंदा से हम अपने दोषों को ढूंढें व उन्हें दूर करने का प्रयास करें। निंदक के विरुद्ध मोर्चे बंदी से कोई लाभ नहीं होने वाला। निंदा का बदला निंदा ही नहीं है, क्योंकि बैर का वृक्ष बड़ी तेजी से फलता फूलता है। कभी कभी तो पुस्त दर पुस्त यह बढ़ता ही जाता है। तब आप ही सोचिए कि यह सौदा कितने घाटे का है। अच्छे व घनिष्ठ मित्र इसी के कारण कभी कभी कटु शत्रु बन जाते हैं। जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हीं को कभी मिट्टी का तेल डालकर भस्मसात करने से भी हम नहीं चूकते। निंदा के चलते आर्थिक सामाजिक और आध्यात्मिक हानि तो होती है। निंदा करने वाले को लोग दूर से ही पहचान लेते हैं, अतः इस व्यसन से बचें तभी कल्याण हो सकता है। यदि हम किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो न सही, पर निंदा तो न करें। निंदा करने वाले न तो मानव को देखते हैं और न ही भगवान को, इसीलिए निंदा से बचना ही श्रेयस्कर है।
1: चिंतन बिंदु के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज का विचार पर निंदा। आलेख केजी माहेश्वरी का था, वाचन कर रहे थे यतीन्द्र चतुर्वेदी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसंग।

श्रीराम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी ये धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसंग। स्वर श्रीकांत परगांवकर और रविंद्र साठे के थे। संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 9:30 का समय होगा राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती का, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वृत्तचित्र आजादी का काव्य पाठ। भारत की अलग अलग भाषाओं के काव्य में स्वाधीनता की चेतना। रात्रि 8 बजे का समय होगा इस सप्ताह संसद में का, ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 6:50 पर होगा कार्यक्रम किसान वाणी, ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होगा।

प्रातः 6:50 का समय रहेगा खेती की बातों का। विषय होगा बरसात में पशुओं की देखभाल। प्रातः 7:00 आप आनंद ले सकेंगे भूले बिसरे गीतों का। 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा ब्रज भाषा झलकी बदरा कहियो जाए। प्रातः 8:30 पर होगा चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। विकास पद के अंतर्गत सुनिएगा वार्ता श्रावण मास शिव साधना का काल। वार्ताकार होंगे आशुतोष शुक्ला। समय होगा प्रातः 9:00। प्रातः 9:30 पर होगा ब्रज की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित सजीव कार्यक्रम ब्रज दर्पण। कार्यक्रम में आज

सुनेगा रिपोर्ट स्तनपान सप्ताह पर। जानकारी देंगी डॉक्टर सुरांगना अग्रवाल। प्रातः 10 बजे का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत का। इसमें आज आप सुन सकेंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान और साथियों का शहनाई वादन। प्रातः 10:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। दोपहर 12 बजे होगा श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS। मधु अग्रवाल के गाए हुए ब्रज लोक गीत आप सुन सकेंगे दोपहर 12:30 से। 1:15 का समय रहेगा बहनों के कार्यक्रम घर अंगना का। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा मजबूती से बड़वे के काजे प्रकृति को वरदान और स्वास्थ्य का ख्याल बनाए जीवन खुशहाल। साथ ही सुनिएगा वार्ता स्तनपान बच्चों का अधिकार। जानकारी देंगी डॉक्टर रमा सक्सेना। दोपहर 2:30 का समय रहेगा सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का। 3 बजे होगा हमारी प्रथम सभा का समापन। संध्या 5:30 से होगा दूसरी सभा का आरंभ कार्यक्रम युववाणी के साथ। कार्यक्रम में आज की बात होगी पुरुषोत्तम दास टंडन जयंती और लोकमान्य तिलक पुण्यतिथि पर। साथ ही सजेगी रेडियो महफिल। संध्या 6:15 का समय रहेगा कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक का, जिसमें आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रसंग होगा गोपी विरह का। कथाकार होंगे देवी चरण शर्मा। संध्या वंदन ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 6:30 से। श्रोताओं के संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी होगा संध्या 7:31 से एक ही फिल्म से। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 8:30 से। सुहाने तराने होंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी दूसरी सभा का समापन। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। बरसात में पशुओं की देखभाल, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, बरसात के मौसम में बरसात के साथ साथ भयंकर गर्मी भी पड़ती है, इसलिए पशुओं को बरसात के साथ साथ गर्मी से भी बचाना जरूरी है। ऐसे मौसम में खास करके संकर गायों को ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उनमें पसीना बहाने वाली ग्रंथि नहीं होती जो शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकाल पाती हैं। इसलिए आवास हवादार होना चाहिए तथा ज्यादा गर्मी पड़ने पर दिन में एक या दो बार उनको नहला भी देना चाहिए। देसी गाय को नहलाने की आवश्यकता नहीं होती। भैंस को तो पानी भरे तालाबों में एक दो घंटे प्रतिदिन छोड़ ही देना चाहिए। एक गाय या भैंस के लिए आमतौर पर 4 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए व्यायाम के लिए चराने की व्यवस्था या एक खूंटे से दूसरे खूंटे पर बांधने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आवास गृह में या उसके आसपास नमी भी अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मक्खी, मच्छर, कीड़े तथा बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है। अगर आवास के किनारे गंदा पानी भरा है तो समय समय पर उस पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें। ऐसा करते समय पशु के मुंह पर जाली या मुच्छी का बांध देना चाहिए, जिससे शरीर पर लगी दवा को वो चाट न सके। अगर आवास गृह में मच्छर मक्खी बहुत हैं तो धुआं करके मच्छर मक्खी को भगा दिया जाए। ध्यान रहे, धुआं करते समय वहां से पशुओं को हटा दें। इसके अलावा बरसात में पशुओं के आहार व्यवस्था पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। बरसात के चारे में पानी की मात्रा अधिक होती है तथा प्रोटीन की मात्रा कम होती है। कुल चारे का 1/4 या 1/5 भाग भूसा होना चाहिए, जिससे कि बरसात में पशु गोबर ढीला न करे। प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति करने के लिए आप 1/3 खली, 1/3 चोकर दें। बरसात के समय में घास उस स्थान से न काटें जो पानी के साथ डूब चुकी हो। एक दुधारू गाय को जिसका वजन 350 से 400 किलोग्राम है, उसको 50 किलोग्राम चारा प्रतिदिन खिलाया जाता है, जिसमें 45 किलोग्राम हरा चारा तथा 5 किलोग्राम सूखा भूसा रखें। इसके अतिरिक्त पशुओं को साफ स्वच्छ पानी भी पिलाएं।

0: बरसात में पशुओं को रोग भी अधिक लगते हैं, जिसमें प्रमुख है गलघोंटू, रेंडरपेस्ट तथा पेट फूलना आदि। बरसात के 20-25 दिन पूर्व ही सामूहिक रूप से टीका करवा लेना चाहिए गलघोंटू रोग जैसी भयंकर बीमारी के प्रति। यह बीमारी मुख्य रूप से भैंसों में पाई जाती है और इस रोग के लक्षण दिखाई पड़ने पर स्वस्थ पशु को रोगी पशु से अलग कर दें, क्योंकि पशुओं की कीमत काफी अधिक होती है, इसलिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके इसका उचित इलाज कराया जाए।
1: खेती की बातों के अंतर्गत अभी आप ले रहे थे जानकारी बरसात में पशुओं की देखभाल के विषय में। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: कुरीतियों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना अनुमोदिता। एषा योजना ऊर्जा संचयन प्रणालीभिः युक्तानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासाय प्रवर्तिता अस्ति। केन्द्रीय मंत्रिमंडलस्य उपवेशनानन्तरं नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 5000 मेगावाट मितानां क्षमतायुतानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासः भविष्यति। ताभिः सह स्थापितानां ऊर्जा संचयन प्रणालीनां न्यूनतम संचयन क्षमता द्विहोरात्मिका भविष्यति। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनायाः अस्मात् वर्षात् 31,000 वर्षपर्यन्तं प्रवर्तनस्य निरन्तरतायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारतम् अवदत् यत् पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य तथा कथितानि निर्वाचनानि पाकिस्तान प्रशासनस्य अपमानस्पदम् एव सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य प्रशासनं पीओजेके इत्यत्र शान्तिप्रियाणां नागरिकाणां विरुद्धं निष्ठुरं बलप्रयोगं निरन्तरं करोति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः गतसायं ईरान देशस्य विदेशमन्त्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह दूरभाषया वार्तालापम् अकरोत्। अस्मिन् वार्तालापे सः अस्मिन् क्षेत्रे प्रवर्तमानायाः शत्रुतायाः विषये भारतस्य गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतस्य पदक संख्या 23 यावत् वर्धिता, यस्मिन् 5 स्वर्ण पदकानि, 12 रजत पदकानि, 6 कांस्य पदकानि च सन्ति। इति वार्ताः।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भूले बिसरे गीत।

बड़ी अकड़ से बेटा निकले घर से एक्टर होने, बाहर किस्मत किस्मत में थे लिखे बर्तन धोने, अरे भाई लिखे।

किसी को पूरी हलवा, अरे भाई किसी को पूरी हलवा। ओ बेटा जी खिचड़ी का मजा कभी नरम कभी गरम कभी नरम नरम।

चितलकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म अलबेला में। बोल राजेंद्र कृष्ण के थे, संगीत दिया था सी रामचंद्र ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है नास्तिक, स्वर है पंडित प्रदीप का, संगीत से सजाया है सी रामचंद्र ने।

बेला सुलेखा को अभी आप सुन रहे थे फिल्म मासूम में, बोल गुलजार के थे, संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने। और अब कार्यक्रम में समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: वृंदावन का एहसास।
1: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म बरसात में। बोल रमेश शास्त्री के हैं, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: तलत महमूद को अभी आप सुन रहे थे फिल्म जहां आरा में। इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीतों का सफर यहीं होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 7:18 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। वर्ष 2031 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों में उत्साह, केंद्र सरकार के प्रति जताया आभार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होगा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से किया हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ कर सहभागिता का आह्वान। 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य। और श्रावण मास में मंदिरों और शिवालयों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इस अवधि के दौरान इस योजना के लिए कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के माध्यम से DBT द्वारा पात्र किसान परिवारों को समय पर और पारदर्शी आय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों को कृषि निवेश बढ़ाने और अपनी आजीविका को मजबूत करने में मदद मिल रही है।
4: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
3: प्रदेश के किसानों ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। जौनपुर के किसान श्याम दत्त ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत दी गई सहायता से किसानों को कृषि आवश्यकताओं से जुड़ी चीजें खरीदने में बहुत मदद मिलती है।
5: ये जो हमें एक पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है, मैं अपनी किसान से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता हूँ। मैं इसी पैसे से बीज खरीद लेता हूँ, इसी पैसे से खाद खरीद लेता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी

0: जी का धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने किसान सम्मान निधि को आगे तक बढ़ाया है।
1: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की बढ़ी हुई सहायता को भी मंजूरी दे दी है। स्वीकृत बजट पिछली खेलो इंडिया योजना की तुलना में लगभग 8 गुना है। केंद्रीय कैबिनेट ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध

0: होगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देशभर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आगामी 25 से 29 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवाचार उत्पादों और निर्यात सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। एक रिपोर्ट।
1: ट्रेड शो के चौथे संस्करण में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत B2B खरीदारों, करीब 4.5 लाख से अधिक B2C आगंतुकों और 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 4000 से अधिक MOU, 3200 करोड़ रुपए से अधिक प्रस्तावित MOU मूल्य और 13500 करोड़ रुपए से अधिक बिजनेस इंक्वायरी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया और रूस सहित अन्य देशों के साथ भी सक्रिय संवाद स्थापित कर उनकी आधिकारिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर सहभागिता का आह्वान करते हुए इस वर्ष 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण, उपलब्धता एवं वितरण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा स्वयं सहायता समूहों, खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं, MSME इकाइयों एवं स्थानीय उत्पादन केंद्रों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि राशन की दुकानों, ग्राम पंचायत भवनों, जनसेवा केंद्रों, तहसीलों, विकासखंड कार्यालयों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, डाकघरों, पेट्रोल पंपों एवं अन्य निर्धारित केंद्रों के माध्यम से आम जन को राष्ट्रीय ध्वज सहज उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 14 एवं 15 अगस्त को प्रदेश के सभी सिनेमा घरों में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का अनिवार्य प्रसारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस तथा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के सभी कार्यक्रम पूरे सम्मान, गरिमा एवं राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ आयोजित किए जाएं। समाचार कक्ष से अरुण।
0: प्रदेश भर के शिव मंदिरों और शिवालयों में पवित्र श्रावण मास पर भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही श्रद्धालु वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्शन लागू किए गए हैं। अमरोहा में पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि श्रावण मास के प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक नेशनल हाईवे 9 पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बदायूं में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रत्येक शनिवार और सोमवार को कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। अंबेडकर नगर में कांवड़ यात्रा को सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए 9 जोनल, 78 सेक्टर और 9 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।
3: कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत अयोध्या का रूट है टांडा होके, उसमें भी विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं। सारे सड़कों को गंदा मुक्त किया गया है। जो हमारे मेन घाट है महादेवा घाट, उसकी लगातार सफाई के लिए 3 चिफ्टों में सफाई कर्मी लगाए गए हैं। प्रकाश की व्यवस्था की गई है। 3 लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि किसी की भी जल लेने के समय कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और जिला प्रशासन समुचित रूप से सतर्क है और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है।
0: गोरखपुर में भी व्यापक यातायात डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है जो सावन के प्रत्येक सोमवार को प्रभावी रहेगी। मौसम विभाग ने आज से आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश तथा हरिद्वार, बिजनौर और नरौरा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं के

0: कछला गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते जिले के 36 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2031 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों में उत्साह, केंद्र सरकार के प्रति जताया आभार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होगा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से किया हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ कर सहभागिता का आह्वान। 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य। और श्रावण मास में मंदिरों और शिवालयों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: जा वर्ष की वर्षा ऋतु तो कितेक सुखदाई है, जाए तो हम दो संग संग बितावेंगे।
1: और का
0: पूरे एक बरस बाद हमारा मिलन भयो है। बरस की और महीना तो कछु दुख सुख ते बीत गए, पर बरखा ऋतु बारो समय तो पूरे प्राणों को लेवाई बन गयो।
1: सच कह रही हो, वियोगी पुरुष को वर्षा ऋतु कछु ज्यादा ही तरसावे है।
0: वियोगी पुरुष को तो तुम जी कहना चाह रहे हो कि विरह को कष्ट केवल पुरुषन के हिस्सा में आया है। तुम पुरुष लोग हम स्त्री की विरह व्यथा की तो कल्पना ना कर सको। वर्षा की एक एक बूंद अंगारे सी लगे है।
1: तुम तो पुरुषन पे ऐसो भारी लांछन लगाए रही हो। पुरुषन की विरह व्यथा की जो कल्पना महाकवि कालिदास ने मेघदूत काव्य में करी है, वाको तुम्हें कछु ज्ञान है कि नहीं?
0: ऐसो कहा लिखती हो है मेघदूत में? नेक मुवे तो पता पड़े।
1: अरे बाबरी, ये एक बहुत दिना पुरानी बात है।
0: कहा बात है, कछु सुनाओ तो।
1: यहाँ से बहुत दूर पे पर्वतराज हिमालय की गोदी में एक अत्यंत सुंदर नगरी बसी है। भागो नाम हो अलकापुरी।
0: अलकापुरी?
1: वो अलकापुरी यक्षिण के राजा कुबेर की राजधानी है। राजा कुबेर की सेवा में सहस्त्रन यक्षिण की भीड़ व्यस्त रहो करती है।
0: अच्छा।
1: विनती, एक यक्ष एक दिना राजा कुबेर की सेवा में कछु भूल कर बैठो। जब बात पे राजा कुबेर भाई यक्ष पे बहुत क्रोधित है गई।
0: तो ऐसी भूल वह यक्ष ने क्यों कर डाली जो कुबेर क्रोधित है गयो?
1: वह यक्ष को नयो नयो ब्याह भयो।
0: अच्छा जी बात ही।
1: अपनी परम सुंदरी पत्नी के प्रगाढ़ प्रेम में पागल वह यक्ष ने असावधानी बस कछु भूल चुक कर डाली। जाही बात पे राजा कुबेर क्रोधित है गए।
0: फिर का भयो?
1: वो तो कहा, राजा कुबेर ने वह यक्ष अपराधी मान के देश निकारी को दंड सुनाई दिनो।
0: अरे देश निकारो?
2: अरे दुर्मति यक्ष, जा पत्नी के प्रेम में प्रमत्त है के तैने हमारी सेवा में भूल करी है। अब अपनी बई पत्नी से तू पूरे एक बरस तक दूर जाके रहे। जा, हमने तो एक बरस को देश निकारो दिया।

0: यह प्रकार दंडित है कि वह बेचारे यक्ष ने देश निकारी की अवधि व्यतीत करने के हेतु रामगिरी पर्वत के आश्रम में जाए के डेरा डार दियो। अपनी प्यारी पत्नी के वियोग में वो शोक के कांटो है गयो। बाकी हाथ के सोने के कंगन ढीले है के निकल पड़े और बाकी दिन बड़े दुख में बीतने लगे।
1: बेचारो यक्ष ऐसो दुखी है गयो, फिर का भयो?
0: धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु समाप्त भई और आषाढ़ मास के प्रथम दिन आई। रामगिरी पर्वत के ऊंचे शिखर पे उमड़ घुमड़ के बदरा छाई गई। वर्षा ऋतु के इन लक्षण ने यक्ष की विरहाग्नि पे घी को काम कियो। यक्ष ने बाबादर की अनेक प्रकार से प्रशंसा कीनी और फिर बातें प्रार्थना कीनी। हे मेघ, तुम मेरी बिरहा की मारी भाई पत्नी के पास अलकापुरी चले जाओ और बातें मेरो संदेशो कहियो। हे मेघ, तुमने ऊंचे कुल में जन्म लियो है, तुम इंद्र के दूत हो, तुम मन चाहो रूप धारण कर सको हो। मैं अभाग हो तुम्हारे आगे हाथ पसार रहे हो, इकली तुम ही तो संसार के तपे भई।

में शीतलता प्रदान करो, जा कारण मेरे दुख दूर करने हेतु तुम मेरो संदेशो मेरी प्यारी के पास अलकापुरी ले जाओ। बालकापुरी में शिव जी के मस्तक पर जड़े चंद्रमा के कारण सदा ही प्रकाश भयो करे है। हे मेघ, ऐसा कोई स्थान ना है जहां तुम्हारो गमन ना है सके है। मेरे हित ध्यान में धर के तुम अपनी पतिव्रता भाभी के पास अलकापुरी चले जाओ, जो बैठी बैठी मेरे लौटने के दिन गिन रही होगी। देखो देखो, अच्छे अच्छे शगुन बह रहे हैं, तुम्हारो साथी पवन तुम्हें धीरे धीरे आगे को बढ़ा रहे हो। हे मेघ, तुम अपने मित्र पवन को सहारा लेके आगे बढ़ो। मान सरोवर को जायबे वाली राजहंस तुम्हारे संग संग उड़ते भाई कैलाश पर्वत तक जावेंगे। परदेशी पुरुषन की स्त्री अपनी पल के ऊपर उठाए उठाए के बड़े भरोसे से तुम्हारी ओर निहारेंगी। तुम्हारे दर्शन ते वे आस लगावेंगी कि वर्षा ऋतु के आयवे के कारण दिन के परदेशी पति शीघ्र ही घर को लौट बेमारे होंगे। हे मेघ, देखो इंद्रधनुष ते सजो भयो तिहारो सांवरो शरीर ऐसा सुंदर लगने लग्यो है जैसे कि मोर मुकुट धारण करके ग्वाली को रूप बनाए के स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए के ठाड़ी है गए हों। माल देश के किसानन के खेतन पे बरस के तुम उत्तर दिशा की ओर बढ़ जाइ। जब तुम मूसलाधार वर्षा करके आम्रकूट पर्वत के जंगल की आग बुझाओगे तो वो तुम्हारा उपकार मान के और तुम्हें थको भयो जान के बड़े प्रेम ते तुम्हें अपने शिखर पे विश्राम करावेंगे और आगे बढ़ने पे तुमको पवित्र रेवा नदी मिलेगी। रेवा नदी के जल को पीके तुम उत्तर दिशा की ओर वहां पे गर्मी ते तपते भरे पठार हाथी जंगल खेत राजहंस केवड़ा के बगीचा मोर स्त्री पुरुष जामुन के बागन पे अपनी ठंडी ठंडी फुहार छोड़ते भए तुम विदिशा नगरी पे जाए पहुंचोगे। वहां पे तुम्हें विलास की सारी सामग्री प्राप्त होगी। वहां की सुहावनी मनभावनी नाचती भई वेगवती नदी तुम्हें कहूं कटीली कामनी ते कम नजर नहीं पड़ेगी। वहां पहाड़न की कंदरान में ते सुगंधित पदार्थन की सुगंध निकल रही होगी। विदिशा नगरी के पर्वत शिखरन पे अपनी थकान मिटाए के तुम उत्तर की ओर उज्जैनी के मार्ग पर चले जाइयो। वह नगर के सुंदर राजभवन में निवास करवे वारी बाकी चितवन चलाए भी वारी मनोहर स्त्री तुम्हें अवश्य ही मुक्त कर लेंगी। यदि तुम उनकी चितवन पर ना रिझी तो अपने जन्म में व्यर्थ ही समझियो। वियोगिनी की तरह ते सूखी पड़ी भई निर्विंध्या नदी पे जल बरसाए के तुम वही स्वस्थ कर दीजो। वहां ते आगे चलवे पे तुमको अवंती देश की राजधानी विशाला नगरी मिलेगी। विशाला नगरी की शोभा स्वर्ग के समान है। वहां पे सारसन को मीठो शब्द तथा कमल की मीठी गंध सो सुगंधित पवन रति श्रांता युवतीन की थकान मिटाए रहे होएगो। ये वो ही स्थान है जहां पे वत्स देश के राजा उदयन ने उज्जैनी के राजा प्रद्योत की प्यारी कन्या वासव दत्ता को हरण की हुआ। तो वहां की पालतू मोर अपने मन भावन नृत्य सो तुम्हारा स्वागत करेंगे।

नेक और चल के तुम्हें महाकाल को विशाल और प्राचीन मंदिर मिलेगो। शिवजी के नीलकंठ जैसा तुम्हारो वर्ण देख के वहां के मनुष्य तुम्हारो विशेष आदर करेंगे। संध्या के समय जब वहां महाकाल की आरती के साथ देवदासियन को नृत्य हुए, तब तुम स्वयं अपने गर्जन के नगाड़ी बजाई भी लगी हो। अंधेरी रात्रि के समय तुम अपनी बिजुरे चमकाए चमकाए के अभिसारिका नायिकान के मार्ग को

काशित कर दे रही हो, परंतु तुम गरज और बरस के उन्हें डरपाए मत दीजो। हे मित्र मेघ, फिर तुम आगे बढ़ के गंभीरा नदी, देवगिरी पर्वत व चर्मवती नदी पार कर जाइयो। वह के आगे तुम्हें दशपुर, कुरुक्षेत्र और कनखल के पावन क्षेत्र मिलेंगे। कनखल में तुम्हें हिमालय की घाटियों से उतरी भई पवित्र गंगा जी के दर्शन होंगे। तुम्हारे नीले नीले छाया पड़वे थे गंगा जी को आधो अंग जमुना नदी के समान नील वर्ण वारो देख भी लगे हो। जे दृश्य ऐसो प्रतीत होएगो मानो गंगा और यमुना नदियों को संगम कनखल पे ही बन गया है। हे मेघ, हिमालय पर्वत के आसपास जितने सुहावने स्थान हैं, उन सब ने देख के तुम्बा क्रौंच रंध्र में ते है के उत्तर की ओर निकल जाइयो, जा में है के हंस मान सरोवर को जायो करे। बात छिद्र में ते है के जब तुम ऊपर को उठोगे तो तुम्हें सामने कैलाश पर्वत दृष्टिगोचर होएगो। वह कैलाश पर्वत पे भगवान शिव जी और पार्वती जी एकांत विचरण कर रहे हुए तो तुम बरस मत पड़ी हो, बल्कि हर्ष पूर्वक सुनहरे कमलन वाले मानसरोवर को जल ग्रहण करियो। वहां निकट में ही तुम्हें ऐरावत और कल्पवृक्ष मिलेंगे।

कैलाश पर्वत की गोद में अलकापुरी जाप्रकार ते बस रही है, जैसे कोई कामनी अपने प्रियतम की गोद में बैठी भई हो। अलकापुरी की अटारी में यक्ष लोग अपनी अपनी मदमाती स्त्रीन के संग बैठ के आनंदित भयो करे हैं। अलकापुरी की कन्याएं इतनी सुंदर हैं कि उन्हें प्राप्त करने के हेतु स्वर्ग के देवता हु दर्शो करे हैं। वहां के महलन में रत्न दीपन से प्रकाश भयो करे हैं। वहां की अटारी की मोतिन की झालरन में लटकी वही चंद्रमणि चांदनी के स्पर्श से शीतल जल रहे करे हैं। या जल के संपर्क सो क्रीड़ाश्रम से थकी भई यक्षिणी अपनी थकान मिटायो करे। हे मेघ, कुबेर की भवन ते उत्तर की ओर इंद्रधनुष जैसे सुंदर गोल फाटक वालों हमारो घर तुम्हें दूर दे ही दिखाई पड़ने लगे। वहां ही एक छोटो सा कल्प वृक्ष है, जय मेरी पत्नी ने पुत्र के समान प्रेम ते पाले हुए। पर खोटा के अंदर की ओर एक बावड़ी है, जाके सीढ़ी पे नीलम जड़े भये हैं।

बावड़ी के जल में वैदूरी मणि के टंठल वाले अनेक सुनहरे कमल खिल रहे होंगे। वह बावड़ी में बसे भाई हंस इतने सुखी हैं कि वे अब मानसरोवर जाएवे को विचारू मन में नहीं लावे। वह बावड़ी के किनारे एक बनावटी पर्वत है जाको शिखर नीलमणि को बनो भयो है। वहां के चारों ओर सोने की फल देवे वाले कतली वृक्ष लगी वही है। मेरे घर है पहचान के तुम बस सूने और उदास भवन में शीघ्रता से प्रवेश कर जाइयो। मेरे भवन में तुम्हें जो क्षीण काया वारी नन्हे नन्हे दातन वारी पाकी वही बिंबा फल के समान लाल लाल अधरन वारी पत्री कमर वारी डरी भाई हिरनी के से नेत्रन वारी और गहरी नाभि वारी नितंबन के भार से धीरे धीरे चलवे वारी पयोधरन के भार सो कछु आगे को झुकती भाई से जो काम में तुम्हें दृष्टि पड़ेगी वही वही मेरी प्यारी यक्षिणी होगी। बाकी कमनीयता देख के तुम्हें जान पड़ेगा कि मेरी पत्नी ब्रह्मा की सर्वोत्तम रचना है। हे मित्र मेघ विरह के कठोर दिन बड़ी व्याकुलता सो बितात भाई मेरी प्रियतमा को मनोहर रूप

0: बदल चुको हो गई। मेरे वियोग में रोए रोए के बाकी मित्र सूज रहे होंगे। गरम गरम शासन दे बाकी अधरंग को रंग फीको पड़ गए हो गए। चिंता के कारण बाको चंद्रमा जैसा मुख उदास दिखाई पड़ रहे हुए को। हे मेघ, मेरी पत्नी या तो देवताओं की पूजा कर रही होगी या फिर चित्र बनाए रही होगी या अपनी मिठ बोली मैना दे मेरे बारे में बातें कर रही होगी या फिर मेले वस्त्र धारण करके वीणा वादन कर रही होगी या विरह के दिनन की गणना कर रही होगी। एक पहर तक प्रतीक्षा करने के उपरांत तुम शीतल वायु के झोंकन दे वाकु जगाई दीजो। फिर मंद मंद गर्जन के शब्दन सो व माननी दे वार्तालाप करियो। भक्ति कहियो, हे सौभाग्यवती, मैं तुम्हारे पति को प्रिय मित्र मेघ हूं। अबला, तुम्हारो पिछड़ो भयो पति रामगिरी के आश्रम में कुशलता से है। तुम्हारे दूर स्थित पति ने मेरे द्वारा ये संदेशो कहलवायो है कि हे प्रियतमे, मैं यहाँ पे बैठो प्रियंग की लतान में तुम्हारो शरीर, डरी भई हिरनी इनके नेत्रन में तुम्हारी चितवन, चंद्रमा में तुम्हारा मुख, मूरन के पंख में तुम्हारे केस तथा नदी की छोटी छोटी लहरन में तुम्हारी कटीली भौहें देखो करूं। हे गुणवती, हिमालय की ओर से लौट के आए पे वारी पवन दक्षिण दिशा में मेरे समीप आए रहे हो। भाई, मैं ये सोच के हृदय लगाए रहे हूँ कि वो तुम्हारे अंगन को स्पर्श करके आए रहे हो। देखो मेघ, जहाँ प्रकार से मेरी प्रिय पत्नी धीरज बधाए गए, तुम मेरे पास जल्दी ही लौट आइयो।
1: हाय बेचारो यक्ष।
0: और यक्ष के संदेश वाली बात राजा कुबेर ने हो सुनी।
1: अच्छा, कुबेर ने सुन लेनी।
0: हाँ, जाते बिन की मन में बड़ी दया उपजी, उनका क्रोध उतर गयो। तब राजा कुबेर ने दया के वशीभूत है के यक्ष क्षमा करके उन दो पति पत्नी को मिलन कराए दिनो।
1: चलो, ऐसा सुंदर अंत सुन के मेरो चित्त प्रसन्न है गयो।

0: अभी तक आपने सुनी ब्रजभाषा नाटिका बदरा कहियो जाय। ये नाटिका कालिदास के मेघदूत पर आधारित थी। इसके लेखक थे शिवदत्त शर्मा। इस नाटिका में भाग लिया था श्रीमती विमल अरोड़ा, धर्मेंद्र कुमार, हरिबाबू कौशिक और यतीन्द्र चतुर्वेदी ने। इस नाटिका के प्रस्तुतकर्ता थे यतीन्द्र चतुर्वेदी।
1: तो भैया, अभी आपने सुनी है ब्रजभाषा नाटिका बदरा कही हो जाए। और अब कछ बात है जावे ब्रज के मंदिर और ठाकुर द्वार इनकी। भैया सावन लग चुका है और ब्रज मंडल में यह समय सावन की धूम मची भई है। हर स्थान पर आप श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल जाएगी। कारण यह है कि यह समय पर ब्रज के मंदिरन में ठाकुर जी के विशेष दर्शन होयो करे हैं, जाए हिंडोला के दर्शन कयो जावे है। प्रभु की अत्यंत सुंदर छवि निहारवे के ताई श्रद्धालु दूर दूर ते या ब्रज मंडल में आए रहे हैं। तरह तरह के या समय पे मीठेन के भोग ठाकुर जी के लग रहे हैं। घेवर फैनी जैसे उत्तम रसवारे जो मिष्ठान है वह को भोग ठाकुर जी को लगायो जाए रहे है। ठाकुर जी विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर श्रृंगार इनके संग में दर्शन दे रहे हैं, हिंडोला इन पर विराजमान है रहे हैं। और अब जैसे कि आप जानो ही हो कि सावन लग चुका है और सोमवार, सावन के सोमवार आए वारे हैं, तो ब्रज के चार कोतवाल कहलाए वारे जो विशेष शिव जी के मंदिर हैं, विन में ऊ कांवड़ियन की भीड़ है वे वारी है और बहुत ही मन ते श्रद्धालु पूजा अर्चना करवे की तैयारी कर रहे हैं। तो यह तो भाई भैया बात ब्रज के मंदिर और ठाकुर द्वार इनकी का विशेष है रहे हो है। और अब आपको सुनवा में शालिनी शर्मा के स्वर में ये लोकगीत।

तो भैया शालिनी शर्मा के सुर में अभी सुना आपने ये लोकगीत, और याई के संग आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम यही हुई है संपन्न। स्वीकार करो हमारी जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज होगी। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते, पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के

0: भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
4: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार

0: जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को

0: न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते दो गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोक सत्ता में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance for misguided youth. Says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper leak bill, introducing stricter punishment and setting up of fast-track courts. Prime Minister to launch multiple development projects in Andhra Pradesh and Karnataka today. India raises concerns over ongoing hostilities in West Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis. And at Commonwealth Games, India clinched two historic gold medals in judo, secured double podium finish in men's javelin throw, and win a first ever bronze in decathlon. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion toward misguided youth who've gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than be punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in national capital, where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode has been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in the society over such conduct were understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them.
3: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
2: President Draupadi Murmu has given assent to the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill was passed by Parliament on Thursday. The Act aims to curb unfair practices in public examinations by introducing stricter punishments and establishing fast-track courts. It seeks to strengthen transparency, fairness and integrity in the examination system by creating a robust legal framework while protecting the future of students. The Act includes several key provisions, including stringent penalties such as imprisonment of up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the confiscation of properties belonging to convicted offenders. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Andhra Pradesh and Karnataka today.

आए दिन बहार के इस फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर को। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है निगाहें। स्वर मोहम्मद आजिज के हैं, शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अर्पण में।

0: लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म आया सावन झूमके में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आन मिलो सजना से। स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के हैं, शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: तो हम चलते हैं।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यही होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: हॉलीडेज प्लान करना है पर छुट्टियां हैं कम? टेक डायरेक्ट फ्लाइट्स टू धर्मशाला, देहरादून, जम्मू, अमृतसर एंड जयपुर फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इजी एक्सेस और नो ट्रैफिक जैम्स दे आपके हॉलीडे को स्मूथ स्टार्ट।
3: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: लीजिए प्रस्तुत है विकास पद के अंतर्गत वार्ता। श्रावण मास शिव साधना का काल। वार्ताकार हैं आशुतोष शुक्ला।
4: उत्तर भारत की पूर्णिमांत पंचांग परंपरा के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा समाप्त होते ही श्रावण मास का आरंभ हो जाता है। भारतीय चंद्रमासों का नामकरण उस नक्षत्र के आधार पर हुआ है जिस नक्षत्र में उस मास की पूर्णिमा होती है। इसी सिद्धांत के कारण सावन मास का नाम श्रावण पड़ा, क्योंकि इस मास की पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र में होती है। काल गणना का ये तरीका सूर्य सिद्धांत तथा सिद्धांत शिरोमणि जैसे ग्रंथों में वर्णित है। यही एक जिज्ञासा जन्म लेती है कि श्रावण मास का गहरा संबंध भगवान शिव के साथ कैसे बना। इसका उत्तर केवल लोक परंपरा में नहीं बल्कि शैव और पौराणिक साहित्य से क्रमशः विकसित परंपरा में मिलता है। श्रावण मास में शिवोपासना की महिमा का सर्वाधिक व्यवस्थित वर्णन स्कंद पुराण के श्रावण महात्म्य में मिलता है। इसी प्रकार शिव पुराण, लिंग पुराण तथा अन्य पुराणों में भी श्रावण में शिव पूजन, अभिषेक, व्रत और जप के विशेष फल का वर्णन है। वेदों में रुद्र की उपासना का जो स्वरूप मिलता है वही आगे चलकर श्रावण की शिव साधना का वैदिक आधार बनता है। श्रावण में शिव पूजन की व्यापकता का एक कारण समुद्र मंथन की प्रसिद्ध पुराण कथा भी मानी जाती है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और शिव पुराण में वर्णित है कि समुद्र मंथन के समय निकले कालकूट अर्थात हलाहल विष को भगवान शिव ने लोक मंगल के लिए ग्रहण किया। इसके बाद देवताओं ने उन्हें शीतल जल से अभिषिक्त किया। यही कथा जलाभिषेक की लोकप्रिय धार्मिक परंपरा का प्रमुख आधार बनी। उत्तरवर्ती शैव परंपरा ने श्रावण के वर्षाकाल, जल और शिवोपासना को एक साथ जोड़कर इसे विशेष साधना मास का स्वरूप प्रदान किया। श्रावण की शिव भक्ति केवल पुराणों की देन नहीं, उसका वैदिक बीज यजुर्वेद के प्रसिद्ध श्री रुद्रम में मिलता है। वैदिक साहित्य में रुद्र केवल संहारक देवता नहीं बल्कि औषधियों के स्वामी, पशुओं के रक्षक, वनस्पति के संरक्षक और समस्त प्राणियों के कल्याणकर्ता के रूप में वर्णित हैं। यजुर्वेद की तैतरीय संहिता का एक प्रसिद्ध मंत्र कहता है, नमः शंभवाय च मयो भयाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इसका भावार्थ है

शंभु को नमस्कार जो कल्याण के स्रोत हैं, मयो भय को नमस्कार जो आनंद प्रदान करते हैं, शंकर को नमस्कार जो मंगल के दाता हैं, और शिव को नमस्कार जो स्वयं कल्याण स्वरूप हैं तथा समस्त कल्याण से भी श्रेष्ठ हैं। यह मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ शिव किसी एक संहारकर्ता देवता के रूप में वर्णित नहीं किए गए हैं, बल्कि परम कल्याणकारी रूप में प्रकट होते हैं। श्रावण मास में शिवोपासना का सबसे प्रमुख स्वरूप अभिषेक है। भारत के लगभग प्रत्येक शिवालय में इस मास में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक और रुद्री पाठ का विशेष आयोजन होता है। शिव उपासना के इन रूपों की जड़ों को अगर हम तलाशें तो हम पाते हैं कि वैदिक साहित्य में भगवान शिव का प्राचीनतम स्वरूप रुद्र के रूप में मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय संहिता में वर्णित श्री रुद्रम को रुद्रोपासना का सर्वोच्च वैदिक स्तोत्र माना गया है। आज जिस रुद्राभिषेक का विधान प्रचलित है उसका मूल आधार यही श्री रुद्रम है। श्री रुद्रम का एक अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र है, याते रुद्र शिवा तनूर घोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा शंतमया गिरशंताभिचाकशी ही। इसका भावार्थ है, हे रुद्र, आपका जो कल्याणमय अघोर और पापों का नाश करने वाला स्वरूप है उसी मंगलमयी रूप से हमें अनुग्रह पूर्वक दर्शन दें। यहां रुद्र से उनके अघोर और शिव स्वरूप की प्रार्थना की जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक ऋषियों के लिए रुद्र केवल उग्र देवता नहीं थे, वे करुणामय, कल्याणकारी और शांतिदाता भी थे। श्रावण मास की पूरी शिव साधना इसी उग्र से अघोर और रुद्र से शिव की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। श्रावण मास में भगवान शिव के जलाभिषेक का बड़ा महत्व है। इस परंपरा के आधार को खोजें तो हम पाते हैं कि वैदिक यज्ञों में जल को शुद्धि, जीवन और प्राण का प्रतीक माना गया है। पुराणों में समुद्र मंथन के उपरांत शिव द्वारा हलाहल विष धारण करने और देवताओं द्वारा उन्हें शीतल जल अर्पित करने का प्रसंग जलाभिषेक की लोकप्रिय परंपरा का आधार बनता है। वेदों में जल की पवित्रता और रुद्र से शांति कामना करना तथा पुराणों में वर्णित शिव अभिषेक की परंपराओं के समन्वय से वर्तमान शिवाभिषेक विधान विकसित हुआ। श्रावण मास की एक और महान परंपरा है रुद्री पाठ। रुद्री वस्तुतः श्री रुद्रम का ही पारायण है। भारतीय वैदिक परंपरा में इसे अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली स्तोत्र माना गया है। श्री रुद्रम का एक और प्रसिद्ध मंत्र है, नमो नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च, जिसका भावार्थ है, नीलकंठ भगवान को नमस्कार, श्वेत कंठ वाले उस दिव्य रुद्र को भी नमस्कार। यह मंत्र केवल शिव के स्वरूप का वर्णन नहीं करता, यह उस दिव्य सत्ता को प्रणाम करता है जिसने विष को अपने कंठ में धारण कर लोक की रक्षा की। इसीलिए नीलकंठ का स्वरूप भारतीय संस्कृति में त्याग, धैर्य और लोक मंगल का शाश्वत प्रतीक बन गया। श्रावण में बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा का भी विशेष महत्व है। शिव पुराण, पद्म पुराण और अनेक आगम ग्रंथ बिल्व पत्र को शिव प्रिय बताते हैं। बाद की भक्ति परंपरा में बिल्वाष्टक स्तोत्र में इस श्रद्धा को और लोकप्रिय बनाया। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इसका भावार्थ है, तीन दल वाला यह बिल्व पत्र तीन गुणों, भगवान शिव के तीन नेत्रों और उनके त्रिशूल का प्रतीक माना गया है। श्रद्धापूर्वक अर्पित किया गया एक बिल्व पत्र भी पाप क्षय और शिव भक्ति का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि श्रावण की शिव साधना के मूल में वैदिक श्री रुद्रम, पुराणों की शिव भक्ति, आगमों की पूजा पद्धति और लोक जीवन की श्रद्धा, इन चारों धाराओं का अद्भुत संगम है। महादेव की उपासना के इन रूपों के अलावा उनके शिवत्व का एक दार्शनिक पक्ष भी है जो हमें शैव दर्शन और उपनिषदों में देखने को मिलता है। श्वेताश्व

पर उपनिषद रुद्र को परम तत्व के रूप में प्रतिष्ठित करता है। एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः, इसका भावार्थ है रुद्र एक ही हैं, उनके समान या उनके समकक्ष दूसरा कोई नहीं है। यहां एक का अर्थ केवल संख्या नहीं बल्कि परम अद्वितीय और सर्वव्यापी सत्ता है। आगे यही श्वेताक्षर उपनिषद कहता है, यो देवानाम प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि, इसका भावार्थ है वही रुद्र देवताओं के भी मूल कारण हैं, समस्त विश्व के अधिपति और महर्षि हैं। इस मंत्र का आशय है कि श्वेताश्वर उपनिषद रुद्र को उस परम ब्रह्म के रूप में देखता है जिससे समस्त सृष्टि और देव तत्व की उत्पत्ति होती है। इसी दार्शनिक सत्य को संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने इस रूप में व्यक्त किया है, वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जैसे वाणी और उसका अर्थ अलग नहीं किए जा सकते, वैसे ही पार्वती और परमेश्वर भी अभिन्न हैं। मैं उन जगत जननी और जगत पिता को प्रणाम करता हूं। कालिदास यहां केवल दाम्पत्य का वर्णन नहीं कर रहे, वे शक्ति और शिव, प्रकृति और पुरुष, सृष्टि और चेतना की अभिन्नता का दर्शन करा रहे हैं। श्रावण मास का महत्व केवल शिव भक्तों और शैव परंपरा तक सीमित नहीं है। ब्रजभूमि में यह महीना भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य लीला और भगवान शिव की आराधना दोनों का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। भारतीय धर्म परंपरा में शिव को ब्रज के क्षेत्रपाल और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त के रूप में भी स्मरण किया जाता है। इसीलिए ब्रज में श्रावण का उत्सव वैष्णव और शैव दोनों धाराओं को जोड़ता है। श्रावण में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना और ब्रज के अन्य तीर्थों में मंदिरों के हिंडोला उत्सव आरंभ हो जाते हैं। ठाकुर जी को स्वर्ण रजत पुष्प और हरित पत्तियों से सुसज्जित हिंडोलों में विराजमान कर झूला झुलाया जाता है। वर्षा ऋतु के उल्लास को भक्ति का रूप देने वाली यह परंपरा कई शताब्दियों से ब्रज की सांस्कृतिक पहचान रही है। श्रावण में ब्रज के शिवालयों विशेषकर मथुरा के भूतेश्वर महादेव, वृंदावन के गोपेश्वर महादेव, गोवर्धन के चकलेश्वर महादेव तथा कामवन के कामेश्वर महादेव में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, रुद्री पाठ जैसे आयोजन होते हैं। कांवड़ियों की ओर से जलाभिषेक किया जाता है। इन प्राचीन शिवालयों में श्रावण के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालुओं का विशाल समागम होता है। ब्रज की लोक संस्कृति में श्रावण केवल पूजा का नहीं बल्कि लोक गीतों का भी महीना है। राधा कृष्ण के झूला गीत, मल्हार, कजरी और सावनी पद आज भी गांव-गांव में गूंजते हैं। यहां वर्षा ऋतु केवल ऋतु नहीं रहती, वह भक्ति, सौंदर्य और विरह मिलन की अनुभूति बन जाती है। ब्रज की यह परंपरा हमें एक गहरा संदेश देती है कि भारतीय संस्कृति में शिव और कृष्ण, वैराग्य और माधुर्य, तप और प्रेम परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक ही आध्यात्मिक चेतना की विविध अभिव्यक्तियां हैं। इसीलिए ब्रज में श्रावण का उत्सव केवल ऋतु का उत्सव नहीं बल्कि प्रकृति, भक्ति और शिवत्व के समन्वय का उत्सव है। ब्रजभूमि में श्रावण और शिव भक्ति केवल लोक परंपरा का विषय नहीं बल्कि इस परंपरा का आधार श्रीमद् भागवत महापुराण भी है। दशम स्कंध के अंबिकावन प्रसंग में श्री सुखदेव जी कहते हैं, एकदा देव यात्रायाम गोपाला जात कौतुकः अनोभिर अनडुदयुक्त है प्रययुस्ते अंबिकावनम। इसका भावार्थ है, एक बार नंद बाबा सहित ब्रज के गोप भगवान शिव की पूजा करने की इच्छा से बैलगाड़ियों पर सवार होकर अंबिकावन गए। इसके अगले ही श्लोक में भागवत कहता है, तत्र स्नात्वा सरस्वत्याम देवम पशुपतिम विभुम आनर्चुर अरहरण भक्त्या देवीम च नृपते अंबिकाम। इसका भावार्थ है, वहां सरस्वती नदी में स्नान करके ब्रजवासियों ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान पशुपति अर्थात शिव
तथा देवी अंबिका का पूजन किया।

0: यह प्रसंग बताता है कि ब्रज की सांस्कृतिक चेतना में भगवान शिव का स्थान अत्यंत प्राचीन और आदरणीय है। स्वयं नंद बाबा और ब्रज के गोपों द्वारा भगवान पशुपति की उपासना इस बात का प्रमाण है कि ब्रज में कृष्ण भक्ति और शिव भक्ति परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे की पूरक आध्यात्मिक परंपराएं हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के अध्याय 63 में भगवान शिव स्वयं श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। यह बाणासुर युद्ध के बाद का प्रसंग है। श्री रुद्र उवाच, तुम हि ब्रह्म परम ज्योतिर्गूढ़ ब्रह्मणि वांगमये यम पश्यन्त्य मलात्मान आकाशमिव केवलम।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता श्रावण मास शिव साधना का काल। वार्ताकार थे आशुतोष शुक्ला। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सिद्धार्थनगर और सोनभद्र जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है डॉक्टर सावन कुमार का।
2: सिद्धार्थनगर पुलिस को साइबर क्राइम से संबंधित मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। जनपद की खसराहा थाने की पुलिस ने साइबर क्राइम को लेकर एक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस द्वारा NCRP समन्वय पोर्टल पर दर्ज कुल 9 मामले के 15,47,63,520 रुपए के मामले में एक 20 वर्षीय अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से साइबर क्राइम कर इकट्ठा हुए रुपए से खरीदा गया एक आईफोन, एक वीवो मोबाइल, एक लैपटॉप व साइबर ठगी के 20,000 रुपए नकद बरामद हुए। यह अभियुक्त अपने 6 विभिन्न खातों में 14,00,000 रुपए का लेन देन कर चुका है। आगे भी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।
3: NCRP पोर्टल और समन्वय पोर्टल पे जो भिन्न भिन्न राज्यों से शिकायतें आती हैं, उसमें 9 शिकायतें प्राप्त हुई थी म्यूल अकाउंट के संबंध में, और उसी जांच के क्रम में म्यूल खाते का भी पता चला और ये पता चला कि ये एक बड़ा फ्रॉड नेटवर्क है जिसने 15 करोड़ से भी अधिक की साइबर फ्रॉड किया है।
2: सिद्धार्थनगर जिले में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस महाअभियान के तहत जिले में 45,65,400 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया। सभी विभागों के कर्मचारियों और स्कूली बच्चों ने अपने कार्यालय, स्कूल और खाली स्थानों पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके तहत सभी विभाग के कर्मचारियों व बच्चों ने अपने कार्यालय, स्कूल व अन्य खाली स्थानों पर पौधारोपण किया। एक पेड़ माँ के नाम विषय पर प्रसिद्धीय स्कूल के बच्चों ने मंच से इसकी महत्ता बताई। इस अवसर पर धौरी कुइयां गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिद्धार्थनगर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विभिन्न धर्म के 146 जोड़ों का विवाह उनकी रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ। जनपद मुख्यालय के BSA ग्राउंड पर आयोजित इस सामूहिक कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, विधायक विनय वर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह, सदर विधायक श्याम धनी राही सहित जिले के आला अधिकारियों ने शादीशुदा जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा चुका है। वहीं जनपद सिद्धार्थनगर में इस कार्यक्रम को लेकर मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में लगातार लोगों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस विशेष अभियान को गति देने के लिए विकास भवन से एक विशेष प्रचार वाहन को रवाना किया जा चुका है, जो जनपद में सभी तहसील क्षेत्र के गांव, कस्बा व नगर में जाकर रोग के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा। जनपद में तहसील स्तर पर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक केंद्रों पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसके नेतृत्व में आशा, आंगनबाड़ी व स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में कैंप लगाकर संचारी रोग को लेकर लोगों को जागरूक कर है, साथ ही बचाव के लिए भी जानकारी दे रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को मौसमी और संचारी बीमारियों के प्रति जागरूक करना है, साथ ही जिले में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, जिससे बरसात के दिनों में फैलने वाले जानलेवा बीमारियों से बचा जा सके। सिद्धार्थनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के नव नियुक्त क्षेत्रीय

0: अध्यक्ष विनोद राय का जिला मुख्यालय पर प्रथम आगमन हुआ। जिले में पहुंचने पर सिद्धार्थनगर नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि उपेंद्र सिंह सहित जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। चिलचिलाती धूप के बावजूद हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। स्वागत समारोह के बाद जिला कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण जिला बैठक की आयोजित की गयी। मीडिया से मुखातिब होते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और संगठन को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है उसका पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। उनका लक्ष्य है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी साल 2017 से भी अधिक सीटें जीतकर इतिहास रचे। इसके लिए वह हर मंडल में प्रयास करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करेंगे। सिद्धार्थ नगर जिले के विकास खंड बर्डपुर में ग्राम पंचायत बर्डपुर नंबर 6 टोला माधव नगर में ग्राम चौपाल गाँव की समस्या गाँव में समाधान का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपनी समस्याओं को लेकर आए ग्रामीणों की जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन, मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह सहित जिले के अधिकारियों ने समस्याएं सुनी और उनसे बेहतर ज्यादातर का निपटारा मौके पर कर दिया। ग्रामीण चौपाल को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप पूरे जिले भर में सप्ताह के एक दिन जिले के किसी एक गाँव में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर जिले के हर विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद रहते हैं और ग्रामीणों की समस्या सुनकर उसे निपटाने की कोशिश की जाती है। कुछ समस्या जिनका निदान मौके पर नहीं हो सकता उसको उसके लिए एक समय सीमा के भीतर इसका निपटारा करने के निर्देश दिए जाते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम से लोगों की समस्याओं को निदान के साथ साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुँचाई जाती है।
1: सिद्धार्थनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सोनभद्र जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज सिंह का।
2: जनपद सोनभद्र में करीब एक सप्ताह देरी से पहुंचे मानसून के बावजूद सामान्य से कुछ ज्यादा वर्षा से किसान खुश हैं। धान की डाली गई नर्सरी के बाद किसान धान की रोपाई अभी भी कर रहे हैं। जनपद के लगभग आधे से कुछ कम हिस्सों में ही धान की रोपाई की जाती है, बाकी के हिस्सों में दलहन तिलहन की बुआई होती है, जिसके लिए हाल के समय की वर्षा पर्याप्त है। भौगोलिक दृष्टिकोण से जनपद अधिकांश इलाका उबड़ खाबड़ टीले नुमा है, ऐसे में धान की रोपाई करना किसानों के लिए संभव नहीं है। जनपद सोनभद्र में 50 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि शासन स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुक्रम में जनपद ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद का मारकुंडी क्षेत्र विंध्य और पूर्वांचल का प्रमुख औद्योगिक कौशल विकास एवं रोजगार का केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 16 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से तेजी से उद्योगों की स्थापना होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सिंगल विंडो के माध्यम से समस्या का त्वरित निस्तारण भी किया जाएगा। रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम से स्थानीय लोगों को भरपूर रोजगार और स्वयं के उद्योग भी लगा सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना युक्त योजना के अंतर्गत स्थानीय एमएसएमई स्टार्टअप एवं नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आदिवासी बाहुल्य जनपद में स्थानीय लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जनपद सोनभद्र के बबरी ब्लॉक की 1000 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक हब बनाया जाएगा। एक्सप्रेस वे के करीब बनाए जा रहे औद्योगिक हब के लिए जिलाधिकारी और उद्योग बंधुओं के बीच बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने आदेशित किया कि सभी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। जनपद में विगत दिनों मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का निस्तारण समय से किया जाए, जिससे स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल पाए। जनपद सोनभद्र में जिला उर्वरक निर्धारित समिति की बैठक के बाद जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में खाद की ओवर रेटिंग नहीं होनी चाहिए। साथ ही हर सहकारी समिति एवं संबंधित एजेंसी पर डीएपी और यूरिया की उपलब्धता होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान हाल में खरीफ की बुआई में व्यस्त है, ऐसे में उर्वरक सही समय पर उनको उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जनपद सोनभद्र में संचारी रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया। गाँव में नालियों की सफाई कराई गयी, पानी स्टोरेज इलाकों को चिन्हित करके दवाओं का छिड़काव कराया गया। इस बीच आशा आंगनबाड़ी एएनएम द्वारा लगातार संचारी रोगों से बचाव के लिए कार्य किए गए। जनपद सोनभद्र में अवस्थित रिहंद बांध की कैचमेंट एरिया में जल भराव उम्मीद के अनुरूप नहीं है। जनपद के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में मानसून की कमजोर सक्रियता का असर रिहंद के जल स्तर पर दिखाई दे रहा है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 30 जुलाई को सुबह बांध का जल स्तर 854.4 फीट रिकॉर्ड किया गया, जबकि पिछले वर्ष इसी दिन बाद यह 868.1 फीट पर था। विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई माह में 22.7 फीट जल स्तर कम होने का असर आगामी समय में विद्युत

0: उत्पादन पर पड़ेगा। केंद्र और राज्य सरकारों ने रिहंद के जल पर आधारित कई बड़ी तापी परियोजनाओं की स्थापना की है। रिहंद बांध से जुड़े एनटीपीसी की रिहंद नगर, सिंगरौली और शक्तिनगर परियोजनाओं के अलावा अनपरा तापी बिजली परियोजना, रेणु सागर, ओबरा तापी परियोजना प्रमुख है। इन सभी संयंत्रों की शीतलन प्रणाली और उत्पादन प्रक्रिया के लिए बड़ी मात्रा में पानी रिहंद बांध से उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही रिहंद बांध से वर्ष भर सस्ती बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। जनपद सोनभद्र में प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोड़ ने विगत दिनों कन्हरा बैरपुर मार्ग पर बिजली बिजुल नदी पर दीर्घ सेतु की आधारशिला रखी। संजीव सिंह गोड़ ने बताया कि उक्त सेतु के निर्माण से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच आवागमन और भी सुगम हो जाएगा, साथ ही व्यापार के अवसर भी बढ़ेंगे।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ।

0: जाएगा, साथ ही व्यापार के अवसर भी बढ़ेंगे।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा। कार्यक्रम में आज वार्ता का विषय है बरसाती जल का संचयन। वाचन कर रही हैं विभा शर्मा।
3: वर्षा जल संचयन वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय करने या इकट्ठा करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। विश्व भर में पेयजल की कमी एक संकट बनती जा रही है। इसका कारण पृथ्वी के जल स्तर का लगातार नीचे जाना भी है। इसके लिए अधिशेष मानसून जो बहकर सागर में मिल जाता है उसका संचयन और पुनर्भरण किया जाना आवश्यक है ताकि भूजल संसाधनों का संवर्धन हो पाए। अकेले भारत में ही व्यवहार्य भूजल भंडारण का आकलन 214 बिलियन घन मीटर के रूप में किया गया जिसमें से 190 बीसीएम की पुनः प्राप्ति हो सकती है। इस समस्या का एक समाधान जल संचयन ही है। पशुओं के पीने के पानी की उपलब्धता, फसलों की सिंचाई के विकल्प के रूप में जल संचयन प्रणाली को विश्वव्यापी तौर पर अपनाया जा रहा है। जल संचयन प्रणाली उन स्थानों के लिए उचित है जहां प्रतिवर्ष न्यूनतम 200 मिलीमीटर वर्षा होती हो। इस प्रणाली का खर्च 400 वर्ग इकाई में नया घर बनाते समय लगभग 1200 से 1500 रुपए मात्र तक आता है। जल संचयन में घर की छतों, स्थानीय कार्यालयों की छतों या फिर विशेष रूप से बनाए गए क्षेत्र से वर्षा का एकत्रित किया जाता है। इसमें दो तरह के गड्ढे बनाए जाते हैं, एक गड्ढा जिसमें दैनिक प्रयोग के लिए जल संचय होता है और दूसरे का सिंचाई के काम में प्रयोग किया जाता है। दैनिक प्रयोग के लिए पक्के गड्ढे को सीमेंट व ईट से निर्माण करते हैं। इसकी गहराई 7 से 10 फीट व लंबाई चौड़ाई लगभग 4 फीट होती है। इन गड्ढों को नालियों द्वारा छत की नालियों टोटियों से जोड़ दिया जाता है जिससे वर्षा का जल सीधे ही इन गड्ढों में पहुंच सके। और दूसरे गड्ढे को ऐसे ही एक कच्चा बनाया जाता है, इसके जल से खेतों की सिंचाई की जाती है। घरों की छतों से जमा किए गए पानी को तुरंत ही प्रयोग में लाया जा सकता है। विश्व में कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे न्यूजीलैंड जहां लोग जल संचयन प्रणाली पर ही निर्भर रहते हैं। वहां पर लोग वर्षा होने पर अपने घरों के छत से पानी एकत्रित करते हैं। शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल को संचित करने के लिए बहुत सी संरचनाओं का प्रयोग किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल का संचयन वाटरशेड को एक इकाई के रूप में लेकर करते हैं। आमतौर पर सतही फैलाव तकनीक अपनाई जाती है क्योंकि ऐसी प्रणाली के लिए जगह प्रचुरता में उपलब्ध होती है तथा पुनर्भरित जल की मात्रा भी अधिक होती है। ढलान, नदियों व नालों के माध्यम से व्यर्थ जा रहे जल को बचाने के लिए इन तकनीक को आसानी से अपनाया जा सकता है। पानी का कोई विकल्प नहीं है। कुछ दशकों से तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण जहां एक ओर भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक रूप से बारिश का पानी भूतल तक नहीं पहुंच रहा। भूजल पुनर्भरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में विद्यमान मृदा एवं चट्टानों की रचना के अनुरूप संरचना का निर्माण कर वर्षा जल के बहाव को एक निश्चित दिशा देकर जल रिसाव में वृद्धि करना तथा भूजल भंडार के पुनर्भरण में योगदान देना। जहां हमें भूजल के दोहन व उपयोग में सतर्कता बरतनी चाहिए वहीं दूसरी ओर युद्ध स्तर पर वर्षा जल संकलन भंडारण व भूजल पुनर्भरण करना होगा। वह भूजल पुनर्भरण हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है।

आबोहवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता बरसाती जल का संचयन। वार्ताकार थी विभा शर्मा। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति दे रही है सुरभि शर्मा।

सुप्रभात, करते हैं एक नई शुरुआत नए उमंग और नए उत्साह के साथ। श्रोताओं, आज है 1 अगस्त, यानी राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और हिंदी भाषा के मुखर समर्थक। उन्होंने हिंदी को देश की राजभाषा का दर्जा दिलाने और भारतीय संविधान में उसे विशेष स्थान दिलवाने के लिए अथक प्रयास किए। देश के प्रति उनके महान योगदान के लिए वर्ष 1961 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। उन्होंने इतिहास में MA और LLB की डिग्री प्राप्त कर कुछ समय तक वकालत भी करी। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने वकालत छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। इस कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उनके हौसले नहीं टूटे और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज़ादी के बाद 1950 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। उन्होंने लंबे समय तक संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी भी संभाली। आज़ादी के बाद वे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उनकी सादगी, उच्च विचार और ऋषि तुल्य जीवन के कारण जनता ने उन्हें राजश्री की उपाधि प्रदान करी। और आज एक महान विभूति की पुण्यतिथि भी है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, राष्ट्रवादी नेता। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उन्होंने भारतीय शांति का जनक भी कहा जाता है। उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सर्वप्रथम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वराज का नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि स्वराज्य से कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अंग्रेजों की कोई मांग उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने सिर्फ यही कहा था, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें अपना स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। उनका पूरा नाम था केशव गंगाधर तिलक। उन्होंने डेकॉन कॉलेज से गणित में स्नातक और 1989 में वकालत की डिग्री पूरी करी। वे लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल के साथ लाल बाल तिगड़ी के प्रमुख नेता थे, जिसे गरम दल भी कहा जाता था। पूर्ण स्वशासन के वे सबसे मुख्य और समर्थक थे। जनता में उन्होंने देश प्रेम जगाया। लोगों को एकजुट करने के लिए उन्होंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए ताकि जनता एकजुट हो और उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी महाराज की जयंती सार्वजनिक रूप से मनाने की प्रथा शुरू करी। जो गणेश जी का उत्सव, गणेश उत्सव जो घर घर मनाया जाता था, उसको सार्वजनिक रूप से सबके बीच में जाकर मनाने का प्रयास किया और जो उन्होंने शुरुआत करी, इससे जन जन में देश प्रेम की भावना जागी। जब लोग घरों से निकलकर गणेश पूजा के लिए, शिवाजी महाराज की जयंती मनाने के लिए बाहर इकट्ठा होते, बातचीत करते, तो सबके मन में देश प्रेम हिलोरे लेने लगता और सबने एकजुट होकर यह फैसला किया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ विचारों के प्रसार के लिए उन्होंने केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन भी किया। 1 अगस्त 1920 को मुंबई में उनका निधन हुआ। तो ये जो महान विभूतियाँ हैं, उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है, कुछ भी हो जाए, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। हम इस देश की मिट्टी में मिल जाएंगे, देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर जाएंगे, क्योंकि देश सर्वोपरि है।

0: श्रोताओं, आज है 1 अगस्त। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह यानी ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। किसी महिला के लिए माँ बनना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात मानी जाती है, लेकिन स्तनपान को लेकर कई महिलाओं के मन में जिज्ञासाएं होती हैं। कुछ लोग इसे बहुत अच्छा मानती हैं, जब समझती हैं अगर स्तनपान कराएं तो कमजोर हो जाएंगी। काफी सारे मिथ हमारे समाज में आज भी बरकरार हैं। इन्हीं सारे विषयों को लेकर हमने बातचीत करी हमारे साथ।
1: मैं डॉक्टर सुरांगना अग्रवाल, गायनेकोलॉजिस्ट। मैं इस समय पे

0: माँ सरस्वती अस्पताल जयसिंहपुरा मथुरा में कार्यरत हूँ।
1: हम ये बताइए कि 1 से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह मनाया जाएगा, यानी स्तनपान सप्ताह। जब शिशु जन्म लेता है तो माँ सबसे पहले उसे स्तनपान कराती है, तो 1 सप्ताह इसके लिए निर्धारित करना क्यों?
0: स्तनपान केवल महिला को एक माँ बनने का सौभाग्य नहीं देता, इसके अलावा वह महिला को समझाता है कि उसकी जिम्मेदारियाँ क्या है। इसीलिए इसके लिए एक पूरा सप्ताह, उसकी जागरूकता के लिए एक सप्ताह बनाया गया है, ताकि माँ को इसके फायदे और नुकसान अत्यधिक समझाए जा सकें या फिर समझ आ सकें। इसके लिए हमेशा हर साल एक थीम भी स्थापित की जाती है, जैसे कि इस साल की थीम है कि जीवन की स्थायी शुरुआत के लिए स्तनपान, और जो कारगर है उसे ही हमें मजबूत करना है। ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ एंड स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स। इसीलिए इस साल भी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक यह ब्रेस्ट फीडिंग वीक, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है।
1: ऐसे क्यों लगा महिलाओं में स्तनपान को लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए?
0: हमारे समाज में अभी भी स्तनपान को लेके कई प्रकार के मिथ्स हैं, धारणाएं हैं कि स्तनपान नहीं कराना चाहिए, इससे अच्छा हमको ऊपर गाय का दूध देना चाहिए। गाय का दूध ना देकर हमारे लिए जो बच्चे के लिए फॉर्मूला मिल्स आते हैं, वो माँ को ऐसा लगता है कि वो देना ज़्यादा अच्छा है। यही सब चीज़ों के बारे में जो धारणाएँ बनी हुई हैं या बनी चली आ रही हैं पुराने ज़माने से, उनको हटाने के लिए, उनके लिए जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम किए जाते हैं साल भर में, और इसीलिए ये सप्ताह भी जोड़ा गया है।
1: माँ का दूध अमृत के समान है, ऐसा कहा गया है, क्या ये सच है?
0: बिल्कुल, माँ का जो दूध होता है कई तरीके से अमूल्य है। ना केवल वो न्यूट्रिशन से युक्त होता है, उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो वो एक चीज़ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है बच्चे के लिए, जब तक बच्चे को कुछ ऊपर का आहार शुरू नहीं होता है। मदर और पेरेंट्स जो भी बनते हैं, हमारे पास आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट करें, अरे फॉर्मूला मिल्क हम तो आसानी से अफोर्ड कर लेंगे। मगर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये एक कॉस्ट बर्डन पेरेंट्स पे ऐड करता है। नॉर्मली जो फार्मूला मिल्क आते हैं वो अराउंड 500-1000 की रेंज में आते हैं, वही फार्मूला मिल्क 1 से 2 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो डेली का जो कॉस्ट बर्डन है वो पेरेंट्स पे ऐड हो रहा है। ये शुरुआती दौर पर जो नए नए माँ बाप बने होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। दूसरा, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जो बच्चे को शुरू के 6 महीने में बच्चे में कोई इम्यूनिटी नहीं होती, तो जो माँ से उसको ट्रांसफ़र हो रहा है वही उसकी इम्यूनिटी वर्क करता है। इसलिए देखा भी गया है आगे जाके, यूजुअली जो बच्चे स्तनपान करते हैं और जो बच्चे टॉप फीड लेते हैं, उनमें स्तनपान वाले बच्चों में इन्फेक्शन का जो रिस्क होता है काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे ऊपर का दूध लेते हैं।
1: जो नॉर्मल डिलीवरी होती है और जो सीजेरियन केसेस होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में आता है बहुत जल्दी स्तनपान शुरू कर देती हैं, जबकि सीजेरियन केस में डिलीवरी के काफी टाइम बाद स्तनपान कराया जाता है, उसमें माता ये सोचती है कि सीजरन है तो चलो ऊपर का दूध पिया, तो ऊपर का दूध पीने दो, ये सही है?
0: बिल्कुल नहीं, ये तो एक सिर्फ जरिया है बच्चे को बाहर निकालने का, या तो वो नीचे के रास्ते से आ रहा है या पेट में चीरा लगाकर वो बाहर आ रहा है। बाकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हर मदर में सेम चेंजेस हो रहे हैं। मदर मिल्क नॉर्मल डिलीवरी वालों में प्रोड्यूस होता है, और ये भी मिथ है कि सिजेरियन वालों में दूध ही नहीं आता, तो ये भी ऐसा नहीं है। वो तो एक जरिया है कि बच्चा कैसे बाहर आ रहा है। दूसरा, ऐसा कोई नहीं है कि हाँ, ये ज़रूर है कि नॉर्मल डिलीवरी वाली महिलाएं आधे घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कर लेती हैं डिलीवरी के, बट सिजेरियन वाली महिला भी जैसे ही स्पाइनल एनेस्थीसिया का इफेक्ट जाता है, जो कि लमसम 4 से 5 घंटे का समय लेता है, उसके बाद स्तनपान आराम से करा सकती हैं। पहले ज़माने में जो ऑपरेशन होते थे उनकी जो तकनीक होती थी और उनमें जो सामान इस्तेमाल होता था वो समय के साथ बदला है। कई न्यू जनरेशन्स, कई अब्जॉर्बेबल सूचर्स आए हैं, तकनीक बदली है, तो आजकल ऑपरेशन वाली महिला भी अगले 7-8 घंटे में उठ के खड़ी हो जाती है, बैठ जाती है, अपने बच्चे के साथ पूरा समय व्यतीत कर सकती है। तो ये सब जो धारणाएं पहले ज़माने थी, ऑपरेशन वाली महिला को ज़्यादा आराम करना है, 4 से 5 दिन में छुट्टी मिल रही है, आजकल महिलाएँ 2-2 दिन में छुट्टी लेके घर चली जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी की महिलाएँ स्तनपान करें और ऑपरेशन वाली महिलाएँ स्तनपान ना करें।
1: कहा जाता है कि स्तनपान करने से महिलाएं कुछ ऐसा सोचती हैं कि उन्हें कमजोरी हो जाएगी, उनके शरीर में वजन कम हो जाएगा, क्या सही है या गलत?
0: इसको अलग अलग तरीके से देखें तो ऐसा है कि अगर माँ स्तनपान कराती है तो उससे एक तो मदर और बच्चे की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बेहतर

0: रहती है, इसलिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम उसे कहते हैं उसे माँ के पास रखिए, क्योंकि एक ये न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स है। जैसे हमने किसी को चिमटी काटी तो हमें महसूस हुआ हमें चिमटी काटी, उससे हमें आंसू आते हैं, ऐसे ही बच्चा रोता है तो माँ को एक न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स जाता है कि बच्चा रो रहा है, दूध बनाना है शरीर में। तो ये एक न्यूरोजेनिक कंट्रोल है दूध का बनना। तो जितना बच्चा माँ के पास रहेगा, जितना माँ से स्तनपान करेगा, उतना ज़्यादा दूध प्रोड्यूस होगा। अगर आप बच्चे को दूर कर देंगे या फिर उसको स्तनपान नहीं कराएंगे तो ये ब्रेस्ट का जो मिल्क सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होने लगता है या किसी किसी महिला में बंद भी हो जाता है। इसके अलावा वेट लॉस बिल्कुल करता है, क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस अपने जगह पे जाता है तो ये अपने एक तो यूट्रस को अपने साइज़ में लाने में, नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। दूसरा, माँ का जो फैट गेन हुआ है बॉडी में ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, उसको वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है।
1: आजकल की जो आधुनिक महिला हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो कहते हैं कि अगर हमने ब्रेस्ट फीडिंग कराई तो हमारा फिगर खराब हो जाएगा, जो हमने इतनी मुश्किल से मेंटेन किया है, जिम गए हैं, कसरत करी है। ऐसी महिलाओं से, ऐसी आधुनिक महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं। आपका बेबी मैक्सिमम 6 वीक्स के लिए हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एडवाइस करते हैं। अगर आपका बेबी उसके बाद अगर आपको नहीं कराना है, आप 1 साल तक मैक्सिमम कराइए। उसके बाद इफ़ यू वांट टू शिफ्ट बेबी टू अदर काइंड ऑफ मिल्क तो आप उस पर शिफ्ट कर दीजिए। उसके बाद अपनी अपनी बॉडी, अल्टीमेटली आपकी बॉडी परमानेंट नहीं है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें अपना खान पीन, हमें एक्सरसाइज, अपना योगा, ये सब का ध्यान देना ही पड़ेगा। तो ये एक टेम्परेरी फेज़ होता है, महिला को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर लाइफ है। इफ़ शी हैज़ गिवन बर्थ टू समवन तो बॉडी अपनी जगह है, वैसे भी उनका काम हैम्पर होने वाला है, चाहे कोई टीवी एक्ट्रेस हो या फिर कोई फैशन इंडस्ट्री से हो, जिनके लिए अब उनकी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दैट केस आजकल मेरे को लगता है कि काफ़ी महिला एजुकेटेड भी हैं, उनको पता है कि उनकी बॉडी को कैसे मेंटेन करना है। तो आफ्टर सिजेरियन 3 मंथ्स के बाद या फिर आफ्टर डिलीवरी 3 मंथ्स के बाद दे कैन प्रॉपरली गो टू द जिम और एक्सरसाइज कर सकती हैं, अपनी बॉडी को टोन अप कर सकती हैं। उसका ब्रेस्ट फीडिंग से कोई ताल्लुक
1: लेकिन
0: नहीं।
1: ये भी आजकल काफी ज्यादा लोगों में पॉपुलर है। स्तनपान का सही तरीका क्या है? कई बार महिला को जानकारी नहीं होती। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं बड़े अनहाइजीनिक तरीके से अपने बच्चों को पोषण करती है, हालांकि स्वच्छता वहां पर भी आजकल बहुत पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी महिला को जानकारी नहीं होती। बच्चे को बगल में सुताया सुलाया तो लेट गई, सोती रह गई। कई शहरी महिलाएं भी इसको बहुत सीरियसली नहीं लेती। तो क्या सही तरीका है, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण महिला हो?
0: किसी भी महिला को सबसे पहला बात ब्रेस्ट फीडिंग कराते में ये ध्यान देना है कि हमें बच्चे को कभी भी लिटा के दूध नहीं पिलाना है, चाहे बच्चा सोती स्थिति में हो, चाहे या आपके टांकों में दर्द हो रहा हो, हमेशा कोशिश करें बैठ के ही स्तनपान कराएं।
1: बहुत बड़ी बात है आपने बोली, अक्सर महिलाएं सो जाती हैं, बच्चे को बगल में लिटा लेती हैं और उस ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, वो खुद भी सो गई।
0: जो आपने सुना होगा ना, अचानक बच्चा तो ठीक था, दूध पी के सोया था, उसके बाद बच्चे को अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई, तुरंत लेके हॉस्पिटल भाग, तब तक बच्चे की जान चली गई। ये इसी कारण होता है क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसका जो खाने की नली और जो सांस की नली होती है उनमें सेंसिटिविटी नहीं होती डिफ्रेंशिएट करने की, कि खाना कहाँ जाना चाहिए और हमारा सांस कहाँ जाना चाहिए। तो इसीलिए बच्चे को हमेशा दूध पिलाने के बाद डकार दिलाने की सलाह दी जाती है, छोटे बच्चों को खासकर शुरू के 3 से 6 महीने में। और ये भी बोला जाता है अगर बच्चा डकार नहीं लेता है तो उन्हें करवट लेके रखिए ताकि वो जो दूध है सीधा उनकी सांस की नली में ना जाए। दूसरा, माँ को हमेशा जब दूध, मैंने देखा है बहुत बार यहाँ पे सिर्फ ग्रामीण नहीं, जो एजुकेटेड गर्ल्स भी आती हैं वो निप्पल को प्रेस करके कहती हैं कि मैम हमें दूध नहीं आ रहा है। तो निप्पल एक पाइप है, जो आपका फैक्ट्री है वो आपके ब्रेस्ट के अंदर है। तो आप जब ब्रेस्ट को प्रेस करेंगे तब उससे मिल्क बाहर एक्सपेल आउट होगा। अगर आप निप्पल को दबा देंगे तो वहाँ से वो मिल्क का सेक्रेशन बंद हो जाएगा और मिल्क बिल्कुल भी नहीं आएगा। तीसरा, आपको कभी भी जब बच्चे को दूध पिलाएं तो बच्चे का सर या तो कोहनी के ऊपर रखें और उसके जो बटक्स हैं अपने पंजों पे रखें और थोड़ा सा सर का हिस्सा ऊपर करके दूसरे हाथ से निप्पल उसके मुंह में देने की कोशिश करें। निप्पल का जो एरियोला वाला पोर्शन है, जो काला पोर्शन है, वो हाफ कप सी के शेप में जाना चाहिए, मतलब पूरा निप्पल और नीचे से जो एरियोला है पूरा उसके मुंह में जाना चाहिए, तभी दूध उसके मुंह में जाएगा। सिर्फ निप्पल पकड़ाने से बच्चे के मुंह में दूध नहीं जाता है। और इसी प्रॉपर लैचिंग टेक्निक ना बच्चे को आने से ना ही मदर को आने की वजह से बहुत सारी महिलाएं शुरू में ही बच्चे को दूध पिलाना छोड़ देती हैं। उनकी कंप्लेन रहती है हमें दूध नहीं आ रहा, हमें दूध नहीं बन रहा, और इसी कारण अल्टीमेटली बच्चे को ऊपर का दूध लेना पड़ता है।

0: इसमें साफ सफाई का जो ध्यान रखा जाता है वो किस प्रकार ध्यान रखा जाता है, महिला को क्या ध्यान रखना चाहिए?
1: बस महिला को ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी बच्चे को फीड कराने से पहले अपने निपल्स को क्लीन कर लें, तो एक कॉटन को गीले का गुनगुने पानी से धो के अपने निपल्स को, निपल एरिया को क्लीन कर लें, और जब प्रॉपर नहाएं तब उस समय पे अपने ब्रेस्ट को प्रॉपरली क्लीन रखें ताकि जो एरिया उसके मुंह में जा रहा है तो वो साफ़ सुथरा रहे। अगर आपने कोई क्रीम या फिर कुछ किसी प्रकार का लोशन अपने ब्रेस्ट पे लगाया है तो बच्चे को फीड कराने से पहले उसको क्लीन कर लें।
0: ऐसा कहा जाता है कि स्तनपान दोनों के लिए लाभदायक है, माता के लिए भी और शिशु के लिए भी, तो किस प्रकार है दोनों के लिए लाभदायक है?
1: बच्चे के लिए तो जैसा मैंने बताया कि बच्चे को उसमें से न्यूट्रिशन तो मिल ही रहा है, बहुत हल्का होता है तो पचाने में बच्चे के लिए आसान रहता है। तीसरा, बच्चे को हाइड्रेशन पानी की प्रोवाइड करता है। चौथा, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं तो बच्चे की जो इम्यूनिटी है उसका टेक केयर करता है। बाकी विटामिन्स, मल्टी विटामिन्स, प्रोटीन्स, हर तरीके का न्यूट्रिशन जो माँ खा रही है वो टूट के दूध में जाके बच्चे को वो इनडायरेक्टली मिलता है, और बच्चे और माँ की बॉन्डिंग को बढ़ाता है। वैसे ही माँ को, जैसे अगर माँ स्तनपान कराती है तो उसका यूट्रस इन्वोल्यूशन, मतलब यूट्रस का अपने साइज में वापस जाना, मदर का वजन कम होना, मदर और बच्चे की बॉन्डिंग होना, ये सब में हेल्प करता है। तो इस तरीके से इसके फायदे दोनों के लिए हैं।
0: कुछ चुनौतियां जिसे कहते हैं, कुछ चुनौतियां सबके सामने आती हैं, माताओं के सामने भी आती हैं,
1: सबसे
0: तो
1: बड़ी
0: क्या?
1: चुनौती, जैसे कि मैं खुद ही एक न्यू मदर हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है कि हमारा जब ऑपरेशन या डिलीवरी होती है हम खुद ही रिकवरी फेज़ में होते हैं, और उसमें अगर हमें फैमिली का सपोर्ट नहीं मिले या फिर किसी को भी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिले तो वो समझ ही नहीं पाती कि उसे अपना ध्यान देना है कि वो बच्चे का ध्यान दे
0: जी
1: या उसे दूध पिलाए,
0: जी
1: तो उसी गिल्ट में बेचारी परेशान होके सोचती है मुझे दूध नहीं आ रहा, तो वो स्ट्रेस लेना शुरू कर देती है। स्ट्रेस इनडायरेक्टली हमारे प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कम कर देता है और ब्रेस्ट सिक्रीशंस कम कर देता है। ऊपर से टांकों में दर्द होता है, रात बेरात जागना पड़ता है, अगर पति भी साथ नहीं दे रहा है या कोई फैमिली मेम्बर बच्चे को नहीं उठा रहा है या हेल्प नहीं कर रहा है तो उसे लगता है कि छोड़ो ऊपर का ही दूध दे दो। तो इस तरीके से मतलब सबका साथ होता है तभी नई माँ शायद बच्चे को दूध पिला पाएगी, अदरवाइज अगर उसको किसी का सपोर्ट नहीं है, और आजकल क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं इस चक्कर में शायद ब्रेस्ट फीडिंग की जो महत्वता है वो लोगों को समझ नहीं आ पा रही है या फिर उनकी मजबूरी हो गई है कि वो नहीं करा पा रहे।
0: जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उनकी डाइट क्या विशेष होती है, या वो आम सामान्य खाना पीना खा सकती हैं?
1: सामान्य खाना पीना खा सकती हैं बट हाँ, क्योंकि वो रिकवरी फेज़ में होती है, मदर का खुद ही ऑपरेशन हुआ होता है या फिर डिलीवरी हुई होती है या ब्लड लॉस हुआ होता है, बॉडी में पोषण की बहुत आवश्यकता होती है, इसे महिला को कैल्शियम युक्त खाना दिया जाता है। बाकी अन्य आहार जो भी होते हैं ऐसा बोला जाता है कि आप दाल मत खाइए, आप राजमा मत खाइए, आप छोले मत खाइए, इससे बच्चे को गैस बन रही है, ये भी एक धारणा मैं हटाना
0: खट्टी और
1: चाहूँगी,
0: ठंडी चीजें मत खाइए,
1: नहीं
0: दही मत
1: खाइए
0: खाइए।
1: बिल्कुल, ये सब ऐसा नहीं होता है। ये सब चीज़ें आपके पेट में जाने चाहिए। हमारी बॉडी में तीन अलग अलग सिस्टम होते हैं, खाने का सिस्टम जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिससे बच्चा पैदा होता है या माहवारी आती है, तीसरा पेशाब का सिस्टम। इन तीनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई पाइप नहीं है जो बीच में सामान को आदान प्रदान करे। तो अगर आप राजमा खा रहे हैं वो पेट में ही जाएगा, वो टूट के उसके कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड में ही एब्जॉर्ब होंगे और वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा मदर का, उसमें से जो पोषक तत्व होंगे वो बच्चे के लिए दूध में चले जाएंगे। तो राजमा खाने से किसी को बच्चे को गैस नहीं होती, क्योंकि बच्चे क्योंकि 24 घंटे सिर्फ दूध लेते हैं इस कारण उनके पेट में डाइजेशन उनका, क्योंकि लिवर भी मेच्योर नहीं होता, किडनी भी मेच्योर नहीं होती, डाइजेस्टिव सिस्टम भी मेच्योर नहीं होता, इस चक्कर में वो बहुत बार दूध नहीं पचा पाते हैं और बच्चों के स्फिंक्टर्स नहीं बने होते, तो बार बार जो पेट में दूध गया है क्योंकि स्फिंक्टर नहीं है उसको रोकने के लिए तो कर्डल्ड मिल्क बाहर निकालते हैं। तो ये सब नॉर्मल फिनोमेना है
0: इससे माता पिता घबरा जाते हैं कि
1: जो
0: दूध ही
1: ऊपर
0: पच रहा
1: के
0: है।
1: बच्चे का दूध पीने से वाले बच्चे को भी होगा, माखा दूध पीने वाले बच्चे को भी होगा, और या फिर माँ के राजमा खाने वाले बच्चे को भी होगा और माँ के ना राजमा खाने वाले बच्चे को भी होगा।
0: कितनी उम्र तक बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए, और क्या स्तनपान के दौरान बच्चों को कुछ ऊपरी आहार देना जरूरी है?
1: 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव मतलब बिल्कुल सिर्फ माँ का दूध, ना उसे पानी की ज़रूरत है, ना उसे शहद की
0: बिल्कुल ना
1: ज़रूरत
0: पानी
1: है,
0: वानी कुछ नहीं।
1: ना उसको शहद की ज़रूरत है, ना ऊपर से कुछ भी खाने पिलाने की ज़रूरत है। तो जो माँ का दूध होता है वही संपूर्ण होता है, सिर्फ वही देना है और वही पानी की भी पूर्ति करता है, अलग से पानी पिलाने की बच्चे को आवश्यकता नहीं है। दूसरा, 6 महीने के बाद अब धीरे धीरे

0: थोड़ा थोड़ा बच्चे को खाना आहार देना शुरू करें, जिसमें कोशिश करें कि बच्चे को चीनी और नमक शुरुआत के पहले साल में ना दें, ताकि क्योंकि बच्चों का अभी भी किडनी और जो लिवर का सिस्टम होता है वो कमज़ोर ही रहता है, वो मेच्योर नहीं होता है। तो धीरे धीरे 6 महीने के बाद बच्चा अपनी खुद की इम्यूनिटी बनाने लगता है, उसके अंदर सेल्स बनने लगते हैं। तो जब हम ऊपर का खाना देते हैं या बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं, वो कुछ भी मुंह में देते हैं, तो उससे इन्फेक्शन की मात्रा कम हो जाती है। वो एक तरीके से उनके लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो अंदर बॉडी में इम्यूनिटी बना रहे होते हैं बच्चे।
1: इस बार की जो हमारी थीम है कि ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स, यानी कि जो जीवन की शुरुआत है अगर वो सुदृढ़ होगी तो जीवन भी आगे चलेगा। क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर सभी माताओं से?
0: मैं कहना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग क्योंकि हमारे लिए स्थायी तौर पर एक भगवान ने ऑलरेडी एक सिस्टम बना के दिया है, अगर आप उसका पूरा यूज़ लेंगी तो वो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए खुद के लिए लाभदायक है। और क्योंकि इसको हम मेंटेन कर सकते हैं सब तरीके से, आहार में न्यूट्रिशन भी है, आहार में आपको अफोर्डेबल भी है, आप उसे आपको कहीं पैसे नहीं खर्च करने हैं और इजीली अवेलेबल है ना। आप इससे आपका मदरहुड भी प्रोटेक्ट करते हो, आप अपने बच्चे के साथ एक बॉन्डिंग बनाते हो। तो इस चीज़ पे आप वो जो भी महिलाओं जिनमें भी ये जो मिथ है कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए, तो हमें एक अच्छे जीवन के लिए या बच्चे के अच्छे आगे शुरुआत के लिए हमें ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए बच्चे को। और जो भी आपकी धारणा है अपने डॉक्टर से जाके उनको क्लियर करें।
1: जिस तरह से ब्लड बैंक होता है, आई बैंक होता है, क्या इस तरीके से छोटे बच्चों के लिए मिल्क बैंक भी होता है क्या, कुछ ऐसी
0: मिल्क
1: धारणा?
0: बैंक है जो मेट्रो सिटीज़ में कहीं कहीं अवेलेबल है, जिसमें मदर्स अपना मिल्क डोनेट कर सकती हैं। मल्टीपल टेस्टिंग्स के बाद वो बच्चे को जो नेसेसरी बच्चे हैं वो वहाँ हॉस्पिटल्स में होता है। बट अभी अपने शहर में ये चीज़ नहीं है, आगे जाके होपफुली हर छोटी सिटी में हर छोटी जगह पे हो सकता है ये बैंक्स अवेलेबल हो। हाल फिलहाल तो अभी ये मेट्रो सिटीज़ में ही अवेलेबल है।
1: एक संदेश सभी माताओं के लिए।
0: कि आप स्तनपान के बारे में आपकी जो मिथ्स हैं वो प्लीज़ अपने से दूर करें। स्तनपान सबसे बेस्ट होता है, चाहे आपका ऑपरेशन हुआ हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, कृपया इसे दूर ना भागें। ये हर बच्चे का हक है और हर माँ का भी हक है कि अपने बच्चे को स्तनपान कराएं। तो इस पे विशेष ध्यान दें और बच्चे को सही पोषण सही समय पे मिले, इस पे ध्यान दें।
2: अब डालते एक नज़र आज के समाचारों पर। कृष्णा नगरी में हर 16वें व्यक्ति पर हमला कर रहे बंदर और कुत्ते। ओजस्वी राज नगर आयुक्त का कहना है कि प्रत्येक वार्ड में अभियान चलाकर कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी कराई जा रही है। एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में एक साथ 100 कुत्तों को रखने की क्षमता है। नगर निगम की टीमें बंदरों को पकड़ने का काम करेंगे और वन विभाग के सहयोग से उन्हें ऐसे वन क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा जहाँ भोजन व रहने की पर्याप्त व्यवस्था हो। बंदरों को पकड़ने, उनके इलाज और सुरक्षित पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही होगी। डायरिया से घबराए नहीं, ORS और जिंक की सबसे प्रभावी बचाव। विश्व ORS दिवस के अवसर पर शुक्रवार को CMO कार्यालय के सभागार में डायरिया के प्रति जागरूकता कार्यक्रम हुआ। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव यादव ने कहा कि डायरिया से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि समय पर सही उपचार तुरंत जरूरी है। यदि बच्चे को दिन में 2-3 बार पतले दस्त हो, तुरंत ORS का घोल पिलाना शुरू कर दें और जिंक की खुराक भी चिकित्सीय सलाह के अनुसार देनी शुरू कर दें। डायरिया की वजह से बच्चों में शरीर में पानी लवण की कमी हो जाती है। ORS के प्रभाव से इसको पूरी तरह नकारा जा सकता है। ORS और जिंक का सही उपयोग, उपचार की विभिन्न श्रेणियां, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी की जानकारी सबको होनी चाहिए। अब डालते एक नज़र आज के इतिहास पर, क्या कहता है आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से। आज के दिन 1920 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी। 1920 में महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वहीं 1834 में ब्रिटिश साम्राज्य में आधिकारिक तौर पर दास प्रथा का अंत हुआ। 1914 में जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की। 1981 में लोकप्रिय संगीत चैनल MTV का अमेरिकी टेलीविजन पर प्रसारण शुरू हुआ। ये थी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो आज के दिन के साथ जुड़ी हुई थी। आकाशवाणी में अपने 90 वर्षों के सफर में नित्यनम आयाम स्थापित किए, ज्ञानवर्धक रोचक कार्यक्रमों के माध्यम से आपका मनोरंजन भी किया और आपको शिक्षा भी दी है। ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिए जिसके आप से आपकी वजह से सामने वाले को परेशानी हो। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में अपने घर के कूड़े को सड़क पर ना डालें, नालियों में ना डालें, क्योंकि उसकी वजह से नालियां चोक हो जाती हैं। सारा कूड़ा या गंदा पानी बहकर आपके सड़क पर बहता है और आपके घरों में भी आ जाता है। फिर हम शासन प्रशासन को दोष देते हैं। अपनी जिम्मेदारी समझिए, एक नागरिक के तौर

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति दे रही थी सुरभि शर्मा, संयोजन ओपी सिंह का था। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खां का राग अलैया बिलावल में निबद्ध शहनाई वादन। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जो आता है शनिवार को आपके लिए और जिसका नाम है एक ही कलाकार। कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं आपकी दोस्त दीपिका हूँ आपके साथ। दोस्तों, आज हम जिस अभिनेत्री के विषय में बात कर रहे हैं वो अपनी पहली ही फिल्म से सुपर डुपर हिट हो गई थी। तो ज़्यादा नहीं बढ़ाते इस बात को कि हम किसके बारे में बात करेंगे, और मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं अनीता राज के विषय में। जी हाँ दोस्तों, पुराने जमाने की एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपनी पहली ही फिल्म में अपनी एक्टिंग और अपने सौंदर्य से दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया। इनकी फिल्मों के गीत बेहद पॉपुलर हुए और आज भी इनकी पहली ही फिल्म के गीत को कल्ट सॉन्ग में जाना जाता है, और जब भी हम उसे मिलते हैं एक आंतरिक सुकून हमें अपने आप में अनुभव होता है। दोस्तों, अनीता राज का पूरा नाम था अनीता राज खुराना। इनका जन्म 28 फरवरी वर्ष 1963 में हुआ था और ये फिल्मों में अभिनेता रहे श्री जगदीश राज जी की बेटी थी। बहुत से हमारे दोस्त जगदीश राज जी के नाम से उन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुरानी फिल्मों में आपने एक ऐसे अभिनेता को देखा होगा जो अक्सर ही आपको पुलिस वाले के रोल में दिखाई देता है। ये पुलिस वाले कोई और नहीं, जगदीश राज जी हैं। इनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी है। इन्होंने 21 वर्ष तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, जिसमें 144 बार इन्होंने फिल्मों में पुलिस वाले का रोल निभाया, और ये रिकॉर्ड गिन्नीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज है। और ऐसा लगता नहीं है कि इनके अलावा कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा, क्योंकि इतने लंबे समय तक किसी एक ही तरह के रोल को निभाना कि वो रोल आपकी पहचान बन जाए, आज के समय में तो लगभग संभव नहीं है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आते हैं अनीता राज पर। अनीता राज बचपन से ही फिल्मों में आने का सपना देखती थी। ये बात जब उन्होंने अपने पिताजी को बताई तो उन्होंने उनका सहयोग करने से बिल्कुल मना कर दिया और साफ साफ कह दिया कि जब कोई अच्छा ऑफर मिलेगा तब हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन अनीता जी इस बात पर दृढ़ थीं कि उन्हें अपना करियर फिल्मों में ही बनाना है। वो लगातार प्रयास करती रहीं। और आपको बता दूं कि अनीता जी ने 6 वर्ष तक गोपी कृष्ण जी से नृत्य भी सीखा। गोपी कृष्ण जी ने जब अपनी इस शिष्या को नृत्य करते हुए देखा, उसकी साधना को देखा,

दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री अनीता राज के विषय में। अनीता जी का नाम रिकमेंड किया गया था यश चोपड़ा जी को, और जब वो यश जी से मिलने के लिए गई तो उनका फोटोशूट हुआ। यश जी को उनके फोटो बेहद पसंद आए, लेकिन समस्या ये हुई कि जिस फिल्म के लिए यश जी ने अनीता जी का चयन किया था वो फिल्म बनी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, उस फिल्म का निर्माण ही नहीं हो पाया, लेकिन उनके फोटो इतने ज्यादा खूबसूरत थे कि उन फोटो की चर्चा जरूर होने लगी। इसका असर ये हुआ कि अगली फिल्म के लिए उनका नाम रिकमेंड कर दिया गया, और वो फिल्म थी प्रेम गीत, एक ऐसी फिल्म जिसने अनीता राज को रातों रात हीरोइन का दर्जा दे दिया। उनके को एक्टर थे इस फिल्म में राज बब्बर। अनीता जी की जोड़ी राज जी के साथ बेहद पसंद की गई, और उनकी फिल्म का एक गीत इतना फेमस हुआ कि जगजीत सिंह जी को आज भी उस गीत के लिए याद किया जाता है, और जब भी हम जगजीत जी के गीत सुनते हैं उस प्लेलिस्ट में ये गीत जरूर होता है।

तो दोस्तों, आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज हम बात कर रहे हैं अनीता राज के विषय में। जब अनीता राज जी को पहली फिल्म जो कि नहीं मिल पाई थी, जो कि बंद हो गई, बनी ही नहीं, उसके बाद में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म उन्होंने साइन की, अच्छा बुरा, फिल्म का काम भी चालू हो गया। इसके बाद बैक टू बैक उन्होंने दो फिल्में साइन की और मज़े की बात जानते हैं क्या हुई। जब उनकी फिल्म अच्छा बुरा बन रही थी, उसी के पहले उन्हें फिल्म मिल गई प्रेम गीत, और जो तीसरी फिल्म उन्होंने साइन की थी वो भी उनकी पहली फिल्म से पहले रिलीज़ हो गई। तो उनकी पहली फिल्म जो रिलीज़ हुई वो थी प्रेम गीत, इसके बाद में उनकी फिल्म आई दूल्हा बिकता है, तीसरी फिल्म आई अच्छा बुरा, और तीनों ही फिल्म सुपर डुपर हिट रही। अनीता जी ने अपने टाइम में उस समय के लगभग सभी बड़े अभिनेताओं के साथ में काम किया। हम बात करें धर्मेंद्र जी की, जितेंद्र जी की, राजेश खन्ना जी की, सभी के साथ उन्होंने फिल्म की। उनके जोड़ी को धर्मेंद्र जी के साथ में बेहद पसंद किया गया। उनके साथ उनकी फिल्म थी नौकर बीवी का, जिसे आज भी बड़ा ही पसंद किया जाता है। इस फिल्म के गीत भी बेहद प्रसिद्ध हुए। अनीता राज ने एक काफ़ी लंबा समय फिल्म इंडस्ट्री में बिताया और बहुत फेमस अभिनेत्री रहीं। हालांकि उनके निजी जीवन में कुछ कंट्रोवर्सीज भी रहीं, लेकिन फिर भी अगर उनके अभिनेत्री वाले करियर की बात की जाए तो एक अभिनेत्री के तौर पे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छी फिल्में दीं।

तो दोस्तों, आज हमने बात की अभिनेत्री अनीता राज के विषय में। इनका नाम अनीता राज कैसे पड़ा, उसकी भी एक छोटी सी कहानी है। जब ये अपनी पहली फिल्म के लिए जा रही थी, तब इनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, और उस समय अनीता जी ने अपना नाम बताया अनीता खुराना। यश जी ने इनसे कहा कि अनीता खुराना नहीं, आज से तुम अनीता राज के रूप में जानी जाओगी, और तभी से अनीता जी ने अपना नाम अनीता राज रखा। अनीता जी आज भी बिल्कुल फिट हैं, और कई सारे फिल्मी पर्दे पर दिखाई ना देते हुए भी सीरियल्स में दिखाई देती हैं, और अच्छी अभिनेत्री के रूप में जानी भी जाती हैं, और आज भी उन्हें बड़े अच्छे रोल मिल रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

अभी आप सुन रहे थे एक ही कला कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री अनीता राज पर फिल्माए गए कुछ फिल्मी गीत। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में अभी आपने सुना ये गाना, फिल्म का नाम था यारा दिलदारा। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म ये है जलवा से। इस गीत को स्वर दिए हैं उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गाना, फिल्म का नाम था ये दिल आशिकाना। और आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और ऋषभ भोसले को फिल्म जुल्मी में।

अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म धड़कन में। आइए अब सुनते हैं जुबिन गर्ग का गाया हुआ ये गाना। फिल्म का नाम है गैंगस्टर।

0: काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जान।
1: और आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक और अनु मलिक शंकर महादेवन को फिल्म घातक में।
2: लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है, ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं।
0: कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहां मर्दों में रहो शेर की तरह।
2: पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया, तू चाहता है कि मैं तेरे यहां कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू,
0: ऐसा ही समझो। तो क्या हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपया पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे।
2: डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया।
0: इसकी मौत सोचनी पड़ेगी, सोच।

प्रीति उत्तम और उदित नारायण की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म गदर का ये गाना। और इसी के साथ ही आज का ये फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में जो संदेश हमारे पास सबसे पहले आया है वो आया है पाकुड़ झारखंड से। लिखने वाले श्रोता उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत के सीतासु, अर्णम आनंद और सत्यम आनंद। ये संदेश हमें लिख भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सोरलकर, रतनमाला आरती गौरी और ओम कुमार सोरलकर ने। अगली फरमाइश हमारे पास आई है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। ये संदेश हमें लिख भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवागन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम देवागन, कृष्णा देवागन ने। अगला संदेश लिखने वाले श्रोता सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से।

टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। ये फरमाइश आई है खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर की। भाटापारा छत्तीसगढ़ से लिखने वाले श्रोता सोहन जोशी। अगला संदेश हमें लिख भेजा है वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शकीर, मोहम्मद ललकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और इनके सभी संगीत साथी। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश और प्रमिला बंछौर ने। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला, चीनू, दीपक और अनुश्री श्याम कुमार। ये संदेश हमें लिख भेजा है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल ने। ये संदेश मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइड़े, आशीष और इनके सभी संगीत साथी। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता है कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीम, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम ने। और अगला संदेश सिद्धार्थ नगर दरियापुर भावली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक, शेरी वर्णे, रकोला से अरुणा, बलदेव दामोदर, आदित्य दामोदर। ये फरमाइश हमारे पास आई है झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक की। ये संदेश हमें लिख भेजा है पीहरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी, रिया, जिया, टूसी, आयुषी, निरुद्ध, मुन्नी देवी, जयप्रकाश, वसंतलाल, हीरा मोती, पन्नालाल और इनके सभी परिवारीजनों ने। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति और कुमार डिकेश साहू। अगली फरमाइश आई है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी चादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा, पंचकूला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु और रिधान खुराना। ये संदेश हमें लिख भेजा है मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति रानी, मेनका, श्वेता, स्वाति, सुनशांत, चुलबुल रानी, गोदावरी देवी, प्रदीप कुमार, राजबहादुर शाह, शंभू शाह और जयमंत्री केवट ने। अगले संदेश भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा और इनके सभी संगीत साथियों का। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, कुमार संचित, कुमार प्रथमेश देशमुख, सर्वद देशमुख, प्रणाली सानवी और हर्षिता देशमुख। ये संदेश हमारे पास आया है करीमनगर से लक्ष्मी नारायण, विजया, अभिनय, साईं किरण का। अगली फरमाइश खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा, शुभम और अक्षय सेन की। ये संदेश हमें लिख भेजा है मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, होय हंस कुमार चंदन ने। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर किशोर कुमार का गाया हुआ यह गीत। फिल्म का नाम है महबूबा।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस के लिए ये संदेश हमें लिख भेजा है गंगाजला चौक सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अक्षय लाल, श्वेता रंजन, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, बुल्की वाली और फलना झा ने। और ये संदेश हमारे पास आया है जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्वी और हिमांश का। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, आरुष, शौर्य, दिनेश और इनके सभी संगीत साथी। ये संदेश हमें लिख भेजा है श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद ने। ये फरमाइश आई है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता रजत और मयंक भाटिया की। अगला संदेश कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दली, सविता, निकेत, ऋषिकेश, जीविका, अजय, करिश्मा, आविका, विशाल।

खासून वने का। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मलकापुर से संजय पाटिल और उषा पाटिल। ये संदेश आया है महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षता, रेयांश लोखंडे का। अगली फरमाइश आई है गुजरात से धीरज वी रवारी की। अगला संदेश लिखने वाले श्रोता वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। ये संदेश हमें लिख भेजा है मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने। अगला संदेश ताजपुर मोरबा समस्ती बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण, जयश्री और इनके सभी संगीत साथियों का। ये संदेश दादरी गेट भिमानी से कृष्णा मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। अगली फरमाइश आई है वेरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनिया करमकर की। डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लकी, तानिया और इनके सभी संगीत साथी। चकला बाजार सामना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू मै खुशदिल, सुनीता रानी, आरजू, पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी जिंदल और इनके सभी संगीत साथी। सालार पहलगांव से लिखने वाले श्रोता पीरजादा मिराज और इनके सभी संगीत साथी। अगला संदेश आया है छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीउद्दीन सिद्दीकी, जीशान अहमद, शहनवाज अहमद और इनके सभी परिवारीजनों का। अगली फरमाइश जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी की। आइए सुनते हैं आप सबके फरमाइश पर लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ ये गाना, फिल्म का नाम है बरसात।

ये संदेश हमारे पास आया है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज़ाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान का। अगला संदेश उत्तम कुमार बघेल, रुक्मिणी बघेल, साहिल भारती बघेल का, पंढरिया छत्तीसगढ़ से। ये फरमाइश आई है समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति रोहतास बिहार से सोनम और अनामिका सिंह की। अगला संदेश नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता, सूरज और पीआर जैन। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग। ये संदेश हमें लिख भेजा है नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुहाजिद पटेल, नदीम पटेल ने। अगली फरमाइश आई है श्रीरामपुर से अशोक कुमार, अविका, जीविका, सानू कुमार, अर्चना कुमार की। ये संदेश हमें लिख भेजा है निज़ामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई, शक्की और इनके सभी संगी साथियों ने। ये संदेश भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार का। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण, तरुण और प्रतीक चौहान। जिला वरंगल से मोहम्मद खाजा, रिजावुद्दीन, मोहम्मद खजा, आयशा, तबस्सुम और जुबेरिया। ये संदेश आया है मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कब्रूनिशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी का। ये संदेश लोहागढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह का। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता, प्रणीत, सिद्धांत, अर्जुन और इनके सभी संगी साथी। ये फरमाइश नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओंकार और साई गायकवाड़ की। ये संदेश लिख भेजा है दरभंगा से कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, क्रांति, संगीता, भूलिया देवी गुप्ता और इनके सभी संगीत साथियों ने। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गाना। फिल्म का नाम है पगला कहीं का।

अगला संदेश फुटानी चौक नारायण स्टेज से ललन मिश्रा नूतन अमन पाराशर आराध्या और लल्लू पंडित का। ये संदेश आया है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी बोधराज खोरवाल गीतिका और भानु प्रकाश का। ये फरमाइश सीताराम कांगड़ा बबीता बोर्ड निखिल कांगड़ा तन्वी और अंकित कांगड़ा की। अगला संदेश हमें लिख भेजा है नांदुड़ा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे संदीप और अमूल्य बाठे ने। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी गुलनाज नाज सलमा असद अरहान और मोहम्मद आलम हाशमी। ये फरमाइश आई है महाराष्ट्र से हरिभा बिड़वे अनिकेत शुभांगी और अनीता बिड़वे की। अगला संदेश लिख भेजा है दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी सहनवाज नवेद हसन सुहेल हसन अनम यशफ और रसीद वारसी ने। ये संदेश आया है रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा का। अगला संदेश गंजुड़वारा से आफ्ताब अंसारी रियाज मोहम्मद कैफ अनवर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का। अगली फरमाइश आई है अमरावती महाराष्ट्र से रुचिका रामिकर दिलीप अक्षय रुद्रा और हर्षा रामिकर की। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं जिला सरसा से राधेश्याम शर्मा इंदिरा और सार्थक शर्मा। अगला संदेश जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्टो। अगला संदेश पटेल नगर मौलोड से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया गीता रानी गगनदीप और आरजू जाजौरिया का। ये फरमाइश आई है अकोट से विनायक विंडे मंगला विजय शुभम पवन संजीव और इनके सभी संगी साथियों की। ये संदेश तेलंगाना से कस्तूरी रामुड़े वामुदेवी प्रबुद्धि और इनके सभी संगीत साथियों का। ये संदेश लिखने वाले श्रोता हैं हमारे सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद जावेद खत्री मोहम्मद इकबाल खत्री जैन मुनीरा और भाई खत्री। अगली फरमाइश छत्रपति संभाजी नगर से प्रकाश बोरगांवकर सुषमा प्रांजलि।

सोहम, सदानंद, विराज, स्वीट, अंशुमन, ओवी की। ये संदेश हमें लिख भेजा है भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी ने। अगली फरमाइश हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और इनके सभी परिवारीजनों की। ये फरमाइश आई है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया की। अगला संदेश गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा का। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर का गाया हुआ फिल्म चुपके चुपके का ये गीत।

ढींगिया नमन और अपार ढींगिया की। अगला संदेश गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला विशाल और निशा का। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर का गाया हुआ फिल्म चुपके चुपके का ये गीत।

0: से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: प्रस्तुत है ब्रज लोकगीत, आज के कलाकार हैं मधु अग्रवाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार थे मधु अग्रवाल। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आंध्र प्रदेश में हैं और वे भोगमरमपुरम में सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: विशेषता है कि उन्होंने दो क्षितिजों को छुआ है। एक तरफ ऊंची आसमान को सुने वाली व्यवस्था, एयरपोर्ट का निर्माण, और दूसरी तरफ मेरे यहां के आदिवासी बहनों के द्वारा दीमसा नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाना। मैं चंद्रबाबू के इस विजन को विशेष रूप से सराहना करता हूं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया और ग्रीन

0: फील्ड हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने 13,500 से अधिक आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक थिमसा नृत्य प्रस्तुति देखी, जो उत्तरी आंध्र की जीवंत आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। श्री मोदी आज राज्य में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2,738 रुपये हो गई है। वहीं कोलकाता में 2,872 रुपये 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपये हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितम्बर तक जारी रहेंगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा घर अंगना। इसमें वार्ता प्रसारित की जाएगी स्तनपान बच्चों का अधिकार विषय पर। जानकारी देंगी डॉक्टर रमा सक्सेना।

संध्या 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। इस मैच की बात होगी पुरुषोत्तम दास टंडन जयंती और लोकमान्य तिलक पुण्यतिथि विषयों पर।

संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा। प्रसंग होगा गोपी वरह, कथाकार होंगे देवी चरण शर्मा।

संध्या 7:31 पर संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुनेंगे। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम होगा इस सप्ताह संसद से। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता रात्रि 9:15 पर भी ले सकेंगे।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर अंगना।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुँचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

घर अंगना कार्यक्रम को सुनने वाली हमारी सभी बहनान को विजयलक्ष्मी बहन की राम राम। बहनाओं कैसी हो? बढ़िया। अरे बहनाओं, सावन को बढ़िया ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तो ऋतु बढ़िया आ गई है। हमारी बहन तो जा ऋतु को इंतजार करें, क्योंकि सावन बड़ी सुहावनी सी, बड़ी प्यारी सी ऋतु है। भोले बाबा की कृपा जमें बरस रही है। हमारे ब्रजवासी सवेरे अंधेरे ही भोले बाबा पे लोटा चढ़ाए हुए चल दे में, कोई बेलपत्र से, कोई फल से, कोई फूल से भोले बाबा को मना में। और भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि कोई अगर एक बार भी उनको नामो ले देवे ना तो वो मन जामे। तो ऐसे देव को नमन करें और विनसे प्रार्थना करें कि हमारे समस्त देश में खुशहाली, प्रसन्नता, आनंद, मंगलता बनी रहे। हम सभी आनंद को देखें, हम सभी लाभ को देखें, हम सभी स्वस्थ रहें, कोई हारी बीमारी हमें छू ना सके। और बहनों देखो, जब हम स्वास्थ्य की बात करें, एक अच्छे स्वास्थ्य में सबसे पहले बालकपन की बात आवे, तो सबसे पहले जो शिशु हमें ना नवजात बिन के काजे, मैया का दूध अमृत है। कि मैं ना कि माँ को जो दूध पियोए तभी तो इतना काम कर रहे हो, अगर मैया को दूध पियो है तो जब मैं एक बीमारी ना छू सके तो जे कहावत न्यो ही नहीं बनी है। बहनाओं इन कहावतन में दम है, क्योंकि माँ को दूध अमृत समान। प्रथम टीकाकरण के में जाए बालक के काज है, बहुत जरूरी है। और बहनाओं देखो, आज के समय में बहुत सारी बहन ऐसी हैं जो कि बालकन को स्तनपान कराए वो ना चाहवे, जे गलत है। अगर कोई मजबूरी बस दूध मैया के नए उतर रहे हो तो डॉक्टर से सलाह लें, कोशिश करें और अपने बालक को दूध अवश्य पिवावें, क्योंकि परमात्मा ने जब हमारी गोद में बालक दियो है तो बाकी पेट भरने की व्यवस्था हो अवश्य करिए। जा बात को ध्यान रख के आनंद पूर्वक अपने बालक को स्तनपान करावें। क्यों? क्योंकि जा में कितने गुण भरे हुए हैं कि बालक को बीमारी छू ना सके। और बहनों देखो, जब बालक यहीं से मजबूत बनेगा तो आगे जाके अपने जीवन को बड़े आराम से गुजारेगा, और खुद हम सब प्रसन्न होंगे जब हमारा बालक आनंद में होएगा, तो हमारा बालक तरक्की करेगा, तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न माता पिता होंगे। और बहनों प्रसन्नता तो सदैव ही होनी चाहिए, चाहे हम कोई भी काम करें, क्योंकि काम तो हम बहनन पे सवेरे से संजा तक बनाई भय हो, तो काम करते चलें, आनंद लेते चलें, नाचते गाते हुए अपने जीवन को बिताना है। जे ही मानवता है हम को अहित ना करें और हम आनंद लेते चलें। तो आओ बहनाओं सुने जब बहुत सुंदर से लोकगीत को, आनंद लो बहनाओं।

नैनन को नाए कसूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया। अवई हमारी बहना सुंदरी और सखियन के स्वर में आनंद ले रही हती जा बहुत सुंदर से लोकगीत को। बहनाओं हमारी ब्रजबाला जब अपने सुर में अपने कन्हैया को याद करे है ना, तो सुनबे वारन को मन भावुक है जाए और आनंद आ जाए और कन्हैया की याद आए भी लग जाए और ऐसा लगे अब तो पहले मिल के आएंगे अपने ठाकुर जी से, तब ही हमारा दीदो लगेगा। तो बहनों जी तो हमारी और हमारे ठाकुर जी के बीच के संबंध की बात भाई, पर जब हम माया में ग्रस्त है जामे ना ठाकुर जी की, जीव भगवान ने माया

बनाई है। तो नेक पीठ मुड़ी, माया ने पकड़ो, और जैसे ही पकड़े माया वैसे ही काम याद आ जाए कि अरे निरो काम पड़ो है, कपड़ा उतार के लाने हैं, अगर गीले है गए मी में तो फिर परेशानी है जाएगी, कहीं कोई काम पड़ो है, बालक है, बरसात में बुखार ताप आ जाए तो डॉक्टर दिखाई के लाने हैं। तो भाई हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हते, तो जे स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं इनको समाधान बड़ा जरूरी है, पर सबसे बड़ा समाधान बालपन से करवाओ बहुत जरूरी है। एक बालक की जब नींव रखी जाए ना तो वो स्तनपान मैया के दूध के द्वारा रखी जाए, तो मैया अगर बिने आनंद से अपने आंचल में लपेट के दूध पिवाए तो बालक अपने आप ही रिष्ट पुष्ट बन जाएंगे, और बहुत सारी बीमारी तो बिना छू ना

0: पोस्टर बन जाएंगे और बहुत सारी बीमारी तो बिना छू ना पाऊंगी। और अगर छोटी मोटी बीमारी जो समय के संग आम है तो बिना हमें नज़रअंदाज न करना है और डॉक्टर को दिखा के दवाई लेनी है। और बहनों बहुत सी बहनन को समस्या हो गए कि बहन हम कैसे स्तनपान कराएं, कुछ समस्या तो ना है जाएगी। और स्तनपान कराए भी के कहाँ कहाँ फायदे हैं जब आते हैं, अगर हम किए हैं एक दूसरे से तो ज़्यादा ना समझें, पर अगर डॉक्टर किए तो बाद में वजन बढ़े। तो आओ डॉक्टर रमा सक्सेना बहन से जाने स्तनपान बालकन को अधिकार विषय पर।
1: का दूध है अमृत धारा, शिशुओं के जीवन का सहारा, शिशुओं का है मुख्य आधार, उत्तम सुरक्षित पौष्टिक आहार, यह अमृत शिशु को पिलाएं, नियमित स्तनपान कराएं। माँ के दूध का कोई विकल्प नहीं है, यह शिशुओं के लिए जीवन अमृत की तरह होता है। भारतवर्ष जैसे देश में स्तनपान एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्य है। स्तनपान की महत्ता के कारण ही भारत के धर्म ग्रंथों में माँ के दूध को अमृत के समान कहा गया है तथा माँ को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। माँ का दूध बच्चे का अधिकार है, शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम है, यह कथन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ संतुलित एवं पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। शिशुओं के लिए माँ का दूध संपूर्ण एवं पौष्टिक आहार है क्योंकि माँ के दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एवं जल की आवश्यक मात्रा उपलब्ध होती है। साथ ही कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो केवल माँ के दूध से ही मिल सकते हैं। जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। प्रसव के एक घंटे के अंदर ही स्तनपान करवाएं। यदि ऑपरेशन द्वारा प्रसव हुआ है तो 4 से 6 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलवाएं। हर माता को चाहिए नवजात शिशु को अपना पहला दूध, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, अवश्य पिलाएं। यह काफ़ी पौष्टिक एवं अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता से युक्त होता है। कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबिन नामक रोग से लड़ने वाली प्रतिरक्षा प्रोटीन होती है। माँ के दूध की सबसे बड़ी विशेषता यह है, इसका संगठन तथा मात्रा शिशु की जरूरतों के अनुसार बदल जाती है। यह पोषण के अलावा शिशु को रोगों से लड़ने की क्षमता भी देता है। माँ के दूध में जल की मात्रा शिशु के लिए पर्याप्त होती है तथा केवल स्तनपान कराने पर जन्म के बाद पहले 6 महीने में शिशु को ऊपर से पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। माँ के दूध में कैलोरी की मात्रा शिशु की आवश्यकता के लिए पर्याप्त होती है। माँ के दूध में प्रोटीन की मात्रा 1.5 ग्राम प्रतिशत होती है, जो कि गाय के दूध से कम है, परंतु गुणात्मक रूप से माँ का दूध शिशु के लिए उत्तम है क्योंकि गाय के दूध में मुख्यतः केसीन नामक प्रोटीन होता है जो आसानी से शिशु के पेट में पच नहीं पाती, जबकि माँ के दूध में मुख्य रूप से ऐसा प्रोटीन होता है जिसका पाचन शिशु में सुगमता से हो जाता है। माँ के दूध में लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा गाय के दूध से अधिक होती है, लेकिन लैक्टोज शिशु के मस्तिष्क विकास में सहायक है तथा आसानी से पच भी जाता है। माँ के दूध में फैट उचित मात्रा में होता है तथा इसको पचाने वाला लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो कि पाचन में सहायक होता है। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस तथा विटामिन्स की मात्रा शिशु की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त होती है। इस तरह माँ का दूध अन्य दूध से अधिक गुणकारी है। स्तनपान को सुचारू तरीके से शुरू करने के लिए कुछ सुझाव पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही शिशु पैदा हो उसके बाद जितना जल्दी संभव हो सके शिशु को माँ के नज़दीक रखने की कोशिश करें ताकि शिशु तथा माँ का सीधा संपर्क स्थापित हो। माँ को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करें। ज़्यादातर शिशु जन्म के प्रथम घंटे में ही स्तनपान करना शुरू कर देते हैं। वैसे जब भी माँ को शिशु भूखा लगे उसे स्तनपान कराना चाहिए। बच्चे को स्तनपान तब तक करने दें जब तक कि वो संतुष्ट होकर दूध पीना बंद ना कर दे। ज़्यादातर शिशु 5 से 10 मिनट में अपना आहार ले लेते हैं। दिन में 6 बार फीडिंग कराएं और रात में कम से कम 1 बार तो अवश्य कराएं और दोनों स्तनों से स्तनपान कराएं। किसी भी प्रकार का ऊपरी पदार्थ जैसे शहद

भुट्टी, शक्कर का पानी, ग्लूकोस आदि न दें। शोध कार्यों से पता चला है कि शिशु को जन्म से कुछ घंटे बाद तक उसे बाहरी पदार्थ नहीं देना चाहिए। इससे आंतों की श्लेष्मिक कला पर बहुत ही उत्तेजक प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चे की आंत में सर्वप्रथम माँ का दूध पहुंचना चाहिए। माँ का दूध और बाहर के दूध में पाचन की दृष्टि से विशेष अंतर होता है। जो बच्चे स्टरलाइज दूध पर रखे जाते हैं वे रोगाणुओं के प्रभाव से भले ही बचे रहें, किंतु उनमें माँ के दूध से मिलने वाले उन स्वास्थ्यवर्धक अवयवों से वंचित रहना पड़ता है जो कि बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं। भरपूर रोग प्रतिरोधक क्षमता न होने से बच्चे बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। बाहरी दूध में प्रदूषण की अधिक संभावना रहती है, जबकि माँ का दूध बच्चे के लिए पूरी तरह से स्वच्छ व सुरक्षित रहता है। माँ पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करती हो या नहीं, पर उसके दूध में संक्रमण रोधी तत्वों की मात्रा समान ही होती है। इस तरह अच्छा पोषण न करने वाली माताओं में भी संक्रमण रोधी तत्वों की मात्रा उतनी ही होती है जितनी की अन्य में, लेकिन उनमें अस्थि निर्माण की क्षमता जरूर घट जाती है। इसलिए माताओं को गर्भावस्था में आहार द्वारा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्तनपान कराने से माँ, बच्चे व परिवार तीनों को ही फायदे होते हैं। शिशुओं को स्तनपान से ये लाभ है कि माँ का दूध नवजात शिशु के कोमल अंगों तथा पाचन क्रिया के अनुरूप प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। इससे बच्चे की जरूरत के सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं। इन्हें शिशु आसानी से हजम कर लेता है। शिशु के पेट में गैस बनने, कब्ज, दस्त आदि होने या दूध उलटने की संभावना बहुत कम होती है। माँ का दूध नुकसान करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करके आंतों में लाभदायक तत्वों की वृद्धि करता है। स्तनपान कराने से शिशु को एलर्जी नहीं होती है, जबकि अन्य प्रकार के दूध से शिशु एलर्जी का शिकार हो सकता है। पानी अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, जो बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी या अन्य संक्रमण से बचाने में सहायक होता है। स्तनपान प्रक्रिया शिशु को मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाने में सहायक होती है। दिमाग तेज होता है। स्तनपान प्रक्रिया से मुंह और दांत, इनका सही विकास होता है। जबड़े मजबूत होते हैं। स्तनपान करने वाले शिशु के शरीर पर अनावश्यक चर्बी नहीं चढ़ती, जिससे मोटापा नहीं होता। माँ के दूध का तापमान शिशु के अनुकूल होता है। ये कुपोषण से भी बचाता है। यदि शिशु को दूध प्रचुर मात्रा में मिल रहा है तो उसे कुपोषण नहीं होता। शिशु को शक्तिमान, कांतिमान, बुद्धिमान, सुंदर व निरोग बनाता है। माँ के दूध में आयरन बाइंडिंग गुण भी होता है, अर्थात रक्त में लौह तत्व जोड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे रक्त अल्पता नहीं होती। स्तनपान से माँ को भी फायदे हैं। जैसे जच्चा को गर्भाशय से होने वाली रक्तस्राव कम होता है, गर्भाशय समय से अपनी जगह पर आ जाता है। स्तन, गर्भाशय व अंडाशय में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां, इनका खतरा कम होता है। दिल के दौरा की संभावना कम होती है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं अधिक कैलोरी का सेवन करती हैं, जिससे उनका वजन बढ़ जाता है, लेकिन स्तनपान के दौरान वजन खुद कम हो जाता है और मोटापे से बचाता है। स्तनपान एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक भी है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद कभी कभी माँ को डिप्रेशन की समस्या होने लगती है, जिसे पोस्ट नेटल डिप्रेशन कहते हैं। स्तनपान इस प्रकार के डिप्रेशन को दूर करता है और मन को संतुष्टि देता है। स्तनपान से माँ व बच्चे के बीच भावात्मक संबंध मजबूत होता है। सफरात में परेशानी कम होती है। स्तनपान कराने के लिए किसी प्रकार की तैयारी नहीं करनी पड़ती। घर के बाहर जाने पर शिशु का आहार हमेशा माँ के साथ होता है, जबकि अन्य प्रकार के दूध में गर्म, ठंडा, सफाई आदि का ध्यान रखना पड़ता है। शिशु को स्तनपान कराने से माँ व बच्चे के फायदे के अतिरिक्त परिवार को आर्थिक रूप से लाभ होता है। जैसे डिब्बा दूध, बोतल, पानी आदि की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। स्तनपान से बच्चे बीमारी से बचे रहते हैं, जिससे दवा आदि का खर्चा नहीं होता। आज के आधुनिक समय में कुछ महिलाएं शिशुओं को स्तनपान कराना उचित नहीं समझती। वे सोचती हैं उनकी शारीरिक सुंदरता में कमी आ जाएगी।

0: पर ऐसा नहीं है, बल्कि शिशु को स्तनपान कराने से उनकी आभा में कमी नहीं आती, साथ ही कई तरह के रोगों से बचाव भी होता है। ये देखा गया है जहाँ स्तनपान के प्रति महिलाएं जागरूक हुई हैं, वहीं शिशु मृत्यु दर में भी काफ़ी गिरावट आई है। साथ ही बच्चे किसी शारीरिक व मानसिक रुग्णता के शिकार भी नहीं होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य संस्थाएं जन सामान्य के बीच स्तनपान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही तरह तरह के आंदोलन चलाती रही हैं। यही नहीं, टेलीविजन, रेडियो सहित अनेक संचार प्रणालियां भी अपने प्रसारण में दैनंदिन जनता को प्रेरित करती रहती हैं कि माँ का दूध शिशुओं के लिए सर्वोत्तम है। स्तनपान प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है। जहाँ शिशु के पहले आहार के रूप में सर्वश्रेष्ठ भोजन प्राप्त होता है, वहीं माँ व बच्चे में भावात्मक रिश्ता भी बनता है। WHO के अनुसार शिशु को 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए तथा इसके बाद 2 साल की उम्र तक अन्य आहार के साथ स्तनपान कराना चाहिए। माँ के दूध का कोई विकल्प नहीं है। संसार में न जाने कितने शिशु ऐसे हुए जो अपने मूलभूत आहार के अभाव में काल के गाल में समा गए। बड़े अभाव और पीड़ा से ही संसार में मातृ दुग्ध बैंक का जन्म हुआ है। भारत में 60 से ज़्यादा मातृ दुग्ध बैंक हैं जो अब तक लाखों शिशुओं की जान बचा चुके हैं। यदि मातृ दुग्ध उपलब्ध नहीं है तो प्रसंस्कृत मातृ दुग्ध सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। आज कमजोर व नवजात शिशुओं को आवश्यकता के अनुसार पोषक दूध देना संभव है मातृ दुग्ध बैंक की मदद से। अंत में मैं यही कहूंगी, बच्चे माँ का दूध पिएंगे, स्वस्थ रहेंगे, खूब बढ़ेंगे। घर घर में ये संदेश पहुंचाएं, नियमित स्तन पान कराएं।
1: कितनी अच्छी जानकारी अभी हमें डॉक्टर रमा सक्सेना बहन दे रही थी। और बहनों देखो, बालकन को जे अधिकार हुए कि बिने बिनकी माँ को दूध अवश्य मिलना चाहिए। चाहे युग कैसो हो, बालक अपनी मैया की गोद में वात्सल्य के संगी बड़े हुए ना, तो वो अपने बचपन को सदैव याद रखें। और भगवान से प्रार्थना है कि सभी बालकन को वात्सल्य बना रहे, बिनकी माता पिता सदैव स्वस्थ रहे, क्योंकि माता पिता धरती पे भगवान को रूप है। प्रभु सबके पास एक एक करके नए आए सकें तो बिन ने धरती पे माता पिता को भेजो है। और बहनों जा समय ब्रज में सावन मास चल रहे हो, भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए लगाए के गिरिराज जी को मनाए रहे हैं, तो आओ चलो हमो मन से गिरिराज जी को मनाएं और आनंद लें जब बहुत सुंदर से लोकगीत को।

अभी हमारी बहना आंचना बहन से इतने सुंदर से लोकगीत को आनंद ले रही हती और जा गीत सुन के मन की भावना और ऊपर बल है जावे कि ब्रजवास हमें मिलना ही चाहिए भगवान। एक बार दियो है तो एक बार को लालच और मन में आए गए है, हम जब जब जन्म लिए ब्रजवासी बने। तो बहनाओं अब तो देखो समय है गयो है, जी घड़ी कह रही है कि विराम देवी को समय आए गए है। तो हमारी सभी बहनान को विजयलक्ष्मी बहन की राम राम।

0: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर अंगना। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है सामुदायिक शिक्षा गान पाठ के अंतर्गत हिंदी भाषा पाठ। बोल हैं हम होंगे कामयाब।
1: बच्चों नमस्कार। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा गीत सिखाएंगे, उसके बोल हैं होंगे कामयाब। ये गीत आपने पहले सुना है?
2: Yes, sir.
1: तो आप सीखेंगे ना?
2: Yes, sir.
1: अच्छा, पहले हम आपको इस गीत के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये गीत एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश सॉन्ग का हिंदी ट्रांसलेशन है, और वो इंग्लिश सॉन्ग था वी शैल ओवरकम, और ये पॉल रॉबसन ने इसको गा के बहुत मशहूर किया था, और इसका हिंदी अनुवाद किया श्री गिरजा कुमार माथुर ने।

0: सबसे पहले आप इसके बोल लिख लीजिए, कॉपी पेंसिल खोलिए। होंगे कामयाब,
1: होंगे कामयाब।
0: दूसरी बात फिर लिखिए, होंगे कामयाब,
1: होंगे कामयाब।
0: और तीसरी बार, हम होंगे कामयाब एक दिन,
1: हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: हो मन में है विश्वास,
1: हो मन में है विश्वास।
0: पूरा है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास।
0: हम होंगे कामयाब एक दिन,
1: हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: तो बच्चों ये तो स्थाई हो गई। अब पहला अंतवा लिखिए, होगी शांति चारों ओर,
1: होगी शांति चारों ओर।
0: और दूसरी बार फिर आएगा, होगी शांति चारों ओर,
1: होगी शांति चारों ओर।
0: और तीसरी बार, होगी शांति चारों ओर एक दिन,
1: होगी शांति चारों ओर एक दिन।
0: हो मन में है विश्वास,
1: हो मन में है विश्वास।
0: पूरा है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास।
0: होगी शांति चारों ओर एक दिन,
1: होगी शांति चारों ओर एक दिन।
0: अब दूसरा अंतर लिखिए, हम चलेंगे साथ साथ,
1: हम चलेंगे साथ साथ।
0: डाल हाथों में हाथ,
1: डाल हाथों में हाथ।
0: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन,
1: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन।
0: हो मन में है विश्वास,
1: हो मन में है विश्वास।
0: पूरा है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास।
0: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन,
1: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन।
0: अब तीसरा अंतर लिखिए, नहीं डर किसी का आज,
1: नहीं डर किसी का आज।
0: नहीं भय किसी का आज,
1: नहीं भय किसी का आज।
0: नहीं डर किसी का आज के दिन,
1: नहीं डर किसी का आज के दिन।
0: हो मन में है विश्वास,
1: हो मन में है विश्वास।
0: पूरा है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास।
0: नहीं डर किसी का आज के दिन,
1: नहीं डर किसी का आज के दिन।
0: और इसके बाद होंगे कामयाब आ जाएगा। तो लफ्ज लिख लिए ना आप सबने।
1: यस
0: अच्छा, इसकी धुन जो है वो कहरवा ताल में है और इसमें चार मात्रा होती हैं। देखिए कैसे, धागी ना दे ना दिन, एक दो तीन चार,
1: एक दो तीन चार,
0: एक दो तीन चार,
1: एक दो तीन चार।
0: और अब इसकी बोल बात देख लीजिए, इसकी बोल बात कैसे है, होंगे

0: इसी तरह से बच्चों इसके तीनों अंतरों की बोल बांट रहेगी। अब इसको गाने में हम लोग सिखाएंगे। तो नलिनी जी, पहले आप बताइए कि इसकी धुन कौन से स्वर से है?
1: इस गाने की धुन पांचवें काले से है।
0: बच्चों, पांचवें काले से गाना है, कौन से स्वर से?
2: पांचवें काले से।
0: अच्छा, अब सा दीजिए।

0: तो ये तो बच्चों इसकी स्थाई हो गई। अब पहला अंतरा सीखेंगे। पहला अंतरा क्या है इसका जरा बताइए।
1: होगी शांति चारों ओर।
0: और ये धुन इसकी वही है जो होंगे कामयाब की है, लेकिन इसको सम के दो मात्रा बाद गाना है। कैसे?

0: तो बच्चों ये पहला अंतरा हो गया। आप दूसरे अंतरे के बोल बताइए क्या है?
1: हम चलेंगे साथ साथ।
0: और ये भी सम के दो मात्रा बाद शुरू होता है। तो नलिन जी आप सिखाइए।

0: दूसरा अंतर आपको याद हो गया। अब तीसरे अंतर के बोल बताइए क्या है?
1: नहीं है किसी का आज।
0: इसकी धुन भी पहले अंतर के समान है, लेकिन ये दो मात्रा से नहीं शुरू होगा, ये सम के तीन मात्रा बाद शुरू होगा। कैसे? एक

आपको ये तीसरा अंतरा भी आपको याद हो गया। इसके बाद होंगे कामयाब आपने गाना है और आखिर में तीन बार लाइन रिपीट करनी है, हम बताते हैं कैसे। पहले आप होंगे कामयाब गाइए, 1 2 3 4।

0: जब पूरा गाना ये खत्म हो जाएगा तो होंगे कामयाब, इस धुन में गाना है।
1: अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक शिक्षा गान पाठ के अंतर्गत हिंदी भाषा पाठ, बोलते हम होंगे कामयाब एक दिन। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Greenfield Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh. Prime Minister launches projects worth 18,000 crore rupees in infrastructure and energy sectors. In Jammu and Kashmir, second labourer injured in yesterday's terrorist attack in Kulgam succumbs to injuries. Price of 19 kilogram commercial LPG cylinder reduced by about 200 rupees. Flood situation remains critical in Odisha, with Mahanadi River continuing to swell, threatening fresh areas. And in Taipei Open Badminton, Tanvi Sharma storms into women's singles final. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and that the centre is fully committed to realising the vision of Swarn Andhra and Viksit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development. Addressing a public meeting after inaugurating the Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram, the Prime Minister said development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure, reflect the state's fast-paced progress under the NDA governments at the centre and in the state.
3: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीस की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना

0: पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की, इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहां शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू GST राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उड़ीसा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि उड़ीसा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई

0: विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंदुझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गाँव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमरीका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी

0: मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अपरिहार्य कारणों से शाम को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों का प्रसारण में आंशिक परिवर्तन किया गया है। ब्रज ग्रामीण किसानवाणी कार्यक्रम अब शाम 6:15 के स्थान पर 6:50 से 7:20 तक प्रसारित होंगे। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय 6:30 से 6:50 तक एवं ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय 6:15 से 6:30 तक रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म चिराग का ये गाना। बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया था मदन मोहन ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म चोरी चोरी से। आवाज़ें लता मंगेशकर और मन्ना डे की हैं।

किशोर कुमार के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म दाग का ये गाना। इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों का गाया हुआ ये गाना। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी। शब्द रचना हसरत जयपुरी की है, संगीत शंकर जयकिशन का।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले के गाए फिल्म हमराज के इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। अपरिहार्य कारणों से शाम को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। ब्रज ग्रामीण किसानवाणी कार्यक्रम अब शाम 6:15 के स्थान पर 6:50 से 7:20 तक प्रसारित होगा। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय 6:30 से 6:50 तक एवं ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय 6:15 से 6:30 तक रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। इस मीटर पर हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: युवाणी सुन रहे सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, प्रतिदिन हम आपके लिए एक जानकारी का भरा हुआ खजाना साथ में लेकर आते हैं और आज हम बात करेंगे आज की बात के क्रम में पुरुषोत्तम दास टंडन जयंती के बारे में।

इनका सेनानी राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ 1 अगस्त को, यानी आज ही के दिन 1882 में। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी नेता के साथ साथ वो एक समाज सुधारक, कर्मठ पत्रकार, हिंदी की अनन्य सेवक और तेजस्वी वक्ता भी थे।

साथियों, हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन सरलता, सेवा और सादगी की प्रतिमूर्ति थे। वो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनयिक, पत्रकार, वक्ता, समाज सुधारक और हिंदी भाषा के सेवक थे। उनके पिता का नाम सालिक राम था। उनका विवाह चंद्रमुखी देवी के साथ मुरादाबाद में हुआ। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करवाने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल भी गए। भारत के प्रमुख स्वाधीन

बात करें उनकी शिक्षा की तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा सिटी एंग्लो वर्नाक्यूलर विद्यालय में हुई थी। तत्पश्चात उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल कर 1906 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस के लिए काम करना शुरू किया। 1899 में अपने विद्यार्थी जीवन से ही वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी रहे और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि इलाहाबाद से वो चुने गए। सन 1919 में जलियावाला बाग हत्याकांड का अध्ययन करने वाली कांग्रेस पार्टी की समिति से वो संबंध रखते थे। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1921 में सामाजिक कार्यों और गांधी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम में काम के लिए हाईकोर्ट का काम छोड़कर वो इस संग्राम में कूद पड़े। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रतिष्ठित करवाने में उनका खास योगदान माना जाता है और देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उन्हें दिया गया। भारत सरकार द्वारा सन 1961 में भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। ऐसे महान कर्मयोगी राजश्री के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन का 1 जुलाई 1962 को निधन हो गया। उन्होंने अपने जीवन काल में कई साहसी और ऐतिहासिक कार्य किए।

साथियों, रेडियो महफिल के अंतर्गत आपने सुना ये एल्बम का प्यारा सा गीत। और अब बात करते हैं अपनी आज की बात के क्रम में लोकमान्य तिलक पुण्यतिथि के विषय में। साथियों, जिन्होंने आज़ादी की लौ को जन जन तक पहुंचाया था, स्वराज का सपना हर भारतीय को दिखलाया था, कलम बनी हथियार और संघर्ष बना पहचान, लोकमान्य तिलक को शत शत नमन, भारत के वीर महान। जी हाँ दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वो महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षक, पत्रकार और राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें प्यार और सम्मान से लोकमान्य कहा जाता था, जिसका अर्थ है जनता द्वारा स्वीकार किया गया नेता। साथियों, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नगिरी में हुआ था। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक संस्कृत और गणित के विद्वान थे और शिक्षक भी थे। बचपन से ही तिलक बहुत तेज बुद्धि के थे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा और समाज और इसके साथ ही राष्ट्र के विकास का सबसे मजबूत माध्यम माना। आगे चलकर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में

महत्वपूर्ण काम किए और युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास किया। तिलक उन नेताओं में थे जिन्होंने अंग्रेजी शासन के सामने खुलकर विरोध किया। उनका मानना था कि भारत को अपना शासन खुद चलाने का अधिकार मिलना चाहिए और उनका प्रसिद्ध नारा, जो कि हम सभी जानते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आत्मसम्मान, स्वराज और जन भागीदारी की भावना जगाने में इस विचार की बड़ी भूमिका रही। तिलक ने केसरी नामक मराठी और द मराठा नामक अंग्रेजी समाचार पत्र के माध्यम से अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना की और जनता को जागरूक किया।

दोस्तों, लोकमान्य तिलक का निधन 1 अगस्त यानी आज ही के दिन 1920 को मुंबई में हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनका निधन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बड़ी क्षति था, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए। न झुके जो अत्याचार की आगे, वो तिलक की पहचान थी। स्वराज की आवाज में उनके दिल की धड़कन महान थी। देश के लिए जिए, देश के लिए अपना जीवन वार दिया। भारत माँ के इस वीर सपूत को शत शत नमन किया। साथियों, आज की बात के क्रम में आज हमने बात की लोकमान्य तिलक पुण्यतिथि के विषय में, और अब रेडियो महफिल में आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

अब कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। श्रोताओं, अपरिहार्य कारणों से शाम को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। ब्रज ग्रामीण किसानवाणी कार्यक्रम अब शाम 6:15 के बजाय 6:50 से लेकर 7:20 तक प्रसारित होंगे। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय शाम 6:30 से शाम 6:50 तक और ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय 6:15 से के स्थान पर 6:30 तक रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

साथियों, इसी गीत के साथ अब युववाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।

युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार सदैव ऊंचे रहे और उन्होंने शास्त्रों का आत्मसात किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैसूरू भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है।
1: मैसूरू भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरू का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है और शेष अपशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने 54 किलो और जैस्मिन ने 70

0: 51 किलो में स्वर्ण पदक जीते। 55 किलो में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉट पुट F57 वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। शुभम जोयाल को रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।
0: फ्रॉम लिस्टनर।

रात 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वृत्त चित्र आजादी का काव्य पाठ। रात 10:00 आप सुन सकते हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का समय रहेगा शाम 6:50 पर। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे लखनऊ केंद्र से।

शाम 6:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत गोपी विरह का प्रसंग। कथाकार होंगे देवी चरण शर्मा।

संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे शाम सुहानी, शाम 7:31 पर। कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आज आप सुनेंगे जीत फिल्म के कुछ गीत।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देश गान।

अभी आप सुन रहे थे समवेद स्वरों में देशभक्ति परक रचना। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे आप श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत गोपी विरह का प्रसंग। कथाकार हैं देवी चरण शर्मा।

बिलखाए, मुक्त कहे गोपाल सुं मेरी मुक्त बताए। पड़ी रहो या गैल में साधु संत चल जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे हाल मुक्त हो जाए। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, पात पात और डाले पे श्री राधे राधे हो। बोली वाकी बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी राजा परिचय से कहने लगे कि हे राजन, अब मैं आपको श्री कृष्ण के ब्रह में गोपी ने की क्या दशा थी वो आपको कथा सुनाऊं, और इनकी कथा ऐसी है कि इनकी दशा ऐसी क्यों हुई। एक बार यमुना के किनारे पर गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ रास कर रही थी, तो गोपियों को गुमान है गयो और वो कहने लगी कि कन्हैया तो हमारे बिना रह ही ना सके। तो कन्हैया को मालूम भयो कि इनके अंदर अहंकार प्रवेश है गो, अहंकार को नष्ट करवे के ताई भगवान श्री कृष्ण ने अपने को अदृश्य कर लियो। जब गोपिन को नहीं कृष्ण को देखो तो गोपियां ब्रह में व्याकुल हो गईं, और इतनी ब्रह में व्याकुल हो गईं कि फूट फूट के रोने लगी, कन्हैया को ढूंढने लगी। और उन्होंने 29 श्लोकों में अपनी स्तुति प्रकट की और अपने विभिन्न प्रकार के ब्रह प्रकट करने लगी, उनमें से कुछ आपके सामने कैसे ब्रह प्रकट कर रही हैं

लता पताओं से पूछ रही हैं, एरिक कन्हैया कहाँ हो, ढूंढ रही हैं, लेकिन कन्हैया उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। कन्हैया कहीं दूर नहीं गए, उन्हीं सखियों में विराजमान हो गए और अपना पर्दा करके उन्हीं के ब्रह में स्वयं ब्रह भी प्रकट करने लगे। एक गोपी और बहुत ही व्याकुल होकर के कहने लगी, अरे कन्हैया तुम नहीं आए तो हम तुम्हारे ब्रह में अपना शरीर छोड़ देंगे। एक सखी कहने लगी, अब उनको ये भी नहीं मालूम है कि हम आज की

बात कर रहे हैं या कल की बात करें। एक ने कहा, मैंने काल सुनी पिया आवन की, हे सखी, मैंने काल सुनी पिया आवन की, मैं चतुर नारी श्रृंगार बनायो, और पीरी पहुंची पीरी गजरा, पीरोई हार गले लिपुटायो, और पीरी पाटिनी को पलिका, मिन पीरी निवारण सू बुनवायो।

बैरिश। सखी बहुत व्याकुल हो रही है, रो रही है, कन्हैया दिखाई नहीं दे। एक सखी कहने लगी कि वो तो बड़ो ही निगोड़ो है सखी, वो हमें छोड़ के चले गए। कहने लगी

श्याम आयो नहीं देखते देखते बाट हारी। कितनी व्याकुल हो रही है, रो रही है, आंसुओं की धार बह रही है, लेकिन उनमें से राधा किसी से कुछ नहीं कह रही हैं। वो सखियों से अलग हो करके और अपना ब्रह प्रकट कर रही हैं। अरे कन्हैया, तू तो बहुत ही बेदर्दी हो गया, तूने तो मेरी तरफ नेक भी निगाह करके नहीं देखा, और तू तो गया लेकिन दाऊ जी को भी ले गया। तो कहने लगी रो रो करके, अपने ब्रह को प्रकट कर रही हैं राधा जी, कि बेदर्दी मोहन प्यारे, बेदर्दी मोहन प्यारे, चल दिए नाता।

दूसरी सखी आपस में बतरा रही हैं, कह रही सखी कन्हैया हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो रो रो करके कहने लगी,

0: कन्हैया ने अपना पर्दा हटाया और गोपियों को दर्श दिया, बोलिए बाके बिहारी लाल की।
1: अभी आप सुन रहे थे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम। आज आपने आनंद लिया श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत गोपी विरह के प्रसंग का। कथाकार थे देवीचरण शर्मा। आइए अब सुनते हैं एक ब्रज लोकगीत।

भगवती देवी वाष्णेय के स्वर में आपने सुना ये ब्रज लोकगीत। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

अभिजीत और साथियों को आपने सुना देव फिल्म में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और हरिहरन के स्वरों में फिल्म का नाम है सूर्यपुत्र शनिदेव।

अमित त्रिवेदी की आवाज में आपने सुना केदारनाथ फिल्म का ये भजन। इसी फिल्म के साथ आज का संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: खेती हुआ थे वहाँ मजबूत हो जाते। और सबसे बड़ी बात है जो बार बार कहा जाता है कि खेती किसानी एक बड़ा खतरे का काम है, बड़ा जोखिम का काम है, तो वो जोखिम भी जो है सरकार कवर कर देते हैं, तो किसान के एक तरह से मतलब रक्षा हो जाता है
1: बिल्कुल,
0: आर्थिक रूप
1: मतलब
0: से।
1: पूर्ण सुरक्षा समझ लो
0: हाँ
1: मिल
0: बिल्कुल।
1: जाती है।
0: क्यों बताओ कि
1: हाँ
0: अगर पंच भाई फसल बीमा करावा चाहते हैं तो फिर का कुछ रकम उनका जमा करने पड़ता, खर्ची जमा
1: बिल्कुल
0: करने पड़ते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: भैया, खरीफ फसल की बात करी जाए तो जोन कुल बीमा राशि होते हैं भैया, उके जोन है केवल 2% प्रीमियम जोन है किसान देते हैं, और अगर रबी फसल की बात की जाए तो कुल बीमा राशि के 1.5% प्रीमियम देते हैं किसान भाई लोग, और अगर वाणिज्यिक और बागवानी जैसी फसलन की बात करी जाए तो इपर 5% जोन है प्रीमियम हमका सबका देख होते है, बाकी का खर्च जोन है वो सरकार वहन करत है।
0: लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी बात है कि आप अपने जो बैंक है उमा अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना है तो आप जाके यहाँ बैंक के प्रबंधक से संपर्क कर सकते हो कि भैया हमारा फसल बीमा हो के यहाँ है। लेकिन कईयों बार होते हैं कि कई मनई चाहते हैं कि हम फसल बीमा ना करीबा, तो ओहू के लिए आपके यहाँ अगर ऐसा है तो आप बैंक में जाके यहाँ एक बार आपके यहाँ प्रबंधक से मिलकर यू मना करे परी कि हम फसल बीमा ना करीबा। लेकिन हम तो कहे थे कि भैया मना कोई ना करो, सब लोग कराओ, ज्यादा से ज्यादा कराओ, क्योंकि बहुत मामूली प्रीमियम जी का कहते हैं बीमा राशि के जो किस्त होते हैं उसके आधार पर आपके यहाँ एक बड़ा जो है मिल जाते हैं उसका पैसा वापसी नष्ट होते, तो इका जरूर कराओ, और अति महत्वपूर्ण योजना है। और भैया एक चीज और जान लो कि चाहे जितनी महत्वपूर्ण योजना सरकार की हो, जब तक हम सबकी भागीदारी नहीं होती तब तक योजना
1: योजना
0: अपने
1: सफल नहीं हो
0: हाँ अपने
1: पावत है।
0: लक्ष्य तक नहीं पहुंचते।
1: बिल्कुल, तो अगर सरकार बहुत कुछ हमारे खातिर सोचे है लेकिन अब हम जागरूक ना हो बे तो भाई देखो कहूँ ना कहूँ फिर जो है वो हम कही जरूर है लेकिन वो सफलता हमार हो जाती है ना।
0: बिल्कुल
1: तो हम पंचे उस सब योजना का फायदा ले, लाभ उठाई और अपने आप का अपनी फसलन का सुरक्षित करी।
0: लेकिन रेणु बहनी एक बात और है कि हम पंच लाभ उठाई तो इसके लिए हमका जानकारी भी पूरी होगा चाहिए,
1: बिल्कुल हो
0: और जो
1: चाहिए।
0: जानकारी होते हैं और खास करके जो आज के बहुत महत्वपूर्ण खबर होते हैं वह हाँ अपने कार्यक्रम में हम लेकर आए थे, तो देखो आज के खबर अपने कार्यक्रम में है इका जाना जाए।
2: किसान भाइयों प्रस्तुत है आज की खबर। मुख्य सचिव SP गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही उन्होंने 16 अगस्त से शुरू होने वाली खरीफ 2026 ई खसरा पड़ताल की सभी तैयारियां समय से पूरी करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य पूरी संवेदनशीलता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा ले रहे थे। बैठक में उन्हें बताया गया कि प्रदेश में अब तक 2.45 करोड़ से अधिक किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण हो चुका है, जो केंद्र सरकार के लक्ष्य का 85% है। गाजियाबाद और रामपुर ने लक्ष्य के अनुसार 100% पंजीकरण पूरा कर लिया है। मुख्य सचिव ने खरीफ 2026 डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी ई खसरा पड़ताल की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी जिलाधिकारियों को सर्वेयरों का चयन, प्रशिक्षण और कार्य आवंटन समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अभियान निर्धारित समय पर सुचारू रूप से शुरू हो सके। बैठक में नंद बाबा दुग्ध मिशन की समीक्षा करते

0: हुए एसपी गोयल प्रत्येक गांव में दुग्ध सहकारी समितियों के गठन और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। अगस्त में सभी जिलों में दुग्ध कॉन्क्लेव भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों की नियमित निगरानी, प्रभावित परिवारों को समय पर राहत सामग्री उपलब्ध कराने तथा जिलाधिकारियों को लगातार क्षेत्र भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए और राहत कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता न हो। किसान भाइयों, ये थी आज की खबर।
1: देखो रेणु बहनी, कहा जाता है कि खेती किसानी और पशुपालन ये एक ही गाड़ी के दो पहिया हैं, क्योंकि अगर एक स्वस्थ है तो दूसरा स्वस्थ है, और अगर एक स्वस्थ ना है तो दूसरा भी जो है ठीक ना चली,
2: ठीक ना चली। लेकिन भैया, अगर कबो हम पंचे अगर एक के बैलेंस गड़बड़ात है तो दूसरे उके बैलेंस बनाए देते हैं।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहो, संतुलन दोनों के बराबर चलेगा चाहिए। तो देखो, अपने जो हरहा गोरु हैं, चाहे दूध वाले हों चाहे जो काम करते हैं वही हों, तो वहाँ एक बड़ी सामान्य सी बीमारी लग जाती है, खुरपका और मुंहपका। जी वहाँ अगर दूध वाले हैं तो डॉक्टर भैया लोग बतावा करते हैं, हम तो उन्हें से सुने हैं कि अगर दूध वाले हैं तो उनका दूध चला जाता है, अगर काम करने वाले हैं तो काफी कमजोर हो जाते हैं, काम भी उनसे नहीं हो पाता।
2: बिल्कुल भैया, कबो कबो तो अगर ये सब बीमारी ज्यादा बढ़ी गई तो अपन जानवर भी चला जाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल चला जाते हैं, जब उनकी उत्पादकता चली गई तो फिर जानवर का उपयोग भी कम हो जाते हैं। तो देखो, ये एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी मुश्किल से जाते हैं अगर लग जाते हैं, लेकिन अगर इनका टीकाकरण करा दिया जाए तो ये बीमारी अपने हरान के गोरुन के पास अब नहीं करेगी,
2: बिल्कुल ना आए। इके खातिर हमका टीकाकरण जरूर समय पर करवावे चाहिए, और जब इसकी सही जानकारी सबसे पहले तो हमरे लगे हुई।
1: हाँ।
2: तब है देखो, हम पंचे जब कोनी चीज के बारे में अच्छे से जाने रहते हैं तो फिर वो काम समय पर जरूर करवा लेते हैं।
1: तो देखो, आज अपने कार्यक्रम में हाँ, डॉक्टर संगीता तिवारी बहनी जुड़ रही हैं और ये बता रही कि खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण अभियान, तो यू अभियान का है, कैसे चलावा जा रहा है, कैसे लाभ लिया जाए, आओ जाना जाए।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां पशुपालन से आप जुड़े हैं वहाँ कुछ समस्याएं भी आती हैं, जैसे इस मौसम में FMD यानी खुरपका मुंहपका रोग की समस्या। ये रोग है क्या और इसका बचाव कैसे हो, और उसके लिए जो टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश से निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र डॉक्टर संगीता तिवारी साहिबा, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग है क्या, और इसके बचाव के लिए जो टीकाकरण अभियान अपने प्रदेश में चल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी?
4: नमस्कार आप सबको। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक FMD का अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 45 दिन का अभियान निरंतर चलेगा, और जिसका कि एक ही उद्देश्य है कि हम अपने सारे पशुओं को टीका लगा के इस रोग से रोग मुक्त करना चाहते हैं। ये टीकाकरण अभियान लगातार सालों साल चलेगा, जिससे कि हम इस बीमारी को अपने प्रदेश से भगा सकें और हमारे पशु खूब स्वस्थ रहें और अधिक से अधिक दूध दें।
3: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाई बहन ये जानना चाहेंगे कि ये पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग है क्या, और इसके नियंत्रण के लिए कौन सा अभियान चल रहा है?
4: ये विषाणु से होने वाला एक अत्यंत संक्रामक रोग है। एक गांव के अगर एक पशु को ये रोग हुआ तो हवा, पानी, चारे और संपर्क के जरिए पूरे गांव में फैल जाता है। इसके प्रमुख लक्षण भी मैं बताना चाहूंगी। पशु को बहुत तेज बुखार होता है, मुंह, जीभ और मसूड़ों में छाले पड़ जाते हैं, मुंह से लार टपकती है और पशु चरना बंद कर देता है, और इसके अलावा खुरों के अंदर भी जख्म हो जाते हैं जिससे पैर से लंगड़ाने लगता है। और जो सबसे ज्यादा इसका प्रभाव हमारे किसान भाई बहनों के ऊपर पड़ता है वो ये कि दूध का प्रोडक्शन घट जाता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन 80% तक गिर जाता है। गर्भवती गाय भैंसों का गर्भपात हो सकता है। नर पशु खेत में काम करने लायक नहीं रहते। भले ही पशु ना मरे लेकिन वो लंबे समय के लिए कमजोर हो जाता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कम हो जाती है उस कंडीशन में वह विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होता है बार बार, क्योंकि शरीर उसका अपना रोग नियंत्रण कर ही नहीं पाता है।
3: डॉक्टर साहब, इलाज से बेहतर बचाव है, ये विषाणु जनित बीमारी है, तो इसके बचाव के लिए जो अभियान चल रहा है प्रदेश में उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे पशुपालक भाइयों बहनों से?
4: देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP के तहत उत्तर प्रदेश में FMDCP चरणबद्ध तरीके से

0: चल रहा है। दिनांक 22 जुलाई से 8 सितंबर के मध्य ये 45 दिन का आठवां चरण ये महाअभियान है। और इस महाअभियान की महाआहुति है कि हर किसान को अपने अपने पशुओं को टीका अवश्य लगवाना है, अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस टीके को अवश्य लगवाना है, जिसमें डोर टू डोर यानी घर घर जाकर टीकाकरण करने वाली टीम सरकार के द्वारा पशुपालन विभाग द्वारा बनाई गई है, जो जाएंगी टीकाकरण करेंगी, पशु का एक वैक्सीनेशन कार्ड बनाएंगी, उसको किसान बहन भाइयों को संभाल के रखना होगा। और ये टीका, जो मैं सबसे जरूरी बात आपको बताना चाहती हूँ, कि सरकार की तरफ बिल्कुल निःशुल्क टीका है।
1: डॉक्टर साहब, जब टीमें घर घर जाएंगी या गाँव गाँव जाएंगी टीकाकरण अभियान के लिए, खुरपका मुहपका से बचाव के लिए, तो क्या कान में कोई टैगिंग भी होगी क्या?
0: जब हमारी टीमें घर जाती हैं तो वे पशु के कान में एक पीला प्लास्टिक का टैग भी लगाती हैं, जो कि पशु का एक तरह से, जैसे हम लोगों का आधार कार्ड होता है, इसी तरह पशु की वो यूनिक आईडी होती है। ये कान में लगने वाला 12 अंकों का टैग पशु का आधार कार्ड ही कहा जाना चाहिए,
1: यानी पशु का पहचान पत्र।
0: बिल्कुल, पहचान पत्र है। और भारत पशुधन पोर्टल पर इसके पशु का टीकाकरण रिकॉर्ड इस टैग के द्वारा ही ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, गाँव में अक्सर पशुपालक भाइयों बहनों के मन में भ्रम होता है कि अगर गर्भित जानवर है तो उसको टीका न लगे, आप क्या कहना चाहेंगे पशुपालक भाइयों बहनों से?
0: ये सुरक्षित होता है।
1: और अगर बुखार है जानवर को तो क्या टीका लग सकता है?
0: हाँ, सजेस्टेड नहीं है। बुखार की कंडीशन में थोड़ा सा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो उसमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, और जब बुखार ठीक हो जाए तो उसके पश्चात टीकाकरण, क्योंकि 45 दिन का है, तो पशु अगर बीमार भी होगा तो 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, वहां नोट करा देना चाहिए कि इसका छूट रहा है और इसका टीकाकरण समय से कर लिया जाए।
1: डॉक्टर साहब, ये क्या साल में टीकाकरण एक बार होता है या दो बार?
0: दो बार होता है, 6-6 माह पे ये टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाता है।
1: तो एक जैसे अभी चल रहा है
0: जी,
1: इसके 6 माह बाद दूसरी बार?
0: बिल्कुल, 6 माह के बाद ये फिर से रिपीट होगा, और हम जब तक इस विषाणु जनित रोग को अपने यहाँ से विदा नहीं कर देंगे, तब तक ये महाअभियान हम चलाते रहेंगे।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों की इस महाअभियान में भागीदारी बढ़े, एक एक जानवर को खुरपका मुहपका का टीका लगे, इसके लिए क्या पशुपालक भाइयों बहनों का आह्वान करना चाहती हैं?
0: जब टीम आपके द्वार पे आए तो आप सहर्ष खुशी से उनका अभिवादन करते हुए इस टीकाकरण अभियान के अंदर अपने पशुओं को टीका लगवाएं, और गर्भवती पशुओं को भी टीका लग सकता है।
1: डॉक्टर साहब, जो ये टीका है ये किन किन जानवरों को, जैसे गाय भैंस में कितनी उम्र से कितनी उम्र तक को लग सकता है?
0: केवल शुरू के 3 महीने मैटरनल एंटीबॉडी होती है बच्चों के अंदर, माँ की जो एंटीबॉडी होती है उसमें अगर हम टीकाकरण करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन शेष समय में सारे पशुओं को टीका किया जा सकता है, सब बिल्कुल सुरक्षित है।
1: डॉक्टर साहब, क्या इसका इलाज भी संभव है अगर किसी जानवर को हो जाए तो?
0: बिल्कुल, इसका इलाज संभव है, और निरंतर अस्पतालों में केस आते हैं और इलाज किया जाता है, संबंधित दवाइयां लगाई जाती हैं, और खुरों के अंदर भी एंटीसेप्टिक डाला जाता है, और मुंह के छालों के लिए भी फिटकरी इत्यादि के पानी का घोल लगाया भी जाता है, दवाइयां भी आती हैं जो लगाई जाती हैं, जिससे रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इलाज हो, तो इलाज बड़े आराम से इसका किया जाता है।
1: टीकाकरण के बाद पशुपालक भाइयों बहनों को अपने जानवरों की देखभाल में कुछ खास हिदायत?
0: गाँव में अगर 90% से ज्यादा पशुओं को टीका लगेगा तभी हर्ड इम्यूनिटी बनेगी, यानी कि सामूहिक सुरक्षा बनेगी। और इसके अलावा सभी पशुओं को, गाय भैंस बछड़े सबको टीका लगवाएं, बाड़े को साफ रखें, नए खरीदे गए पशुओं को 14 दिन अलग रखने के बाद टीका लगवाकर पुराने पशुओं में मिलाएं। ऐसा ना हो आपके पशु ठीक ठाक हैं और बाहर से आया पशु वैक्सीनेटेड ना हो तो वह बीमारी को लेकर चला आए, इस बात का ध्यान रखा जाए। किसी भी आपात स्थिति में जानकारी के लिए पशुपालन विभाग के टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करें,
1: यानी 1962।
0: एक विशेष तरह की हमारी सेवा है MVU, मोबाइल वेटनरी यूनिट, जो कि द्वार पे पहुंचती है और इलाज देती है पशुओं को।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहती हैं पशुपालक भाइयों बहनों का खुरपका मुहपका रोग नियंत्रण और टीकाकरण अभियान के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी तरह का भ्रम ना पालिए, और पशु का सुरक्षा कवच है टीका, इसके बिना हर इलाज है फीका। अपने पशुओं को FMD का टीका जरूर लगवाएं और उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दें।
1: डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रेणु बहनी,
3: विनय भैया,
2: अब बात देखो गीत गोने के रहे।
3: अरे भैया, तुम तो हमारे मन की बात कहो।
2: देखो गीत गोने

0: स्रोत है कि जैसे एक मानसिक खुराक हो देना हम सबकी कि
1: हाँ
0: कुछ मनोरंजन होगा चाहिए, तो स्वस्थ मनोरंजन अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने सब पंचन भाइन का कराए रहे हैं। तो आओ सुना जाए संजोली पांडे के स्वर में है यू लोकगीत।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।

0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: रेणु बहनी, एक अपने प्रगतिशील किसान है। प्रगतिशील मतलब ऐसा काम कर रहे हैं कि जो दूसरों के लिए प्रेरणा है।
2: प्रेरणा हो,
1: तो आज अपने किसान जो हैं, वे अपने कार्यक्रम में अपने साथ जुड़े हैं राम सिंह पटेल भैया। तो आओ जाना जाए कि इनकी सफल किसानी क्या राज का है।
2: हम हो पंचे सफल हो भैया।
1: बिल्कुल,
3: आज के किसान क्रम में आइए आपको ले चलते हैं फतेहपुर जनपद के मलवा ब्लॉक के औंग गांव, जहां के नौनमेसी किसान राम सिंह पटेल भैया हमारे साथ हैं। राम सिंह पटेल भैया, आप नौनमेसी खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि कुल कितनी खेती की जमीन है आपके पास?
4: डॉक्टर साहब, हमारे पास खेती की जमीन 8 एकड़ है।
3: क्या फसल योजना बनाए हैं पूरे साल की, खरीफ रबी जायद की?
4: डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमारे पास 1 एकड़ धान लगा है, बाकी 7 एकड़ पे हमारे ढैंचा बोया था। ढैंचा को हम खेत में कुछ मिला चुके हैं, कुछ मिलाएंगे। जैसे लहसुन करना है तो उसमें अभी ढैंचा खड़ा है, और जैसे प्याज लग जाएगा, प्याज के बाद हमारा लहसुन लगेगा।
3: यानी खरीफ प्याज भी करते हैं?
4: हाँ, खरीफ प्याज करते हैं। 5 एकड़ पे खरीफ प्याज लगेगा, और खरीफ प्याज के बाद फिर उसके बाद लहसुन का काम होगा। लेकिन खरीफ प्याज के हार्वेस्टिंग के बाद 15 नवंबर तक हमारी हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो उसमें हम ये सब्जी वाली मटर बोते हैं, GS10।
3: अच्छा।
4: और उस मटर पे ही हम उसी समय बुआई के तुरंत बाद ट्रैक्टर से उसमें नालियां बना देते, जैसे मटर हमारी जब रहती है उसी में हम पौध जो है तरबूज और खरबूजा की तैयार करके, और मटर के बीच में ही हम वो खत्म नहीं होती, हम तीसरी फसल उसी में रोपित कर देते हैं।
3: यानी रिले क्रॉपिंग कर रहे हैं।
4: हाँ, तो उसमें क्या है कि जब मटर खत्म नहीं हुई कि तब तक हमारा तरबूज और खरबूजा तैयार हो जाता है, तो हमें 3 कैश क्रॉप उसी जमीन पे मिल जाती है। और एक जो फसल है हम जमीन को देते हैं हरी खाद, एक फसल तो हम उसी जमीन को देते हैं, 3 फसल अपने लिए लेते हैं।
3: यानी साल में 4 फसल ले लेते हैं।
4: ढैंचा जो है खेत के लिए, हमें जैव कार्बन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए।
3: हाँ।
4: और इसके बाद जो है जो 3 फसलें हैं अपने लिए, कैश क्रॉप अपने खाने के लिए और अपने इनकम के लिए, हम 3 फसलें बना।
3: इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
4: इस समय हमारे पास धान लगा है, प्याज की नर्सरी है, प्याज रोपाई की तैयारी चल रही है।
3: यानी खरीफ प्याज,
4: खरीफ प्याज
3: 5 एकड़ करेंगे?
4: 5 एकड़ की पूरी तैयारी है। हमारे पास 50 क्विंटल बलवेट है।
3: हाँ।
4: और बाकी नर्सरी है, दो विधि से हम करते हैं, बलवेट विधि और नर्सरी विधि। डॉक्टर साहब, हम बेड सिस्टम में करते हैं, क्योंकि बरसात का सीजन होता है, कभी भीषण बरसात हो सकती है।
3: अंतरण क्या रखते हैं और रोपाई कितने दिन की नर्सरी करते हैं खरीफ प्याज?
4: डॉक्टर साहब, खरीफ प्याज की नर्सरी 45 से 50 दिन की तैयार हो जाती है, और जो रोपाई की दूरी होती है, अगर हम फ्लैट पे जब लगाते हैं तो 4 इंच पेड़ से पेड़ की दूरी, 6 इंच लाइन से लाइन की दूरी नक्शा होती थी। लेकिन जब हम बेड सिस्टम में करते हैं तो हमें पेड़ों की संख्या उतनी ही रखनी है, तो हम जो है लाइन से लाइन की दूरी घटा देते, 6 इंच की बजाय 5 इंच कर देते हैं, पेड़ से पेड़ की 4 इंच ही रह देते।
3: कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं खरीफ प्याज उत्पादन में?
4: खरीफ प्याज के उत्पादन में हमें ध्यान रखना है कि हमें जल भराव वाली जमीन नहीं होनी चाहिए। वर्षा चाहे जितनी हो, हमें उसमें जल भराव नहीं हो, पानी निकल जाना चाहिए। एक तो ये है। दूसरी बात, समय से समय हमें जैसे खरपतवार जो प्रबंधन, ये सब पूरा हमें ध्यान में रख के पूरा जो है काम करना होता है।
3: अब फसल की भूख कैसे मिटाते हैं?
4: डॉक्टर साहब, 1 एकड़ में 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटास और 20 किलो यूरिया हम जोताई पे देते हैं।
3: कुछ कार्बनिक खादों का प्रयोग करते होंगे?
4: हाँ, सड़ी गोबर खाद, बर्मी कंपोस्ट, अगर जो चीज उपलब्ध है वो हम उसमें पूरा दे करके, और फिर जो है,
3: और हरी खाद तो है ही,
4: हरी खाद है, और संतुलित खेती करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व हम अपनी फसल को देते हैं, जिससे अच्छा उत्पादन होता है।
3: 8 एकड़ की खेती और इतनी विविधता, खास करके मसालों में आप प्याज और लहसुन की भी खेती करते हैं और सब्जियां करते हैं, पूरे साल में कितना खर्चा गिरता है 8 एकड़ की खेती में? उत्पादन कितना ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
4: डॉक्टर साहब, ये हम लोग जो है ये मान चलते हैं कि लमसम 3 से 4 लाख रुपया हमारा जो है खर्चा होता है, अगर रेट मिल जाता है तो 15 से 25 लाख के बीच में हमारा टोटल बिक्री होती
3: पूरे
4: है,
3: साल का,
4: पूरे साल का जो है। तो अगर हम 4-5 लाख जो अपना खर्चा निकाल तो 10 से 15 लाख रुपया तो हमारा साल का सेव बच जाता है।
3: जो अब तक आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
4: डॉक्टर साहब, हम तो ये कहेंगे, जैसे आज नवयुवक खेती से दूर भाग रहा है, कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन मुझे आज तक नहीं लगा है कि खेती घाटे का सौदा है। हमें उसको जो है बहुत सिस्टमेटिक ढंग से ये छोटी छोटी चीजें इग्नोर नहीं करना है, और ज्ञान के साथ साथ अनुभव के साथ खेती अगर आप करोगे तो कभी खेती घाटे का सौदा नहीं है। जहां पे मार्केट हो उस मार्केट के अनुरूप हमें

0: उत्पादन करना चाहिए, तभी हमें अच्छा रेट और हमारा अच्छी तरह से माल बिक जाता।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9936058016 9936058016 9936058016।
1: राम सिंह पटेल भैया, आज के किसान क्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: यू रहा आज के किसान वाणी का यू अंक
4: और हमका उम्मीद है कि आप सब किसान भाई बहन इनके यहाँ यू अंक बहुत पसंद आवा हुई है।
3: तो पंचो आज के किसान वाणी का अंक आपके यहाँ कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न हम तक जरूर भेजो। आप इसमें का बेहतर सुना चाहत हो वो हमका बताओ। तो हमारा पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन कोड 226001।
4: और भैया हमारा ईमेल आईडी भी है वो का बता दियो।
3: हमारा ईमेल आईडी है farmandhomeairlko@gmail.com। और अब यह के साथ हमका यानी विनय के यहाँ
4: और हमका यानी रेणु के यहाँ
3: देव अनुमति
4: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्यघर।
4: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सहित देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा होंगे कार्यक्रम में शामिल। केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में बुद्ध थीम पार्क का किया लोकार्पण। कहा, भगवान बुद्ध के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा थीम पार्क। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस वर्ष राज्य में 5 करोड़ घरों पर फहराया जाएगा राष्ट्रध्वज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अभियान में भाग लेने का किया आह्वान। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर अस्मिता डे ने जूडो में 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सहित देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत हर रविवार देशभर में जागरूकता और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव का वाहक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में बुद्धा थीम पार्क का लोकार्पण किया। उन्होंने कपिलवस्तु बुद्ध स्तूप में लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया। श्री पुरी ने कहा कि यह थीम पार्क भगवान बुद्ध के शांति, करुणा और मानव कल्याण के कालजयी संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने केन्द्रीय मंत्री का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में श्री पुरी ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कल स्वीकृत की गई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को क्रांतिकारी बताया।
2: एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर के लिए मंत्रिमंडल ने 84,000 करोड़ का एक योजना अप्रूव की है। इसके तहत 4 साल में डेटा कलेक्शन, डीप वाटर ड्रिलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में होगा। इस योजना के साथ आने वाले समय में हम 1,00,000 करोड़ तो प्रतिवर्ष बचा पाएंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर घर तिरंगा केवल एक अभियान नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देश के गौरवशाली इतिहास से जन जन को जोड़ने का राष्ट्रीय अभियान है। इसे व्यापक जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाना चाहिए। कल लखनऊ में मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान, स्वतंत्रता दिवस तथा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि 14 और 15 अगस्त को प्रदेश के सभी सिनेमाघरों में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का अनिवार्य रूप से प्रसारण निश्चित किया जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में सहभागिता का आह्वान करते हुए इस वर्ष 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा रैली, तिरंगा संगीत समारोह, तिरंगा प्रदर्शनी और सेल्फी विद तिरंगा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों, सार्वजनिक स्थलों, प्रमुख बाजारों और चौराहों को तिरंगा थीम पर सजाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के सभी कार्यक्रम पूरे सम्मान, गरिमा और राष्ट्रभक्त के भाव के साथ आयोजित किए जाएं। 9 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सभी स्मारकों, स्मृति स्थलों और शहीद स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।

0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा मामले को लेकर संसद परिसर में नाटक करने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में आज मुकदमा दर्ज किया गया। काशी जोन के पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने बताया कि संतों की तहरीर पर सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया है।
1: संतों के द्वारा जो है कोतवाली थाना में एक तहरीर दी गई है, मैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, राहुल गांधी जी और अवधेश जी जो ये हैं, इनके द्वारा सदन में, संसद में कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं जिसके द्वारा जो सनातन धर्म है उसका अपमान हुआ है, उसी में अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाए।
0: उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले पर कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच एसआईटी कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: जो तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों के आधार के ऊपर जो लोग प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए थे उनको सजा हुई है वो जेल में। बाकी जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, एसआईटी की रिपोर्ट माननीय मंत्री जी स्वयं, उसके हम सब लोग चिंतित हैं, उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी उसमें दोषी हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
0: नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने आज वाराणसी में विंध्य आर्थिक क्षेत्र के 7 जनपदों के सुनियोजित विकास की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वर्ष 2030 के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए और इसके लिए तकनीक आधारित निगरानी तथा डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को और मजबूत बनाया जाए। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना में उत्तर प्रदेश ने देश के शीर्ष 100 जनपदों की सूची में अपने 17 जनपदों को शामिल कराया है। सूची में लखनऊ ने पहला स्थान हासिल किया है। एक रिपोर्ट।
3: यूपी नेडा डायरेक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि इस सूची में राजधानी लखनऊ ने 1,24,167 रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना के साथ देश का नंबर एक जनपद बनने का गौरव बरकरार रखा है। वहीं वाराणसी ने भी देश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा कानपुर नगर 14वें स्थान पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, समयबद्ध स्वीकृति, डिस्कॉम और संबंधित एजेंसियों के बेहतर समन्वय तथा सब्सिडी वितरण की प्रभावी व्यवस्था ने इस अभियान को नई गति दी है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर स्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में जूडो में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्मिता को इस जीत के लिए बधाई दी है। अस्मिता डे ने बताया कि देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर बहुत खुशी हो रही है।
4: मैं अपने भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीतकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और गर्व हो रही है। ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों का है जिन्होंने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद और शुभकामना दी है। मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया को 2030 से 31 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी सप्ताह के दौरान मॉनसूनी सक्रियता में वृद्धि का अनुमान जताया है। विभाग ने कल से 5 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इस बीच प्रदेश में कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। बदायूं में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है जबकि फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सहित देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा होंगे कार्यक्रम में शामिल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में बुद्ध थीम पार्क का किया लोकार्पण। कहा, भगवान बुद्ध के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा थीम पार्क। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस वर्ष राज्य में 5 करोड़ घरों पर फहराया जाएगा राष्ट्रध्वज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अभियान में भाग लेने का किया आह्वान और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में

0: उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर अस्मिता डे ने जूडो में 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये

0: बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी।

कहां तक ये मन के अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कहीं तो ढलेंगे, कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कहीं तो ढलेंगे। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ आज मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो मित्र खुशबू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम में, जी हाँ, जिसे हम सभी कहते हैं शाम सुहानी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है और आज आप हमें मैसेज कर सकते हैं 94-122-25-575 पर और ले लेते हैं आप सभी के संदेश। तो सबसे पहला संदेश हम तक आया है छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद और फैजान मोहम्मद का। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी आरजू, हसमुख लाल, बुलबुल, शक्ति, संजीव, बंटी और पूरा ही खुशदिल परिवार, किसी भी गीत की फरमाइश इन्होंने हमें लिख भेजी है। अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण, योगिता, प्रियाली, पार्थ और पूरा हागोड़े परिवार हमसे जुड़ा है। ये मैसेज हमें मिला है समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति रोहतास बिहार से सोनम और अनामिका का। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार हमसे जुड़े हैं और अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव, गरिमा शर्मा का। सुरेश गुजरात से इन्होंने लिखा है, धीरज रबारी ने। अगला मैसेज हमें मिला है संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल राजेश। शनि चौक खंडवा से उमा राज, कुलदीप राज, जगदीश राज और प्रभा रानी हमसे जुड़े हैं। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित और बेबी गर्वी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश का चांदनी फिल्म का गीत, जिसे गाया है सुरेश वाडेकर और अनुपमा देशपांडे ने।

0: चांदनी फिल्म का अभी आपने ये गीत सुना, और अगला संदेश हम तक आया है आसल गांव बाजार से। राजू माठे, गजानन, ज्ञानेश्वर और संजय माठे का यवतमाल से अगला संदेश हमें मिला है जयराम, दिशांत और अर्पिता का। प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि और कृष्णा हमसे जुड़े हैं पंढरपुर सिटी से। पांडुचंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग कुंभार, इन सभी का हमें संदेश मिला है कुंभार गली कोल गांव से। अगला संदेश हमने लिया है निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से। जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत, किसी भी गीत की इन्होंने हमें फरमाइश लिख भेजी है। ये संदेश हमें मिला है फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश और राहुल का। इसरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान, साबरीन, शाहनवाज, सैफ खान और ईशान खान हमसे जुड़े हैं बंदायू से। अगला संदेश हमने लिया है अमरावती से सिद्धार्थ, अर्चनाताई, हीरामण, प्रणय और प्रतिभा का। लुधियाना से अगले श्रोता हमसे जुड़े हैं विनोदपुरी, विपुल, रंजू, अशोक, सुशील, बीकेपुरी, कैलाश, नीलम, रमा, पालीपुरी, सुनील पाठक, बीकेपुरी और विनोदपुरी। अनिल कुमार घोड़के, वैशाली प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़करे हमसे जुड़े हैं संभाजीनगर महाराष्ट्र से। श्रोताओं सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश का अगला गीत। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को गाया है किशोर कुमार सानू और अलका याग्निक ने।
1: चल शंकर बिहारी के साथ बगीचे में खाना खाएंगे।
2: छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो
1: बेबी।

दिल वाले फिल्म में आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक को। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी गांव गोपी की नगरिया से मिठन लाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा, गांव नगला पोला से विजय सिंह, भानु प्रताप, रामानुज, राधिका, पवन, करण, नमन, भोला, डुग्गू और इनके परिवारीजन, गांव नौधरा से कोमल मास्टर, जसुदा, लाखन, सूरज, रोहित, चंचल, अंजना और इनके मम्मी पापा, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, अमित, शिवांश, शिवांगी, चुन्ना और इनके मम्मी पापा। अगला संदेश हमें मिला है मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबेस्ता, मोहम्मद नसीम, पलक लुबना और यश मंसूरी, सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन और राम भाऊ तांदले हमसे जुड़े हैं जालना मराठवाड़ से। अगला मैसेज हमें मिला है मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से। ये संदेश हमें मिला है उमंग मलिक का, इनके साथ हैं आकांक्षा और माही मलिक। रुचिका रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय और रुद्रा रामेकर का मैसेज हमें मिला है अमरावती महाराष्ट्र से। अगला संदेश हमें मिला है सांगली जिले जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबाहत, कीरत और रेहान शेख का। गुलाम साबिर राही, ताज मोहम्मद अंसारी, मेराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। ये संदेश हम तक आया है आप सभी का। आप जुड़े हैं लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन, नादेर से प्रकाश जैन, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह हमसे जुड़े हैं नेपा नगर, मध्य प्रदेश से। झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा, हसन, बाबू, मिफ्रा और बेबी चाहत का संदेश हमें मिला है। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और आरती कुमारी का संदेश अभी हमें प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, गौरव, गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा हमसे जुड़े हैं। अगला मैसेज हमें मिला है सेक्टर 67 मोहारी चंडीगढ़, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। किसी भी गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी है मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई, चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा ने, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा हमसे जुड़े हैं मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। और मऊ से अगला संदेश हमें मिला है मुन्ना भाई सुवर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू सुवर्णकार। ये मैसेज खंडवा मध्य प्रदेश से आया है संजय बमार कंडे, ममता और बेबी किट्टू का। नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या, जय हागे का संदेश बुलढाणा से हमें प्राप्त हुआ है। और अगला मैसेज हमने लिया है मलकापुर से संजय पाटिल और उषा पाटिल का। तेलंगाना से कानूगुल्ला, गोपाल, माहेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन, विग्रेश का संदेश हमें मिला है। किसी भी गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी है मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, चेतन और सुलोचना भगत ने। अरविंद कुमार, गुड़िया, भव्या, निवेश और नियति कुमारी का मैसेज मिला है मधुबनी बिहार से। ये संदेश हमने लिया है दीपेश वर्मा का।

पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का, इन सभी ने संदेश हमें लिखा है छत्तीसगढ़ से। और अगला संदेश आया है महाराष्ट्र से, अभिजीत गवाड़कर, सरिता और सिद्धांत गवाड़कर का। राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार हमसे जुड़े हैं हिसार से। अगला संदेश बेगम इशरत अकरम, बहू रुबीना वसीम, आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम, अरहान, हमजा, शाजिया, शाहीन, नाजिया नूरी, बच्चू शेख और चीना शेख का। इन सभी का मैसेज हमें मिला है सीतामढ़ी से। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार हमसे जुड़े हैं। बठिंडा पंजाब से करणवीर हाउस से हमसे जुड़े हैं ये श्रोता, परम सिंह जोड़ा, मनजीत, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिम्मू, एकम और दमन अभिजोत। सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गीत। फिल्म का नाम है अनजाना। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर ने।

अनजाना फिल्म का अभी आपने गीत सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। और अब ले लेते हैं आप सभी के संदेश। तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, इन सभी का मैसेज हमें मिला है शाहदरा दिल्ली से, पंचकूला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। ये मैसेज हमें मिला है प्रीति गायकवाड़, आशा, विकास, सुधाकर, महाराष्ट्र से इन्होंने हमें संदेश लिखा है। इनके साथ हैं दीपांजलि, दीक्षा और शशांक बाघमारे। मुन्ना भगत, गुड्डी भगत का मैसेज मिला है पश्चिम बंगाल से। उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, अर्णम, सत्यम, आनंद हमसे जुड़े हैं झारखंड से। किसी भी गीत में शामिल कीजिए ऐसा इन्होंने लिखा है। ये हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, संजय कॉलोनी खंडवा से, इन सभी का मैसेज हमें मिला है। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पॉल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो हमसे जुड़े हैं जनकपुरी सहारनपुर से। ये फरमाइश हमें भेजी है दीपेश, पूनम, ज्योति, शिवांश वर्मा ने सरगांव छत्तीसगढ़ से। रुचिका रामेकर, दिलीप, अक्षय रुद्रा रामेकर का इनका हमें पुनः मैसेज मिला है। तो कृपया करके आप पुनः मैसेज हमें ना भेजें। अगला संदेश उज्जैन से आया है विनोद मूडत, नेहा, दीपक, चेतन नाहटा का। वीना मस्कीन, इनका भी हमें संदेश मिल चुका है मोहाली पंजाब से। बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा हमसे जुड़े हैं। निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमसे जुड़े हैं चौखू नटी बुलंदशहर से। सोमना जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ, संगीता जाधव, ये सभी हमसे जुड़े हैं जालना शहर से। जलाला वेस्ट से सुरेश गुगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित्त आहूजा का संदेश हमें मिला है। मंजू वर्मा, राजेश, निशांत, कौशिकी, दीपाली, युवान और आरके राजा हमसे जुड़े हैं रुड़की कैंट से। किसी भी गीत के लिए अनिल बुढ़ाले, रूषा, धनुश्री और अनुश्री हमसे जुड़े हैं। श्रोताओं, इसी के साथ शाम सुहानी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का यह दूसरा सप्ताह था। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी

चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 बजे तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार की विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना

बताते हुए कहा कि यदि सरकार जेनजी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य, जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे।
हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टिकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए।

0: विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। विधेयक के समर्थन में भाजपा के बृजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एनटीए ही नहीं बल्कि यूपीएससी रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हमने किया दिल्ली केंद्र से FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देश गान।

अभी आपने सुनी कुछ देशभक्ति परक रचनाएं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं जीत फिल्म के कुछ नगमे।

एक्शन फिल्म थी जिसमें सनी देओल के साथ सलमान खान और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म का निर्देशन राज कंवर ने किया और निर्माता साजिद नाडियावाल थे। ये फिल्म 23 अगस्त 1996 को रिलीज हुई।

फिल्म की कहानी करण नाम के खतरनाक हिटमैन से होती है, जिसकी भूमिका सनी देओल ने निभाई। करण अपराध की दुनिया में गजराज चौधरी यानी अमरीश पुरी के लिए काम करता है, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे काजल यानी कि करिश्मा कपूर से प्रेम हो जाता है। काजल के जीवन में राजनाथ राजू सहाय यानी कि सलमान खान आते हैं। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि काजल की शादी राजू से हो जाती है, करण का प्रेम अधूरा रह जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब काजल और राजू की जान को खतरा पैदा होता है तो करण अपने पुराने आपराधिक जीवन को और अपने प्यार के बीच एक कठिन फैसला करता है।

और इस तरह अपने प्यार को पाने के बजाय काजल और उसके पति की रक्षा करने का रास्ता चुनता है। यही फिल्म की कहानी को भावनात्मक और खास बनाता है। और इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज आपने आनंद लिया जीत फिल्म के कुछ गीतों का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में सुने जा सकते हैं।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोग।

0: की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: मुझे पूरा विश्वास है, आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117,85,00,000 रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के

0: अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 44,55,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किश्त के रूप में 379,35,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 193,95,00,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किश्त के रूप में 500,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 500,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
2: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
1: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
3: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र।

0: ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरला में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
2: अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल ले आऊंगा। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और बीएफआई को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
1: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekanand Cultural Youth Center in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athletes Oman Rana bags gold in men's shotput F57. Prime Minister

0: Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
1: Swami Vivekanand ji युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे. उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं. लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था. भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे. उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है. भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है. आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है. किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से.
0: Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIMS and increasing medical seats as well.
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है. पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं. 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई. 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं. आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है. मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है.
0: Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, Governor Thavarchand Gehlot and the President of Ramakrishna Math, Srimad Swami Gautamanandji Maharaj were present on the occasion. Earlier in the day, Prime Minister Modi launched development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure at Vizianagaram in Andhra Pradesh. Addressing a public meeting, the Prime Minister said Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and the centre is fully committed to realising the vision of Swarna Andhra and Vikasit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development.
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं. इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं. ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है. मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ.
0: Prime Minister Modi also inaugurated the Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram and said it is a launchpad for the aspirations of the state's youth. He announced that the airport has been named after freedom fighter Alluri Sitarama Raju, which will inspire future generations with the spirit of patriotism and public service.
1: बीते 12 इयर्स में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की. 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे. आज ये संख्या 166 है. एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी. एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं. 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है.
0: Prime Minister Narendra Modi will launch the Nasha Mukt Yuva for Vikasit Bharat Sankalp Abhiyan tomorrow through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the program. Union Home Minister Amit Shah has approved the advance release of 2,117

सपना और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना जानबाज फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है नागिन।

अखिल सचदेवा तुलसी कुमार को आपने सुना कबीर सिंह फिल्म में। इसी के साथ सुहाने तराने कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। ये पत्रिका शब्दों की उस यात्रा का हिस्सा है जो हमारी भाषाओं, हमारे साहित्यकारों और हमारी राष्ट्रीय चेतना को आपस में जोड़ती चलती है। आज के अंक में हम काव्य से लेकर गद्य तक, वीरता से लेकर भाषा एकता तक और वर्तमान से लेकर स्मृतियों तक एक संश्लिष्ट यात्रा करेंगे। करगिल की चोटियां आज भी उस अदम्य साहस की गवाह हैं, जब हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की थी।

करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज के संपादकीय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक काव्यांजलि, काव्य अनुगूंज उस विजय की। विजय केवल युद्ध भूमि में प्राप्त होने वाला एक परिणाम नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, साहस और त्याग का अमर घोष है। करगिल विजय दिवस

करगिल विजय दिवस हमें उन वीर सैनिकों की अदम्य वीरता का स्मरण कराता है जिन्होंने दुर्गम हिम शिखरों पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अस्मिता की रक्षा की। युद्ध के इतिहास में तलवारें और बंदूकें विजय का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु विजय को अमरत्व शब्द देते हैं। यही कारण है कि भारतीय काव्यधारा में वीर रस केवल उत्साह का संचार नहीं करता बल्कि राष्ट्र चेतना को जागृत भी करता है। कवियों ने समय समय पर अपनी लेखनी से उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की। ये सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों के प्रति राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता का स्वर है जो हर मौसम, हर परिस्थिति और हर चुनौती के बीच हमारी सुरक्षा के प्रहरी बने खड़े हैं। देश के सैनिकों से कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, फतह तिरंग आज क्यों न फिर गड़े, जगत प्रसिद्ध शूर सिद्ध तुम सभी, जवान हिंद के अडिग रहो डटे, न जब तलक निशान शत्रु का हटे, हजार शीश एक ठौर पर कटे, जमीन रक्त रुंड मुंड से पटे, तजो न सूचिकाग्र भूमि भाग भी। युद्धरत सीमाओं पर सैनिकों को विदा करने का भाव दर्ज करते हुए कवि आमिर हमजा ने लिखा है, चौतरफा गूंजते सायरन के बीच जंग में जाते एक हथियार बंद सिपाही को सरेराह गले लगाने वाली स्त्री जो उसकी माँ हो सकती है या कि बहन, प्रेमिका हो सकती है या कि दोस्त या कि फिर पत्नी, उससे बेहतर भला कौन जान सकता है कि हर अलविदा एक यात्रा की समाप्ति है। इसी तरह एक और बेहद भावपूर्ण कविता की इन पंक्तियों में, जिनका अनुवाद किया है रमेश कौशिक ने, कवि अलेक्जेंडर प्रोकोफ्येव कहते हैं, किंतु सैनिक क्रांतिकारी चीखता है, मर नहीं सकता कभी मैं नहीं अब तक मरा हूँ, मैं मरूंगा भी नहीं। तभी थर्राहट हुई, दीवार जो घेरे हुए थी उसमें दरारें पड़ गईं और सैनिक के हृदय से सेब तरु की शाख फूटी, फिर बड़ी हो वो खुशी से झूमती है मकबरे पर और गुलाबी श्वेत फल उस पर गिराती है, सैनिक के हृदय की शिरा अब तक धड़कती है। इसी क्रम में एक सशक्त भोजपुरी गीतकार और कवि राम जियावन दास बावला ने लिखा, करगिल न कुल कश्मीर छोड़ भागू, बापू क हमरे जगीर छोड़ भागू, भाई समझ के जुगवली बहुत हम, आगी लगवले मड़ैया में, छोड़प न बच्चू लड़ैया में, कसके कमरिया अखाड़े जवनवा, उमड़ल बा भीर जस बरसे सवनवा, के बावला मति मरले बा तोहरी, डाकेले ताती तलैया में, छोड़प न बच्चू लड़ैया में। और हमारे समय के बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वीर सैनिकों की प्रशस्ति में कहा, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्र के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के छा सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान।

0: विचार पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति, भाषाओं का सेतु, राष्ट्र का स्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी मराठी साहित्यकार श्री दामोदर मावजो इस विषय पर कहते हैं,
1: भाषा एवं साहित्य अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। कोई भी भाषा हो, हमारे विविधताओं से भरे भारत देश की ज्यादातर भाषाओं में वाचन लेखन संभाषण जारी रखकर भाषा वृद्धि तथा समाज समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में वाचन लेखन संभाषण जारी रखना चाहिए। भाषा राष्ट्रीय एकात्मता सबल और संपन्न हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है।
0: स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी पणजी। इसी विचार बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र।
2: भाषाएं संवाद के लिए एक उपयोगी टूल्स के रूप में काम करती हैं, लेकिन केवल टूल्स ही नहीं होती, इनके साथ संस्कृति, समाज, लोगों के अपने जुड़ाव, लोगों की अपनी परंपराएं, लोगों के अपना अस्तित्व, सब कुछ का जुड़ा हुआ होता है। इसलिए भाषाएं जो जोड़ती हैं, जुड़िया काम करती हैं, वो केवल भाषाई आधार पर ही नहीं करती हैं, बल्कि वो सांस्कृतिक, सामाजिक सभी आधारों पर लोगों को जोड़ती हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापकता थी, जो उसे विस्तार मिला, जो उसे प्रचार प्रसार मिला, उस प्रचार प्रसार में भाषा की भूमिका सबसे अधिक केंद्रीय और अग्रणी भूमिका है। इस रूप में हम भाषा को देखते हैं और बस एक कह सकते हैं कि भारत में जो भाषाई वैविध्य है, इस भाषाई वैविध्य के साथ भी, लेकिन भारत में भाषाई वैविध्य जरूर है, लेकिन भारत में सांस्कृतिक एकता, जो जुड़ने के तार हैं आपस में लोगों के, वह एक है। हम सभी भारतीय हैं, इसलिए भाषाएं अलग होते होते भी हमारे भाव एक हैं, और इस भाव की जो एकता है वह हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में बड़े महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। इसलिए पहली बार जब अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, मुगलों की सत्ता को विस्थापित करते हुए, तब हम देखते हैं कि उस समय जो लेखन है, उस लेखन का तरीका अलग है, लेकिन जब वो यहाँ के लोगों पर शासन करना और निरंकुशता और यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू करते हैं, तब उनकी नियति और उनका कार्य पद्धति बदल जाती है। दोनों में जो पत्रकारिता है, जो भाषा है, जो हमारी भूमिकाएं हैं, वो अलग अलग ढंग से दिखाई देती हैं। इसकी ताकत भी है, और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम बंगला की बात करें, चाहे मराठी की बात करें, चाहे गुजराती की बात करें, तमिल की बात करें, इन सभी भाषाओं में स्वाधीनता आंदोलन के लिए स्वर उठे और मजबूती के साथ खड़े हुए और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही व्यवस्था के निरंकुश, व्यवस्था के व्यभिचारी, व्यवस्था के कदाचरण के विरुद्ध खड़ी हुई पत्रकारिता के रूप में भारत में पत्रकारिता विकसित हुई है। हम पहले ही पत्र से अगर देखें तो हम देखते हैं कि वह सत्ता के जो गलत मंशा है उसके खिलाफ पत्रकारिता खड़ी होती है। वह पत्रकारिता चाहे हिंदी की हो, चाहे अन्य भाषाओं की हो, हिंदी उसमें एक प्रमुख भाषा थी। हिंदी एक बड़ी भाषा थी क्योंकि बोलने वाले समुदाय का व्यापकत्व तो ज्यादा था। तो देखा तो हिंदी में तमाम पत्र पत्रिकाएं थी, जिसमें प्रताप एक महत्वपूर्ण पत्र था जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित अभ्युदय, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित हिंदी का कर्मवीर, बंगला में हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने संपादित की, मराठी में तो पत्रकारों की और पत्रिकाओं की सीरीज है पूरी, अगर संक्षेप में चर्चा करें तो केसरी जो प्रतिनिधि पत्र है मराठी का, बाल गंगाधर तिलक ने उसको संपादित किया, स्वयं महात्मा गांधी ने गुजराती में नवजीवन नाम का पत्र निकाला, स्वदेश मित्रन तमिल में सुब्रमण्य अय्यर ने निकाला, उर्दू में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अल हिलाल नाम का पत्र निकाला। और इन सभी पत्र पत्रिकाओं को आप लेकर के देखें तो इन पत्र पत्रिकाओं का एक ही मंशा थी, वह मंशा थी कि भारत में स्वाधीनता की स्थापना करना। और यह स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह स्वाधीनता स्वदेशी, स्वदेश के प्रति एक प्रेम के जागरण की स्वाधीनता थी, जिसमें इन पत्रिकाओं ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, लोगों में जनमत तैयार किया, स्वदेशी के प्रति लोगों की में रुचि जागृत की, और इन सबके बाधक तत्व जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार चल रहा है।

वीरता की अनुगूंज हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र केवल भूमि से नहीं बल्कि उसकी विविधता में एकता से बनता है, और इस एकता का सबसे सुंदर माध्यम है भाषा। भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा, हर बोली एक सेतु का काम करती है, जो हमें एक दूसरे से और राष्ट्र की सामूहिक चेतना से जोड़ती है। इसी

0: है, इसकी सूचना इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। पत्र पत्रिकाएं वे साधन थे जिनके माध्यम से हम पूरे देश को एक साथ जोड़ पा रहे थे। आप देखेंगे कि यह समय था, यह दौर था, जब अखबारों की एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पर इकट्ठा हो जाते थे। यह अखबारों के प्रति, पत्र पत्रिकाओं के प्रति लोगों का विश्वास था। लोगों को यह लग रहा था कि पत्र पत्रिकाएं, ये अखबार हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी स्वाधीनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास, और लोगों का विश्वास जीतकर पत्र पत्रिकाएं इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हम भारतीय मेधा को, भारतीय जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, इसको हम किस तरह से पीछे के समय से लेकर के बाहर आए हैं और हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, और हम पीछे किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में हम इनके माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके थे, इस सब की पूरी मुकम्मल जानकारी अनेक आयामों, अनेक विषयों, अनेक संदर्भों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर दिया जा रहा है। जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो अंग्रेजों का एक माइंडसेट था, उस तरह के जो माइंडसेट को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसके पीछे उनकी मनसा क्या थी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। वह उद्देश्य था भारत पे अधिकतम समय तक शासन करना, यहाँ की संपदा को लूटना, यहाँ के संसाधनों को लूटना, अपने यहाँ ले जाना, और हमारे संसाधनों का जितना दोहन इस समुदाय ने किया, जिसे हम ब्रिटिश नाम से कहते हैं, वह लोगों को जानना चाहिए, और वह जानने का माध्यम ही है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय की पत्रकारिता की चर्चा करें, उस समय के इतिहास की चर्चा करें, उस समय के ज्ञान संपदा की चर्चा करें, उस समय के हमारी स्कूलिंग सिस्टम की चर्चा करें, उस समय की हमारी सारी व्यवस्था, जो समाज की व्यवस्था थी, उसकी चर्चा करें, न्याय प्रक्रिया की चर्चा करें। तो लोगों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि जो 200 वर्ष बीता हमारा अंग्रेजी शासन काल में, वो किस प्रकार का बीता। और इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन भारत की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकता थी, जो एक समय में खड़ी हुई, और उसके आंदोलन के जरिए ही हम इस बड़े अपने अवरोधक तत्व को, जो हमारे विकास में, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में जो बाधक था, उसे हम हटा सके। इसलिए तमाम तरह की जानकारियां दी जानी चाहिए और अनेक प्रकार से दी भी जा रही हैं। भाषा को लेकर के हमारा काम, जो निदेशालय का काम है हमारा, उसका जो मैंडेट है वो प्रोपगेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है। हम उसके माध्यम से, हम भाषाई परिवारों की संकल्पना के माध्यम से, हम भाषाई एकता के माध्यम से, हम सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं, और लोगों के बीच जाकर के उसकी चर्चा करते हैं। हम तमाम प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित करते हैं, और विशेष करके जो हिंदी क्षेत्र से इतर क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में उन क्षेत्र के लोगों को हम भारत के साथ उनके कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हजारों हजार वर्षों से रहे हैं, इसे स्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत में एकता, एकात्मकता और एकीकरण का भाव हम प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति के बीच जागृत कर सकें।
1: भाषाओं की इस विविधता में जब राष्ट्र प्रेम शब्दों में ढलता है तो वो कालजयी बन जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति भारत भारती ऐसी ही एक रचना है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित रखी है। थोड़े शब्दों में गहन भाव समेटे इस कृति पर आधारित है हमारी अगली प्रस्तुति, लघु रूपक अत्यल्प में संपूर्ण।
2: किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक संचेतना का पुनरुत्थान राजनीतिक मंचों से नहीं, बल्कि किसी निष्ठावान साधक की लेखनी से मिश्रित होता है। सन 1912 का वो दौर, जब औपनिवेशिक सत्ता के दंश से संपूर्ण भारतवर्ष की चेतना सुप्त पड़ी थी, तब झांसी के चिरगांव से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। एक ऐसी अमर कृति जिसने बहुत कम शब्दों में, यानी अत्यल्प में, पूरे भारत के गौरव, उसकी चेतना और उज्जवल भविष्य के सपनों को समेट लिया। भारत भारती, अत्यल्प में संपूर्ण। और इसे अपनी लेखनी से रचा था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने। तीन खंडों की इस कृति में मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष के त्रिकाल का संपूर्ण

0: पूर्ण दर्शन उखेर दिया। भारत भारती का पहला खंड था अतीत खंड। वो पन्ने केवल कविता नहीं थे, वो सोई हुई कौम को जगाने के लिए ऋषियों की वाणी की तरह गूंजे थे।
1: उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला।
0: मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्र प्रेम केवल अतीत के यशोगान तक सीमित रहने वाला भावुकता का संजाल नहीं था। भारत भारती की वास्तविक अग्नि उसके वर्तमान खंड में धधक रही थी।
1: तुम सभ्य हो, मार्केट जिनका सात सागर पार है, पर ग्राम की वो हाट ही उनका बड़ा बाजार है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का यहाँ, पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। तुम दार्शनिक हो, ईश का अस्तित्व सत्य न मानते हैं, भूत प्रेतों से अधिक वे भी न उसको जानते। हा देव, इस ऋषि भूमि का ये आज कैसा हाल है, तू काल सचमुच काल ही है, क्रूर और कराल है।
0: गुप्त ने जब औपनिवेशिक गुलामी के दंश, हमारी आपसी फूट और सामाजिक शिथिलता पर लेखनी चलाई, तो पंक्तियां कविता ना रहकर सोई हुई चेतना पर एक करारा वैचारिक वज्रपात बन गई। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश कटारे कहते हैं,
2: एक समय पर भारत भारती की स्थिति थी कि वो काव्य एक समय पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जैसा हो गया था और आम जन के बीच में बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही थी। वह ये हिंदी की पहली कृति थी जिसने राष्ट्रीयता के प्रसार प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
0: प्रभात फेरियों से लेकर स्वाधीनता संग्राम की गुप्त बैठकों तक भारत भारती की पंक्तियां आजादी के दीवानों का पाथे बन गई। इसी अप्रतिम जनचेतना और अनूठी राष्ट्र सेवा को देखते हुए सन 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के अमर समादर से अलंकृत किया।
1: हे नव युवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। सुख शांतिमय सरकार का शासन समय है अब यहाँ, सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा फूलती फिर शूल है।
0: भारत भारती का तीसरा और अंतिम खंड भविष्यत खंड मात्र एक राजनीतिक आजादी की मांग नहीं था, बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, ज्ञान विज्ञान की उन्नति और विश्व बंधुत्व का संकल्प था। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजरानी शर्मा बताती हैं,
3: हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें आदर्श की ओर उन्मुख किया। भारत भारती काव्य उन्होंने रचा और किस प्रकार से जीवन की संचेतना को उभारता है, देशभक्ति जगाता है, हमें हमारे अतीत के गौरव से मिलवाता है, वर्तमान का स्वरूप दिखाता है और भविष्य की राह बताता है।
0: भौतिक साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, शासकों के आदेश पन्नों में सिमट जाते हैं, किंतु राष्ट्र चेतना के प्रांगण में रोपे गए शब्द अजर अमर रहते हैं। भारत भारती केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, ये भारतीय संविधान संग्राम की वैचारिक पीठिका है जिसने हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण रखा है। साहित्य मनीषी KBL पांडे कहते हैं,
4: भारत भारती

0: को याद करना न केवल इसलिए जरूरी है कि वो उस समय की एक प्रमुख पुस्तक है, बल्कि इसलिए कि स्वातंत्र्य चेतना की प्रेरणा के रूप में उसका मुख्य स्थान है। हम जब अपने त्रासद वर्तमान से मुक्ति कामना के लिए संघर्ष करते हैं तो हमारे साथ हमारा वर्तमान ही नहीं होता, बल्कि हमारा प्रेरक और गर्वीला अतीत भी होता है और नए सूर्योदय के भविष्य का प्रकल्प भी होता है। जब हम समय के इन तीनों आयामों के बोध से संपन्न होते हैं तो रचना की समग्रता के विचार में होते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी पूरी दृष्टि होती है काल के तीनों आयामों के साथ।
1: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का ये कालजयी शब्द शिल्प आज भी हमें यही स्मरण कराता है कि स्वदेश प्रेम ही हर राष्ट्र का शाश्वत प्राण तत्व है।
2: आलेख और वाचन प्रांजल, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी ग्वालियर। राष्ट्र कवि की कविता के स्वर अभी थमे भी नहीं कि हमें याद आते हैं एक और कालजयी रचनाकार प्रेमचंद, जिनके कलम ने केवल कहानियां ही नहीं लिखी, आजादी के सपनों को भी शब्द दिए। उनकी महान कृतियों में बसा वतन का दर्द और आजादी की आकांक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है। उदाहरण के लिए सोजे वतन, जिसकी रचना प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से की थी। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, कलम का दम और सोजे वतन।
3: तारीख अक्सर युद्ध भूमि की चीखों, तोपों की गूंज और साम्राज्यों के ढहने का हिसाब रखता है, लेकिन किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक इबारत किसी निष्ठावान साहित्यकार की मेज पर रखी स्याही से निस्तृत तो होती है। सन 1908 का वो दौर याद कीजिए, जब आजादी केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा की आकुलता बन चुकी थी। ठीक उसी दौर में हमीरपुर की एक शांत मेज पर जन्म होता है सोजे वतन का। रचनाकार नवाब राय, यहां सोज केवल एक शब्द नहीं बल्कि पराधीनता के दंश से पीड़ित किसी स्वाभिमानी हृदय की वो अंतर्वेदना है जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी। इसमें शामिल अमर रचनाएं दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम केवल कहानियां नहीं थीं, बल्कि पराधीन भारत की आत्मा की आकुलता थी। संग्रह की कहानी यही मेरा वतन है में प्रेमचंद ने अपनी मातृभूमि के प्रति जो भाव उकेरे थे वे किसी श्रेष्ठ कविता से कम नहीं थे।
2: साहित्य मनीषी डॉक्टर मनीषा कहती हैं,
4: जब वे सोजे वतन में दास्तानों की शैली में दुनिया का सबसे अनमोल रतन और शेख मखमूर कहानी सुनाते हैं तो उनका लक्ष्य अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाई से ही भेंट कराना था, जिसे हुब्बे वतन कहते हैं। प्रेमचंद के समक्ष कहानी की शैली के लिए कोई दुविधा या संकट की स्थिति कभी नहीं रही। इस संकटहीनता को समझने के लिए सोजे वतन एक सुंदर नमूना है, क्योंकि उसमें दास्तानों की शैली से भिन्न कथा रूप की इश्के दुनिया और हुब्बे वतन भी सम्मिलित है। इन सबसे अलग कहानी के कहन का एक रूप यही मेरा वतन है और सिले मातम दिखाई पड़ता है। ये दोनों उत्तम पुरुष शैली की कहानियां हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के आरंभ, विस्तार, अंत, घटनाओं के चुनाव, भाषा शैली आदि के विषय में बहुत सचेत थे। वे किसी परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे।
3: 20वीं सदी के प्रथम दशक में जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपनी राजनीतिक चेतना के नए क्षितिज तलाश रहा था, तब इस संग्रह ने कथा साहित्य को क्रांति का एक सशक्त माध्यम बना दिया। संग्रह की 5वीं कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में प्रेमचंद ने ये स्थापित किया कि व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ऊंचा स्थान राष्ट्र प्रेम का है। निरंकुश साम्राज्यवादी सत्ताएं शास्त्रों से

0: से अधिक विचारों की शक्ति से भयभीत होती है। हमीरपुर के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर ने जब सोजे वतन के पृष्ठ पलटे तो उसे प्रत्येक कथा में विद्रोह की गूंज सुनाई दी। इस कृति की 500 प्रतियों को जब्त करके सरेआम अग्नि के समर्पित कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत को यह भ्रम था कि उन्होंने कागज जलाकर क्रांति की ज्वाला को शांत कर दिया, किंतु वे भूल गए थे कि विचारों की राख से ही नए इतिहास का प्रादुर्भाव होता है।
1: साहित्य मर्मज्ञ मजरुल वासे कहते हैं,
2: ये कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार की बर्दाश्त से बाहर था। जिला कलेक्टर हमीरपुर उत्तर प्रदेश ने इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां अपने सामने जलवा कर नष्ट करवा दी और लेखक नवाब राय, जो उस समय उप विद्यालय निरीक्षक थे, को सरकारी कर्मचारी होने के कारण और ये चेतावनी देकर क्षमा कर दिया कि आगे से वे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई साहित्य नहीं लिखेंगे। दो विशेष परिवर्तन हुए। प्रथम तो ये कि नवाब राय का नाम बदल गया और वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ये नाम उन्हें अखबार जमाना के संपादक को दयाराम निगम ने दिया और दूसरा ये कि अब उनकी भाषा उर्दू से हिंदी हो गई।
0: आज जब हम स्वतंत्र भारत की अक्षुण हवाओं में सांस ले रहे हैं तो हमें उस समर्थ लेखनी को भी नमन करना होगा जिसने बंधनों के कालखंड में स्वाधीनता के दीप प्रज्वलित किए थे। सोजे वतन केवल एक पुस्तक नहीं, हमारी आजादी की साहित्यिक हुंकार थी।
1: वाचन आनंद श्रीवास्तव, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी आगरा। साहित्य की ये यात्रा उन सबके बिना अधूरी है जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जिनकी रचनाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, कथाकार भीष्म साहनी, उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी, व्यंग के हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई, कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, कन्नड़ साहित्य के ज्ञानपीठ विजेता विनायक कृष्ण गोकक, असमिया साहित्यकार सैयद अब्दुल मलिक और कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, भारतीय साहित्य में इन विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। चिन्मया भगिनी ने अपनी संगीत शिक्षा पद्मभूषण विद्वान मदुरई श्री टी एन शेषगोपालन और कलईमा मणि विद्वान नैवेली श्री आर संतान गोपालन से प्राप्त की। आप अपने गुरु की प्रमुख शिष्याओं में से एक हैं। संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि के कारण आप देश विदेश की विविध संगीत सभाओं में अपना गायन प्रस्तुत करती आ रही हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन टीवी चैनलों पर आपके द्वारा प्रस्तुत अनेकानेक कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। चिन्मया भगिनी अनेक पुरस्कार एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। आज के कार्यक्रम में चिन्मया भगिनी के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। चिन्मया सिस्टर्स आर वन ऑफ द लीडिंग एंड पॉपुलर डियो इन द फील्ड ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। With their mellifluous voices, spirited singing, and strict adherence to classicism, the duo has captured the hearts of rasikas worldwide. Chinmaya sisters are senior disciples of Padma Bhushan awardee Madurai Sri T.N. Seshagopalan and

0: चिन्मया भगिनी अब प्रस्तुत कर रही हैं मां मव मीनाक्षी, वराली राग और मिश्र चापुताल में मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका फर्दर कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद मा मव मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन रागा वराली सेट्टु मिश्र चापुतालम।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर लिसनिंग टू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती।

0: Uma and Srimati Radhika. They are accompanied by Srimati Shraddha Ravindra on the violin, Sri B. Ganapati Raman on the mridangam and Sri N. Sundar on morsing.
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं मोहनम राग और आदिताल में रचना नन्नू पालिम्पा, रचनाकार हैं संत त्यागराज।
0: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती

0: अभी आपने सुना तनियावर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
1: You just heard to a Thani Avartanam played on the Mridangam by Shri B. Ganapati Raman and by Shri N. Sundar on Morsing.
0: कार्यक्रम का समापन करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं जौनपुरी राग और आदिताल में पापनासम शिवन की रचना मुरुगनई बजी मन में।
1: चिन्मया सिस्टर्स कंक्लूड देयर कॉन्सर्ट विद मुरुगनई बजी मन में, अ कॉम्पोजिशन ऑफ पापनासम शिवन इन राग।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के चेन्नई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: In tonight's national program of music, you just listened to a Carnatic classical vocal concert by Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika. They were accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on violin, Sri B. Ganapati Raman on mrudangam, and Sri N. Sundar on morsing. With that, we come to the end of tonight's national program of music. This program was recorded at the studios of Akashvani Chennai and was broadcast from Akashvani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए

सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।